0: उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: रब्बुल

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज मंगल है, सफ़र की 27 और अगस्त की 11 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वक़ार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने एक मुत्तफ़िका करारदाद में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा है। शहबाज शरीफ ने कज़ाकिस्तान के साथ कसीर जहती शराकत दारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उन्हें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम नुकात से आगाह किया। सदर और वज़ीर आज़म ने अक़लियती बिरादरियों के हुकूक के तहफ़ का हुकूमती अज़्म दोहराया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़ाकी हुकूमत के महकमों के हजम में कमी का अमल तेज़ करने की हिदायत की है। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम हफ्ते को शुरू होने वाले FIH आलमी हॉकी कप 2026 में शिरकत के लिए नीदरलैंड्स पहुंच गई है। और अब खबरें तफसील के साथ।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आप आवाज की दुनिया का दोस्त।

0: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
1: एंटरटेनमेंट हो या अपडेट्स, यह तुम्हारी हर मूड का दोस्त।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: is
1: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Tuesday, 27th of Safar al-Muzaffar, August the 11th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Federal Cabinet, in a unanimous resolution, has commended the visionary and far-sighted leadership of the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, and the Field Marshal in promoting Pakistan's global prestige. Shahbaz Sharif has reaffirmed Pakistan's commitment to deepening multifaceted partnership with Kazakhstan. The Deputy Prime Minister, in a telephonic conversation with the Foreign Minister of Iran, shared the contours of the Makkah Joint Defense Agreement. The President and the Prime Minister have reiterated the government's resolve to protect the rights of the minority communities. The Finance Minister has directed to accelerate the right-sizing of the federal government departments. Pakistan's hockey team is in the Netherlands to participate in the International Hockey Federation's Men's Hockey World Cup starting from Saturday.
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: Government securities में invest करना है. आज apply करने का आखिरी दिन है और bank के time भी खत्म होने वाला है.
1: इसलिए bank जाने.
3: आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार. इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहां चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें.
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा.
5: दिस इज FM 101.1.
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहार, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: टूट जाते हैं दिल इश्क के दरबारों में, लौट जाते हैं आशिक बर्फ के अंगारों में. सुना है ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: सुनते रहिए FM 101 101 101

0: this music, and then this magic. One Above, FM 101.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: I love FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: दिस इज एफएम 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समीना वकार से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने एक मुत्तफ़िका करारदाद में आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने पर वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की दूरंदेश और बसीरत अफरोज़ क़यादत को सराहा है। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उन्हें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे के अहम नकात से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़ाकी हुकूमत के महकमों के हजम में कमी का अमल तेज करने की हिदायत की है। लातीनी अमरीकी मुल्क कोलंबिया में शदीद ज़लज़ले के नतीजे में 110 अफराद हलाक हो गए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ।
1: खैर तो है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो?
2: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है, आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है।
1: मुझे बैंक जाने की क्या जरूरत है, इन्वेस्ट पार्क है ना?
2: इन्वेस्ट पार्क?
3: जी हाँ, इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, ना बैंक का झंझट, ना कतार, ना इंतजार। इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें।
2: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान, महफूज और मुनाफा।
4: दिस इज FM 101
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

0: Pakistan is a land of great potential resources, but to build it up into a country which will require every ounce of energy that we possess, and I'm confident that it will come from all wholeheartedly.
1: 1947, 1947, 14 August, 1 Nam Mila, Pyara Pakistan Mila, Hum Sab Ki Pehchan Bana.
2: Assalamualaikum, मैं हूँ अर्जुन जहांगीर, और आप सबको पता है कि जश्न आजादी हम भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो हमारी आन है, पाकिस्तान है तो हमारी शान है, पाकिस्तान

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: тебе.
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: सुनते रहिए FM

0: Fala, Sati.
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: listening to FM 101, a Bale Bale or Shower Shower.
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: You're listening to FM 101, अबले बले ओशा ओशा।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

This is FM 101.

0: वज़ीर-ए-आज़म ने कोलंबिया में शदीद जल्जले के बायस जानी नुकसान और बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उन्हें मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के अहम निकात से आगाह किया। और कोट अद्दू में सनामा के करीब मुजफ्फरगढ़ नहर में तेज रफ्तार लोडर रिक्शा गिरने से 6 अफराद जांबाक हो गए। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में इजाफी जजों की तकर्री और बाज़ इजाफी जजों की मुस्तकिल जजों के तौर पर तौसीक की मंजूरी दे दी है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: FM 101 के लाइव स्टूडियो से आज़ादी ट्रांसमिशन
1: दस दीजा
0: एक है के साथ मैं हूँ वासिफा मुकद्दस। सामईन, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कैसे मुमकिन है कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की सकाफत की बात ना हो, रवायात की बात ना हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ादी का महीना दवा दवा है, हर तरफ हम आज़ादी की तैयारियां देख रहे हैं और सिर्फ दो दिन का सफ़र बाकी है कि हम 14 अगस्त को पहुंचने वाले हैं। हर तरफ जोश व खरोश है, मिली नगमे सुनाई देते हैं, लोग पूरे जोश व खरोश से 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। यूँ मालूम होता है कि जैसे यकम अगस्त से ही लोगों ने इन तैयारियों का आगाज़ कर दिया था। और इन तैयारियों में हिस्सा लेते हुए रेडियो पाकिस्तान ने भी यकम अगस्त से आज़ादी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया, जिसकी एक कड़ी के साथ आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सकाफत के हवाले से। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है कि जहां बहुत सी अकवाम एक साथ आबाद हैं, हर एक के अलग अलग रसूमात हैं, रवायात हैं, लिबास है, रहन सहन का अंदाज है, और ये सब लोग जब मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। उस वक्त पता चलता है कि हम एक हैं। ये तमाम अलग अलग चीज़ें दरअसल इनकी इम्तियाजी खसूसियात हैं जो हर तरह से छलकती हुई नज़र आती हैं और पाकिस्तान में अपने खूबसूरत रंग बिखेर देती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की रंगारंग सकाफत और रवायात के हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं जीनत। जीनत, कैसी हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: कैसा लग रहा है जब आप स्टूडियोज की तरफ आ रही थी? तो अभी तो खैर सुबह सुबह का वक्त है, लोग अपने दफातर की तरफ जा रहे थे, तो क्या आपने देखा कि कहीं गाड़ियों पे या मोटरसाइकिलों पे लोगों ने पाकिस्तान का परचम जो है वो लगा रखा हो, या जो बच्चे हैं उन्होंने अपने जो स्कूल यूनिफॉर्म है, खैर अभी तो स्कूल का आगाज़ भी नहीं हुआ, लेकिन क्या आपने कुछ ऐसी जो तब्दीलियां हैं वो महसूस की हैं 14 अगस्त के हवाले से?
2: जी बिल्कुल। मैं जब स्टूडियो आ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सी बाइक्स पे पाकिस्तान का खूबसूरत झंडा लगा हुआ था, और वो बहुत दिल को खुशी देता है। वो देख के इंसान बहुत खुश होता है कि हम 14 अगस्त बिल्कुल भरपूर तरीके से मना रहे हैं।
0: यूँ महसूस होता है जैसे अचानक से हर तरफ एक खुशगवार सा एहसास फैल गया है जब हम किसी मोटरसाइकिल पे या किसी गाड़ी के सामने अपना परचम आवेज़ा देखते हैं। जी, उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुलातिफा सुल्तान। जी मुलातिफा, कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं?
0: मैं बिल्कुल ठीक। जी, तो आप बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से आप अपने इर्द गिर्द क्या तब्दीलियाँ देखती हैं?
3: जी, जैसे इन्होंने कहा कि ये अभी रास्ते में आते हुए देख के आई हैं, तो उसी तरह मैं भी ऑरेंज लाइन ट्रेन में आ रही थी तो मैंने रास्ते में उधर देखा, एक बच्चे ने इतना प्यारा सा झंडा पकड़ा हुआ है, तो मुझे उसको देख के बहुत खुशी मिली कि मतलब बच्चे बहुत पुरजोश हैं 14 अगस्त को मनाने में।
0: इसका मतलब है कि जो आम तासुर पाया जाता है कि हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है, नई नस्ल जो है, वो उस तरह से इन चीज़ों के साथ नहीं जुड़ सकेगी, तो क्या आपको लगता है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है?
3: नई
0: तब्दीलियाँ आपने देखी हैं अपने इर्द गिर्द?
3: मेरे ख्याल से तो जिस तरह उनका जोश और जज्बा होता है, मुझे लगता है कि ये आने वाले जो जनरेशन है वो हमसे भी ज़्यादा जोश में जो है वो 14 अगस्त को मनाएगी।
0: बहुत अच्छी बात। जी, इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं ईमान खालिद। जी ईमान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपने अपने गिर्द कैसी तब्दीलियाँ महसूस की, या कोई एक छोटा सा वाक़या जिसके बारे में आप बताना चाहें? वो बच्चों ने तो झंडियाँ भी जमा करनी शुरू कर दी होंगी ना, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन कर सकें कि किसके साथ, किसके पास झंडियों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। तो क्या आपके घर में ऐसा कोई वाकया हुआ? जी जी, तो सामईन, हर तरफ हर इलाके में जश्न आज़ादी का माहौल बन चुका है और लोग अपने अपने अंदाज में उसकी तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके साथ ही हम एक मिल्ली नगमे की जानिब बढ़ते हैं। सोनी धरती, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे निसाब की किताबों में ये मिल्ली नगमा शामिल था, और उस वक्त हम पूरी جوش کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ ہم اسے یاد کر سکیں, لیکن بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہمیں یاد رہ پاتا تھا. تو آج ہم بچپن کی اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور مل کر سنتے ہیں سوہنی درتی اللہ رکھے قدم.

तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

बार आपको फिर से FM 101 की लाइव आज़ादी ट्रांसमिशन हम आज़ाद हैं में खुश आमदीद कहते हैं। आपके साथ मौजूद है वासिफ़ा मुकद्दस और मेरे साथ मौजूद हैं ईमान खालिद, मुलातिफ़ा सुल्तान और जीनत। और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी रंगारंग सकाफत और रवायात पर। आज तारीख है 11 अगस्त 2026, दिन है मंगल का और वक्त हुआ चाहता है 10:24। अगर हम सकाफत की बात करते हैं तो किसी भी शख्स को जब हम देखें तो सबसे पहले जिस चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है वो है उसका लिबास। और अगर हम पाकिस्तान में मौजूद सकाफत की बात करते हैं तो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को के लिबास को देखते हुए हम फौरन से पहचान जाएंगे कि आया इस शख्स का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, इसका ताल्लुक़ सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है। सकाफत की बात करते हैं तो किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को के लिबास को देखते हुए हम फौरन से पहचान जाएंगे कि आया इस शख्स का ताल्लुक़ बलूचिस्तान

0: जो सिंध में बहुत ज़्यादा खाई जाती है।
1: अब हमने खानों की बात कर दी और वक्त भी ऐसा है कि जिसमें हर शख्स अभी नींद से जागा है और उसको नाश्ते की तलब तो है, तो यकीनन आप लोगों को भूख तो लग चुकी होगी। यहीं पे हम एक मिली नगमे की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप लोग जा सकें, कुछ अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर सकें, उसके बाद फिर हम वापस आते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ते हैं। तो आपकी खिदमत में पेश है राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की आवाज़ में शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।
2: चौदह अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब अभी पूरा कर, दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: Tune in to One Above, FM 101.
2: तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है। अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसकी ही दीवानी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ।

0: ओके जी, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 की खसूसी ट्रांसमिशन आज़ादी के हवाले से. हम एक हैं. तो जी, हम बात कर रहे हैं रिवायात और सकाफत की. तो उसमें जो है वो शादी वगैरह की तकरीबात जो हैं उनमें भी बहुत दिलचस्प एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें जो है वो ज़्यादातर तो मोस्टली सूबों की यही होती हैं कि मेहंदी, बारात, वलीमा, और उसमें जो रसूमात होती हैं वो उसके इवेंट को जो हैं वो चार चांद लगा देती हैं. तो जी, हम
1: बिल्कुल आम तौर पे तो यही हमारे यहाँ पे रवायात चलती हैं ना, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इलाकाई रवायात है कि जिसमें पंजाब में तो एक कदीम रवायत चली आती है कि जिस वक्त 7 दिन पहले जो है वो लड़की और लड़का को माइयों बिठा दिया जाता है और उसके बाद उनको कोई इजाज़त नहीं होती कि वो घर से बाहर निकल सकें या किसी से मिल सकें. और इसके साथ ही आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की इलाकाई सकाफत के हवाले से, रवायात के हवाले से, जिसमें हमने हर सूबे की एक मुनफरिद बात को डिस्कस किया. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये सूबों की जो इनफरादी चीज़ें हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अलग अलग कोई चीज़ें हैं या उनको अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो उनके दरमियान हम कोई तफरीक पैदा कर रहे हैं. दरअसल ये हर सूबे की अपनी एक मुमताज़ खसूसियत है. जब इन तमाम चीज़ों को हम आपस में मिलाते हैं तो पाकिस्तान बनता है. ये तमाम चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के अंदर रंगारंगी पैदा करती हैं, उसके अंदर एक तनव वो पैदा करती हैं. और एक पाकिस्तान ऐसे मुल्क का नाम है कि जिसके हर इलाके में, हर गोशे में मुख्तलिफ अक़वाम आबाद हैं, जिनकी अपनी तहजीबें हैं, रवायात हैं. जब हम उन सब को मिलाते हैं, एक साथ देखते हैं, तो हमारे सामने आता है पाकिस्तान, जिसमें हम ये कहते हैं कि हम सब एक हैं. अगर जैसे अगर आप पिछली गुफ्तगू को देखें तो जब हम खानों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी एक इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला खाना जो है वो अब पूरे पाकिस्तान के अंदर खाया जा रहा है. लिबास जो है हर एक जगह पे लोग उसको पसंद करते हैं, उसको पहचानते हैं. तो ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान के अवाम हैं जो कि एक हैं. और हमेशा जब तक पाकिस्तान कायम रहेगा, हम सब मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे. और हम ये चाहेंगे कि जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक हमेशा अगस्त का ये महीना आए और हम पूरे जोश व खरोश के साथ इस महीने को मनाएं. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए इस सिलसिले की किसी और कड़ी के साथ किसी और वक्त हम आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. और आखिर पे हम एक मिली नगमा सुनते जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद. और मिली नगमा भी यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद. साहिर अली बग्गा की आवाज़ में पाकिस्तान जिंदाबाद.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में, अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आज़ादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आज़ाद हुए थे, और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

This is FM 101.

0: And now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डीजे कदीर खान एफएम 101 लाहौर से। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को योम आज़ादी मुबारक। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलामा इकबाल टाउन लाहौर में, जो कि लाहौर का एक रिहायशी इलाका है। यहां पर भी घरों को और यहां पर जो मौजूद मुख्तलिफ कारोबारी इदारे हैं उनको बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सब्ज़ हिलाली परचम लहराए गए हैं और उसके साथ साथ झंडियों से भी दर दीवार को बहुत खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं उनकी तरफ से भी सब्ज़ हिलाली परचम जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: आपका नाम?
1: अब्दुल्ला।
0: अब्दुल्ला, मुझे ये बताइए कि आप आज के दिन को यौम आज़ादी को किस तरह से मना रहे हैं?
1: यौम आज़ादी को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। हमें खुशी है कि हम ऐसे वतन के अंदर पैदा हुए जिसके अंदर लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया, और हम रोज़ दिन के अंदर 5 वक्त इस मुल्क के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को खुश रखे और तरोताज़ा रखे।
0: और आप इस सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहें?
1: मेरा पैगाम ये है कि हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले की ये ड्यूटी है, ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के लिए दिन रात तरक्की करे और मेहनत और लगन के साथ, और अपने मुल्क को अजीम बनाने के लिए दिन रात इसकी तरक्की के लिए काम करे और अपने मुल्क पर फ़ख्र करे। और मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: आपका नाम?
2: आमिर सहेल।
0: आमिर, आप मुझे ये बताइए कि आज यौम आज़ादी को आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं?
2: जी, हम आज यौम आज़ादी को बहुत पुरजोश और जज्बे के साथ हम यौम आज़ादी को मना रहे हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हम आज़ाद वतन की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं, और अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा खुश और सलामत रखे।
0: और आप इस मौके पर कोई पैगाम देना चाहें?
2: मेरा पैगाम यह है कि हम पाकिस्तान को खुशहाल और अजीम से अजीम बनाना चाहते हैं, और इसके लिए हम उस वक्त ही कर सकेंगे ये काम जब हम मुत्तहिद और अतहाद हमारे अंदर होगा। हर शख्स को इस काम के लिए दयानतदारी से काम करना होगा। मेरी तरफ से अहले वतन को यौम आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: आपका नाम?
3: मेरा नाम हारिस है।
0: हारिस, आप मुझे ये बताइए कि आप आज यौम आज़ादी को किस तरह से मना रहे हैं?
3: हम जी बड़े खुशी के साथ मना रहे हैं। हम बड़े खुश हैं जोश खरोश के साथ। हमारे सब दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं हमारे यहाँ। अब इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे सैर करने। इंशाल्लाह हम जाएंगे बाहर, और वहाँ पे भी हमारा काफ़ी जो है इंतज़ाम है। हमारे जो हमने गाड़ियों में परचम वरचम लगाए हैं, घरों में भी नगमे वगमे जो हमने सीडीज़ वगैरह ली हुई हैं गाड़ी में, इंशाल्लाह लगा के इंशाल्लाह हम खूब नाचेंगे, खूब हल्ला बल्ला करेंगे। इंशाल्लाह बड़ा हम इंजॉय करेंगे।
0: आज के दिन के हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें?
3: जी, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम पहले तो ये हैं कि हम पहले मुसलमान हैं फिर पाकिस्तानी हैं। हमारे कायद कैद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो इतनी स्ट्रगल के बाद हमें ये पाकिस्तान दिलाया है, हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाजत करें और उनकी तरह काम और सिर्फ काम करें, ताकि हम अपने मुल्क के जो है बहुत तरक्की दें। लोगों को भी चाहिए कि हम वो मुतहद रहें और मिलकर काम करें। और मेरी तरफ से यौम आज़ादी सबको मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।

इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: क्या बात है जनाब।
1: यही वो वतन है जिसके लिए दुआएं भी हैं, वफाएं भी हैं और उम्मीदें भी हैं।
0: अस्सलाम से मैं हूँ आपकी।

0: खाने को बताओ। आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के जायकों की सैर करवाएंगे।
1: तो तैयार लाहौर से कराची, कराची से पिशावर, पिशावर से बलूचिस्तान और फिर पूरे पाकिस्तान के जायकों तक। और जश्न आजादी के इस खूबसूरत मौका पर आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत मिली नगमे से।

0: This is FM 101.
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: वापस आते हैं FM 101 पर. मैं हूँ आपकी मेज़बान मीरब फैसल और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं
1: मिनाहिल सलीम.
0: चलो सबसे पहले बात करते हैं लाहौर की. लाहौर का नाम सुनते ही में एक ही चीज आती है और वो है खाना.
1: सिर्फ एक चीज क्यों? मेरे ख्याल में लाहौर में खाने की लिस्ट शुरू करें तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन लिस्ट खत्म नहीं होगी. लाहौरी नाश्ते में हलवा पूरी, दोपहर में मुख्तलिफ रिवायती खाने और शाम में कुछ चटपटा खाने के आदि हैं.
2: एक सवाल है आप तमाम से, अगर आपको लाहौर में सिर्फ एक चीज खाने की इजाजत हो तो आप क्या खाएंगे?
0: मैं तो
1: और मैं हलवा पूरी.
3: मैं तो बिरयानी का नाम लूंगी, चाहे शहर जो भी.
2: वाह क्या बात है बिरयानी की.
0: अब आते हैं

0: बना ली है और कि एक ही मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ अंदाज से तैयार की जाती है।
1: और कराची सिर्फ बिरयानी तक महदूद नहीं है, क्योंकि कराची समुद्र के पास है तो सी फूड भी कराची के खानों का एक अहम हिस्सा है।
2: यानी कराची में आपके पास दो चॉइसेस हैं, बिरयानी खाएं या सी फूड। अगर भूख बहुत ज़्यादा हो तो दोनों।

0: यानी कराची में आपके पास दो चॉइसेस हैं, बिरयानी खाएं या सी फूड। अगर भूख ज्यादा हो तो दोनों।
1: अच्छा अब आप

इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए हमें ज्वाइन कीजिए हमारे लाइव कॉल पे, और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421110001।

खुश आमदीद एक बार फिर से FM 101 पर। अब हम चलते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे शहर की तरफ जहां का एक मशहूर खाना अपनी ख़ास शक्ल और जायके की वजह से फौरन पहचाना जाता है। जी हां, बात हो रही है पेशावर के चपली कबाब की।

0: और इसके साथ नान और चटनी हो तो क्या ही बात है।
1: और पाकिस्तानी खानों की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इनमें सिर्फ जायका नहीं होता बल्कि ये जो खाने हैं वो हमारी सकाफत और माहौल के साथ जुड़े होते हैं।
2: अब चलते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान का जिक्र आए तो सज्जी का नाम ना आए, ये कैसे हो सकता है।
1: सज्जी का एक खास अंदाज उसे तमाम बनाता है।
2: कौन सा अंदाज है जो उसको खास बनाता है।
3: आप खुद आगे इधर बैठ जाए।

0: के मिसालें उसकी। जैसे पाकिस्तान की जो एक पाकिस्तान के जो हैं जैसे यूनिक मसाले यूज़ होते हैं, यही सब चीज़ें और बनाने का तरीका, यही सब चीज़ें इनके खानों को मुख्तलिफ और मुनफरद बनाती हैं। और फिर बात करेंगे सिंध की। सिंध की सकाफत जितनी रंगीन है उसके रवायती जायके भी उतने ही दिलचस्प हैं। यानी पाकिस्तान के हर सूबे में सिर्फ एक जबान या लिबास नहीं होती, बल्कि हर सूबे में एक अलग जायका होता है। चलें अब खाने की जरा कुछ मालूम। बिरयानी और इसके मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक ही खाने को मुख्तलिफ तरीकों और मसालों से तैयार किया जाता है, इसलिए रीजनल टेस्ट में फर्क नजर आता है। और आम जो है वो पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन फलों में से एक है, और गर्मियों में इसकी मुख्तलिफ इकसाम को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं।
1: चाय पाकिस्तानी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। मेहमान आए हों या दोस्तों की महफिल हो, अक्सर एक ही जुमला सुनने को मिलता है, चाय बनाऊं?
0: और आखिरी फैक्ट, पाकिस्तान के खाने हमारे इलाकाई सकाफतों की अकासी करते हैं। यानी किसी इलाके की रवायती खानों को जानना इस इलाके की तारीख और सकाफत को समझने का एक दिलचस्प तरीका भी है।

0: अब वक्त है थोड़े सी फन के साथ अपनी मालूमात चेक करने का। जी तो बताइए, चपली कबाब किस शहर या इलाके से खास तौर पर मंसूब किए जाते हैं? नंबर एक कराची, नंबर दो पिशावर, नंबर तीन लाहौर।
1: सही जवाब है पिशावर। और दूसरा सवाल है, सिज्जी किस सूबे की मशहूर रवायती डिश है? ए बलोचिस्तान, बी पंजाब, सी सिंध।
2: जवाब है बलोचिस्तान। और तीसरा सवाल है, बिरयानी किस किस्म की डिश है? राइस डिश, ब्रेड या डिजर्ट?
1: सही जवाब।

0: वेलकम बैक FM 101 के साथ मैं हूँ फैसल. और अब तक की आप जश्न आज़ादी की ट्रांसमिशन सुन रहे थे, एक है जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान के जायकों के बारे में. और मेरे साथ अक्सा, जिनसे हम पूछेंगे कि हम आज के शो में क्या क्या डिस्कस किया और वो एंड पे अपना क्या पैगाम देना चाहेंगी. जी मिनाहिल, बताएं आप.
1: जी बिल्कुल, हमने बात की पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ खानों की, जो वहाँ के मशहूर खाने हैं, जैसे कि बिरयानी, हलवा पूरी और चपली कबाब वगैरह. और इसके साथ ही आखिर में मैं पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी सकाफत को बरकरार रखें, अपनी रवायत को पहचानें. और इसके अलावा ये कि पाकिस्तानी खानों को अहमियत दें और उनके जायकों को चखें. जितना आप लोग उन जायकों को चखेंगे उतना ही आप लोगों को मज़ा आएगा. और
0: बिल्कुल ठीक है, हम मरीहा से बात करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा और वो क्या पैगाम देना चाहेंगी.
2: जी बिल्कुल, ऐसा ही है. आज हमने बात की पाकिस्तान के जायकों के बारे में और मुझे ये लगता है कि हमारी सकाफत जो है वो हमें एक दूसरे से अलग नहीं करती या दूर नहीं करती, बल्कि हमें इससे पाकिस्तान जो है वो रंगीन बनता है. डिफरेंट टेस्ट हैं डिफरेंट सिटीज़ के. और अब तो ऐसा भी नहीं है कि आपको अगर बिरयानी खानी है कराची की तो आपको कराची जाना पड़ेगा, या चपली कबाब खाने हैं तो आपको पेशावर जाना पड़ेगा. अब तो ऐसा है कि लाहौर में भी कई पॉइंट्स ऐसे खुल गए हैं जहाँ पर आपको कराची बिरयानी मिल सकती है और चपली कबाब मिल सकते हैं. तो हमें ऐसे ही करना चाहिए, एक दूसरे की डिशेस को प्रमोट करना चाहिए और ख़ुद ट्राई करना चाहिए. डिफरेंट टेस्ट हमें ट्राई करने चाहिए ताकि हमारी टेस्ट बड्स जो हैं वो भी इम्प्रूव करें. तो बस यही है, और खाने से ज़िंदगी है. मुझे लगता है कि सब कुछ खाना ही है, तो हमें डिफरेंट टेस्ट ट्राई करने चाहिए. नहीं देखना चाहिए कि मुझे सूट करेगा कि नहीं. डिफरेंट टेस्ट ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका टेस्ट है और आपकी क्या पसंद है.
0: बिल्कुल ठीक जी. अक्सा, अब आप बताएं आप क्या पैगाम देना चाहेंगी.
3: तो आज एक छोटा सा पैगाम आपके नाम. अपने शहर के जायके को अपनाएं और दूसरे शहर की सकाफत को भी अपनाएं और पाकिस्तान की इस खूबसूरत रंगारंगी को हमेशा सेलिब्रेट करते रहें.
0: बिल्कुल. अब तक के लिए आपकी मेज़बान मीडिया फैसल आपके साथ थी. अब इस ब्रेक के बाद आपके साथ नए ग्रुप के साथ मौजूद होंगे और आपसे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.

0: लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है जमाने में नामे आज़ादी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर FM 101 का स्टूडियो, आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान मिर्ज़ा हवा के दोष पर आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजूद सामईन, जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। रेडियो पाकिस्तान लाहौर भी इन तैयारियों में आपके साथ शामिल है। लम्हा ब लम्हा नशरियात जारी हैं और ये रेडियो पाकिस्तान की इनफरादियत है कि हर अहम मौका पर अपने सामईन को अपने साथ जोड़े रखता है और उनके जश्न में, उनकी खुशियों में खुद भी शामिल होता है। मौजूद सामईन, आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू बड़े खूबसूरत चेहरे हैं। मेरे बिल्कुल सामने मौजूद हैं मुस्कुराते हुए अब्दुलरहमान नासिर, बहुत बासलाहियत नौजवान हैं, ढेर सारे एजाजात अपने नाम कर चुके हैं, गुलोकार हैं और इनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि तरन्नुम और तगन्नुम का इम्तिजाज इन्हें हासिल है। अस्सलामुअलैकुम।
1: अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से? जश्न आज़ादी की तैयारियाँ भरपूर हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, भरपूर अंदाज में जारी है।
0: क्या बात है, क्या बात है जी। उनके साथ एक और चेहरा जो हमेशा मुतबस्सिम रहता है, मुस्कुराहट, मुझे लगता है इनको सबसे ज़्यादा खुशी जश्न आज़ादी की है। और ये तो खैर इनसे पूछते हैं, मोहम्मद अली राजा हमारे साथ हैं, बहुत अच्छे डिबेटर हैं, ढेर सारे डिबेट्स के एजाजात अपने नाम कर चुके हैं, मुकाबला जहाँ जाते हैं जनाब मुकाबला मार के आ जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह,
0: कैसे गुजर रही हैं जश्न आज़ादी की तैयारियाँ?
2: जश्न आज़ादी सबसे पहले तो जहाँ तक पाकिस्तान के गोशे गोशे में जहाँ भी मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, सबको एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक हो।
0: खैर मुबारक।
2: और रियान भाई, जश्न आज़ादी के काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं तो जोश और वलवला पीक पे चला गया है।
0: पर है, और ये कैसी खूबसूरत बात है कि हम गुज़श्ता सालों में अपने घरों में जश्न आज़ादी मनाते थे या मुख्तलिफ जगहों पर मनाते थे, तो इस दफ़ा रेडियो पाकिस्तान ने ये मौका दिया कि उस जगह से ये आवाज़ जाए जहाँ पर हमारे बड़े बड़े बड़े लोग जो इस नर्सरी से उठ कर गए और उन्होंने नाम कमाया, तो हमारी आवाज़ें भी पहुँचें और हम भी यहाँ से जश्न आज़ादी मनाएँ।
2: और इस दफ़ा जश्न आज़ादी की तो और ज़्यादा जो खूबसूरती है कि हम यहाँ से
0: बढ़ गई है खूबसूरती,
2: पैगाम पूरे पाकिस्तान को सुना रहे हैं। मोहब्बत का पैगाम, जो पाकिस्तान का पैगाम है, जो अमन का पैगाम,
0: अमन का पैगाम है, मोहब्बत का, रवादारी का, बिल्कुल ऐसे ही है। अली भाई बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे साथ एक और पैनलिस्ट शरीका गुफ्तगू मोहतरमा फिजा डार, मैं चाहूँगा कि उनकी आवाज़ भी आप तक पहुँचे। अस्सलामुअलैकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए।
3: अल्लाह का शुक्र।
0: गुफ्तगू हम आपसे भी करेंगे और अपने सामईन से भी करेंगे। सामईन, हमने सोचा है कि आज बहुत सारे गोशों पर जहां गुफ्तगू हो रही है, इससे पहले भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसके बाद भी होंगे, और अर्ज़ पाक के मुख्तलिफ जिहतों पर और मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर बात की जाएगी। अब्दुलरहमान भाई, हमने ज़ाहिर है ये बात सोची थी कि हम कौमी और मिल्ली शायरी का भी तذکرہ करेंगे और पाकिस्तान के चंद मारूफ शुरा का तذکرہ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान के शुरा की फहरिस्त मुरतब की जाएगी तो मुमकिन नहीं है कि अल्लामा इकबाल का नाम उसमें शामिल ना हो, सर फहरिस्त होगा। शायर मशरक हैं हमारे कौमी शायर, तो आप क्या गुफ्तगू करेंगे?
1: उनकी शायरी बहुत अहमियत की हामिल है और फ़लसफ़ा खुदी को जो उन्होंने मुतारिफ़ करवाया उसकी बहुत अहमियत है। ये महज एक लफ्ज़ नहीं है, इसका बहुत वसी और अरीज मानी है और मफ़हूम है जो कि सामईन समझ सकते हैं अगर उस शायरी का ज़ौक वो पालें तो। मैं चाहूँगा आपसे कि कोई इस तरह का कलाम इकबाल भी आप
0: बिल्कुल अच्छा ये भी है अल्लामा के हवाले से अगर देखा जाए, अल्लामा की बहुत सारी नज़में उनको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया गया और वो पढ़ी जा रही हैं यूरोप में, और इसी तरह फ़ारसी की नज़में ईरान में, दीगर ममालिक में, खलीजी ममालिक में पढ़ी जा रही हैं, और अल्लामा की बड़ी इज्जत है, बड़ा
1: बिल्कुल
0: मारूफ है।
1: उनका अंदाज़ भी इस तरह का था और जो अल्फाज का चुनाव था उनकी शायरी में
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: वो इस तरह का था कि उसकी ट्रांसलेशन भी करना बहुत मुश्किल काम है।
0: हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अल्लामा को समझने के लिए भी खैर इंसान को बहुत सारी लुगात का मुतालिया करना चाहिए। अच्छा एक कलाम सुनते हैं, वापस आते हैं तो फिर देखते हैं और मज़ीद बात करते हैं, सामईन से भी पूछते हैं। जी सामईन, करम अल्लामा इकबाल का कलाम पेश किया जा रहा है।

0: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या सा अच्छा कलाम इकबाल आपने सुना। और सामीन, ये अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये आवाज़ किसकी थी, सुनी सुनाई लग रही थी, इतनी मीठी शेरिनी और हलावत से भरपूर। तो अली भाई, किसकी आवाज़ है यार?
1: मेरे ख्याल से इसका जवाब आपको देना चाहिए
0: भाई, हमारे बहुत और
1: खूबसूरत के साथ।
0: हाँ, खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शख्सियत, हमारे दोस्त अब्दुल रहमान नासिर की आवाज़ में सुन रहे थे। तो अब्दुल रहमान भाई, क्या बात है यार आपकी।
2: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: अच्छा, ये कहाँ आपने गाया था?
2: ये मैंने एक 9 नवंबर, आपको पता है जब इकबाल डे होता है, उसके हवाले से इसको मैंने तैयार किया। और असल में तो ये आपको पता है कि लेजेंडरी सिंगर शबनम मजीद की आवाज़ में ये गाना गाया गया था। पीटीवी ने ही इसको तैयार करवा के नशर भी करवाया था। इसका जब मैंने सुना इसको पहली बार, तो इसका जो मफहूम है वो ही बहुत मुख्तलिफ है। ला फिर एक बार वही वादा व जाम ऐसा था,
0: ऐसे ही
2: कि मेरा वो खोया हुआ मकाम मुझे वापस ला के दे या मेरे।
0: बिल्कुल ऐसे ही
2: ये बात की गई है इसमें।
0: यानी अल्लामा की फिक्र जो है, आप देखिए कि उन्होंने अपने अशार के जरिए वो फिक्र मुल्क मिल्लत तक पहुँचाई है।
2: बिल्कुल ऐसे।
0: खैर, इससे भी।
1: और रेहान भाई, अब आपकी बारी है, अगर आप भी इकबाल का कुछ।
0: जी, ये आपने अच्छे इम्तिहान में बारह मुझे डाल दिया।
1: आप हमसे तो पूछ रहे हैं ना,
0: तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ,
2: क्या बात,
0: मेरी सादगी देख, क्या क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख, क्या चाहता हूँ, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। और भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ।
1: आपका अंदाज भी सुभान अल्लाह। और
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, हम फिजा डार से भी ज़रा बात करते हैं ना, देखते हैं कि उनके पास कौन सा इंतखाब है और किस पर बात करने लगी हैं। हो सकता है कि कुछ सरप्राइज उनकी तरफ से भी हमारे लिए मौजूद हो। फिजा डार जी, बताइएगा।
3: अच्छा, मैं जिस शायर पे बात कर रही हूँ, वो सिर्फ शायर नहीं थे, वो अदीब भी थे, वो सहाफ़ी भी थे। और उनका सबसे बड़ा एजाज है, उनका कारनामा है कि उन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा।
0: अच्छा,
3: इससे आपको वाजह
0: हो गया होगा। हफीज जलंधरी का इंतखाब
3: मैं बात कर रही हूँ, हफीज जलंधरी
0: मौजू इंतखाब है इस प्रोग्राम के लिए।
3: बिल्कुल, उनकी ज़िंदगी की अगर बात करें तो उनके बारे में आता है कि उन्होंने स्कूल में एडमिशन तो लिया था, लेकिन वो अपनी रस्मी तालीम जो थी वो मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने मुताले से, अपने मुशाहिदे से और रियासत से उन्होंने जो है वो एक बड़े शायर बने, नाम कमाया अपना।
0: ठीक है।
3: और इसके साथ उनके लिए एजाज़ की बात ये थी, या उनकी उनके लिए प्लस पॉइंट ये था कि शायरी शायर थे एक फारसी के, जिनका नाम था मौलाना
0: के एक उस्ताद थे उनके।
3: जी जी, मौलाना गुलाम कादी करामी।
0: बिल्कुल,
3: उनसे उन्होंने इस्लाह ली, रहनुमाई ली, फिर वो आगे चल के जैसे कौमी तराना भी हमारा फारसी में है, उन्होंने बहुत खूबसूरत अल्फाज का चुनाव किया।
0: अच्छा, फिजा, यानी ये ऐसा ही है ना कि रस्मी तालीम तो उन्होंने हासिल न की, लेकिन अपने मशाहिर की या साथीदा की सोहबत में, संगत में रहे, तो उसने उनकी उन खाबीदा सलाहियतों
3: को पूरा कर दिया।
0: हाँ, उनको पूरा कर दिया, उनको उभारा और उनको तराशा। बिल्कुल ठीक।
3: अच्छा,
0: कोई इनका मारूफ शेर या कोई इनका इंतखाब आपके पास है?
3: बिल्कुल, इनका एक शेर है जो बहुत मशहूर है, करबला के हवाले से इन्होंने लिखा था और मुहर्रमुल हराम में ये बहुत हमें सुनने को मिलता है।
0: हाँ।
3: ये कौन जी वकार है, बलाह का शाह सवार है, जो है हजारों कातिलों के सामने डटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है,
0: का नूर ऐन है, क्या बात है।
3: ये बहुत खूबसूरत उनका शेर है। और
0: एक उनकी और भी मेरे ख्याल में मारूफ नज्म है, आप उसका भी अगर हवाला दे दें।
3: हाँ, उनकी मशहूर नज्म है जिसको बाद में गाने के तौर पर आज भी समझा जाता है, उन्होंने लिखी थी अभी तो मैं जवान हूँ, इसको बाद में उन्होंने बाद में गाया गया तो उसको एक आज भी सबके जहन में ऐसे कि ये गाना है, लेकिन ये एक नज्म है, उन्होंने ये गीत लिखा था। और उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी, गीत लिखा। इससे हमें महसूस होता है, ये जाहिर होता है कि उनकी जो शायरी थी वो सिर्फ एक ही किसी खास उम्र के तबके के लिए नहीं थी, लेकिन वो सबके लिए लिखते थे।
0: यानी वो किसी खास एक जिहत पर नहीं कहते थे, मुख्तलिफ असनाफ के अदब में उन्होंने शायरी
3: हर उम्र के लिए उन्होंने लिखी। उन्होंने नज़म लिखा, गीत लिखी, शायरी लिखी, तीनों उन्होंने फॉर्मेट्स पे अपना नाम बनाया और अपनी छाप छोड़ी। उसके साथ एक उनका अदबी कारनामा है जो हमेशा जो है वो इस्लाम की खिदमत के तौर पर लिया जाएगा। शाहनामा इस्लाम की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने इस्लामी रवायात को, इस्लामी
0: इस्लामी तारीख को मंजूम कर दिया, उन्होंने
3: बहुत मंजूम कर दिया। इस वजह से उनको फिरदौसी इस्लाम भी कहा जाता है।
1: ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا میرے ذہن میں ایک شعر بھی حفیظ جلندری کا آ گیا. ہم اکثر دوستوں میں عبد الرحمٰن بھائی جب بیٹھتے ہیں تو کوئی دوست ہماری خلاف توقع بات کرتا ہے, یعنی ہماری حمایت میں بات نہیں کرتا, تو ہم پھر ایک شعر پڑھتے ہیں کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی.
2: کیا بات, آپ کسے کہہ رہے ہیں؟
1: نہیں یہاں تو خیر آپ
2: کسی کو, اگر آپ کا یہ کسی کی طرف اشارہ ہے تو سب آپ
1: نے نام لے لیں. میں بالکل نام نہیں لینا چاہتا, اور
2: مشکل ہو جائے گی.
1: ہاں مشکل ہو جائے گی, بے حد مشکل ہو جائے گی. علی بھائی, احمد فراز, میں چاہتا ہوں احمد فراز کے حوالے سے بھی بات کی جائے. نوجوان ہمیں سن رہے ہیں, محبت کرنے والے سن رہے ہیں, محبت کرنے والے دلوں میں کہیں نہ کہیں احمد فراز کا نام بھی بہرحال
2: آج بھی گونجتا ہے اسی طرح ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ریڈیو پاکستان ان شعراء کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے, یہ بہت بڑا اقدام ہے. یہ
1: دیکھیں, اس میں آپ کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارا خواب تھا کہ ہم ریڈیو پاکستان پر آ کر گفتگو کریں, بات کریں, بولیں, یعنی یہاں سے ہم اپنے بڑوں کو سنتے تھے. تو یہ بہت اچھا ہے کہ ہماری تربیت کے لیے, ہمیں سکھانے کے لیے اس حد تک اعتماد کیا گیا کہ ریڈیو پاکستان ہمیں یہ موقع دے رہا ہے کہ ہماری آواز یہاں سے گونجے, یہاں سے پہنچے, اور یہ خواب پورا ہو. بہت سارے لوگوں کا خواب رہ جاتا ہے, پورا نہیں ہوتا, وہ عمر بھر یہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی ہم ریڈیو کی عمارت میں داخل ہو جائیں. یہ عمارت اتنی مبارک,
2: آواز لوگوں تک پہنچ,
1: اتنی مقدس ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے وہ یہاں سے گزرے.
2: بالکل اسی طرح ہے. اور میں جیسے کہ علامہ اقبال کا ذکر ہوا اور آپ نے احمد فراز کا کہا کہ کچھ
1: عمر بھر یہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کبھی ہم ریڈیو کی عمارت میں داخل ہو جائیں. یہ عمارت اتنی مبارک,
2: آواز لوگوں تک پہنچ,
1: اتنی مقدس ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہمارے وہ یہاں سے گزرے.
2: بالکل اسی طرح ہے. اور میں جیسے کہ

0: तारुफ था कि हर जो कोई हमें सुन रहा है उसे आगाह हो कि अहमद फराज का जो असल नाम था सैयद अहमद शाह था।
1: अहमद शाह बिल्कुल।
0: आप 12 जनवरी 1931 को कोहाट में पैदा हुए। बाद में उन्होंने शायरी की दुनिया में अहमद फराज के नाम से वो मकाम हासिल किया जो उर्दू अदब की तारीख में हमेशा याद रखा जाए।
1: बिल्कुल ठीक हो गया।
0: और एक मजे की बात मैं यहाँ जरूर अपने सामीन से शेयर करता हूँ कि उनकी इब्तदाई जो अमली जिंदगी का एक खूबसूरत ताल्लुक रेडियो पाकिस्तान पेशावर से भी रहा है।
1: बिल्कुल।
0: आप खुद और जहाँ
1: रेडियो
0: स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर ज्वाइन
1: किया। ठीक हो गया। अच्छा, ये बहुत आम बात आपने बताई कि अहमद फराज रेडियो से भी वाबस्ता रहे। और आप देखें ना, इससे ये भी जाहिर होता है कि जितने भी बड़े लोग हैं उनको बनाने में, उनकी तरबियत करने में रेडियो ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है।
0: जी,
1: तो कोई इंतखाब भी सुनाइए ना।
0: बिल्कुल।
1: हाँ, ताकि हमारे सामीन तक अहमद फराज की शायरी भी पहुँचे ना।
0: सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासम थे के आते जाते।
1: क्या बात है।
0: शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, उनका मशहूर शेर है। आपने
1: बिल्कुल ऐसे ही है
0: कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। और उसके उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था।
1: क्या बात
0: है भाई। उसकी वो जाने
1: मुझे आप क्यों कह रहे हैं
0: उसकी उसकी वो जाने के सामने आप बैठे हैं। अच्छा, कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था।
1: आपके पहलू में अब्दुल रहमान भाई भी बैठे हैं, उन्हें भी कह सकते हैं,
0: लेकिन ये आपकी तरफ
2: बस आपसे बताऊं
0: मुखातिब है वो। मोहब्बत ज्यादा होती है तो कि तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते।
1: क्या बात है। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। क्या बात।
2: एक अलग जौक है, एक अलग जायका है इनकी शायरी में,
0: कर रंग है इनकी शायरी में।
2: हर शायर का अपना एक अंदाज है अपनी बात करने का, लोगों तक पहुंचाने का, सामने इनके कानों तक।
1: अब्दुल रहमान भाई, कोई गजल सुनाएंगे हमें? आपके जहन में अगर कोई गजल आ रही हो तो मैं चाहता हूँ वो सुनाई जाए।
2: गजल पढ़ के सुनी जाए या
1: नहीं? ये आपसे कहाँ पढ़ के सुनी जाए, ये पढ़ने वाला काम हमारा है।
2: अच्छा,
1: हाँ, आपके लिए। अच्छे चले, मैं एक शेर भी, ये जिस कदर अच्छी गुफ्तगू भी कर रही है, तगन्नुम तरन्नुम
0: दोनों
1: की, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि अगर मैं मुमतहिन होता तो नंबर कम नहीं देता। अगर मैं मुमतहिन होता
0: ये छोटी सी
1: नंबर कम नहीं देता,
3: तगन्नुम
1: के अलग देता, तकल्लुम के अलग देता।
2: क्या बात।
1: तो खैर फिजा, ऐसी बात नहीं है, कहने की बातें नहीं है।
3: जब टीचर बन गया तो ऐसी कहते हैं।
1: अल्लाह, चले जी सुनते हैं अब्दुल रहमान नासिर से कोई गजल। कोई गजल
2: चले
1: जो आपके जहन में आए
2: और एक
1: हमारे सामीन के दिलों को दिलों के तार
2: में इकबाल पे क्योंकि बात चल रही थी जो तो एक गजल है उनकी, तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो जमाना, वो अदब गए मोहब्बत वो नगे कताजियाना।
1: वाह।
2: तुझे तुझे आ

0: снова бы ты.
1: Ва.
0: Вот.

ये जहां जब जहां है, ये जहां जब जहां

0: हो चुकी
1: है। क्या बात है रियान भाई, जैसे देखिए आप जितने भी शोरा थे इनका जो पैगाम था मोहब्बत, अमन,
2: ऐसा ही है,
1: प्यार,
3: भाईचारा,
2: असल ऐसा ही है, मोहब्बत या अमन, रवादारी, ये हमारी असास रही है। अगर हमने माशरे में कुछ मस्बत देना है तो हम यही दें।
1: पॉजिटिविटी को हर जगह दिखें, हाईलाइट करना इनका खासा रहा।
2: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मुझे अब पता नहीं क्या कहूँ, दुख हो रहा है।
1: अच्छा
2: या क्या हो रहा है, मुझसे आपने नहीं पूछा कि तुम किस शायर पे बात करोगे। देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपने मुझसे नहीं पूछा, ये बड़ी ये
3: बात है। हाँ, किस शायर से कहना चाहेंगे?
2: मैं चाहता हूँ कि अहमद नदीम कासमी के हवाले से बात की जाए।
0: बहुत खूब।
2: अच्छा वो इसलिए आप देखें, एक बहुत मारूफ नज्म है और वतन के लिए जो कही जाती है आप आज तक सुनते हैं, जो अहमद नदीम कासमी के अशआर हैं, लेकिन बदकिस्मती कहें या बहरहाल लोगों को पता नहीं है, इल्म होना चाहिए
1: जी,
2: और वो मैं पढ़ता हूँ, फिर आपको अहमद नदीम कासमी के हवाले से

0: अहमद नदीम कासमी पिशावर में पैदा होते हैं और होते जिस तरह आपने जी पिशावर में पैदा हुए ना, तो ये हमारा अंदाज है ना, ये
1: आपको पता है कि थोड़ा सा वो उस पे इसलिए अजीब लगा उनको जी, लेकिन असल खालिस उर्दू तो यही कहती है
0: जी
1: जो आपने।
0: तो रेडियो पाकिस्तान से ये भी वाबस्ता रहे, जिस तरह आपने अहमद फराज के हवाले से बात की थी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर, तो 1945 से 1948 के दौरान ये रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। 90 साल की इन्होंने उम्र पाई और ये उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने उर्दू फंक्शन में भी अहम किरदार अदा किया, यानी नसरी अदब में भी काम किया और शेरी अदब में भी काम किया, दोनों तरफ इनका सिक्का जो है वो सही तरीके से जमा और जम के रहा। और इनके इनके कलाम अगर देखे जाए, नात भी लिखी, गजल भी कही, सलाम भी कहा, मसनवी भी कही,
1: भी लिखी। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ इनकी दिल को लगी, ऐसी क्या चीज़ थी?
0: असल में कासमी का जो अंदाज़े बयान है ना
1: जी,
0: वो बड़ा नेचुरल है, वो बड़ा खूबसूरत है। और मैं जब इनकी गज़ल को देखता हूँ तो बहुत सारे नए मजामीन मुझे नज़र आते हैं, यानी जो हमें पीछे नज़र नहीं आते। तो इनकी खूबसूरती ये है कि क्लासिकी रिवायत से भी जुड़े हुए हैं
1: और डिफरेंट भी हैं।
0: हाँ, और जिद्दत भी इनके अंदर पाई जाती है। वो डॉक्टर खुर्शीद रिजवी कहते हैं ना, हवा के ज़ोर पे चलना भी चाहिए कुछ कुछ, मगर हवा को बदलना भी चाहिए कुछ कुछ। तो खूबसूरती ये है कि आप
1: बिल्कुल
0: अपने पुराने दौर से भी जुड़े रहें और नए दौर के साथ भी, नए दौर के तकाजों के साथ भी हम आंग
1: जुड़े।

0: तो आप सुन रहे थे वतन की मट्टी गवाह रहना। तो अब मैं गवाही पहले चाहूंगा कि ये गवाही किसने दी है। तो ये भी अब्दुल रहमान नासिर की आवाज़ में थी जनाब। और अच्छा, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, देखें एक तरफ हमें आरजे खतीजा बैठकर देख रही हैं और पता नहीं कौन कौन से आरजे हमें सुन रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये ऐसा ही है ना कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चराग, लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चराग।
1: क्या बात है,
2: सूरज को
1: सूरज हैं चराग।
0: मुझे बताइएगा अब्दुल रहमान भाई, ये जो हमने सुना है कि इसकी क्या स्टोरी है?
1: एक तो ये जो एक मेरा नगमा है ये वैसे ही बहुत अहमियत का हामिल है। मैडम नयरा नूर ने इसको अपनी सुरीली आवाज़ में गाया और बहुत मकबूलियत भी हासिल हुई। और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे हमारे दोस्त अहबाब होते हैं कि जो हमें कुछ ऐसी बात करते हैं जो हमारी बाद में ज़िंदगी में बहुत अहम एक स्टैंड आउट करती है चीज़।
0: बिल्कुल,
1: एक मिले नगमों का।
0: मैं आपकी बात को काटूंगा, माज़रत।
1: जी जी,
0: एक कॉल आ रही है, कॉल लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी किस से बात करना चाहते हैं जनाब? हेलो, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है?
3: हेलो,
0: जी जी आपकी आवाज़ आ रही है, बोलिए। रेडियो पाकिस्तान से आपकी आवाज़।
3: अव्वलन तो आपका प्रोग्राम में बहुत गौर से सुन रहा हूँ,
0: माशाल्लाह। अपना तारुफ कराएंगे?
3: मानसेरा से। और
0: मानसेरा से?
3: जी आ रही है।
0: जी जी जी, मानसेरा से हमें कॉल आई है अब्दुल रहमान भाई।
3: जी मैं सैयद हैदर अली बात कर रहा हूँ मानसेरा से।
0: ठीक, बिल्कुल ठीक शाह जी, खैरियत से हैं आप? मानसेरा में मौसम कैसा है?
3: मैं रेहानुद्दीन मिर्जा से बात करना चाह रहा हूँ।
0: ये रेहानुद्दीन मिर्जा ही आपसे मुखातिब है? जी, ये रेहान मिर्जा की आवाज़ ही आप सुन रहे हैं, आप तक पहुंच रही है।
3: जी बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अव्वलन तो मैं बहुत महसूस हो रहा हूँ आपका ये प्रोग्राम सुन के, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इवन आपके पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं। और मैं महसूस इस वजह से भी हो रहा हूँ कि ये मुझे सारी यंग आवाज़ें सुनाई दे रही हैं।
0: बिल्कुल,
3: और
0: ऐसे ही
3: है। ये बहुत रेयर है आज के दौर के अंदर शेर व शायरी का इतना अच्छा शगफ रखना। सो आई एम इम्प्रेस्ड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्यूटीफुल प्रोग्राम।
0: बहुत नवाज़िश।
3: आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा
0: जी,
3: बस मैं आपसे एक गुजारिश ये भी करना चाह रहा हूँ, जहाँ इकबाल फराज और इतनी अच्छी अच्छी गुफ्तगू हो चुकी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं जरूर आपकी अच्छी आवाज में खुद रिजी की भी चंद अशार सुनना चाहूंगा।
0: मैं आपको जरूर इंशाल्लाह सुनाऊंगा। आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं अली भाई, अब्दुल रहमान, नासिर और फिजा डार, कैसी गुफ्तगू इनकी हो रही है? और आपने तो मिली नगमे भी सुन लिए होंगे अब्दुल रहमान भाई की आवाज़ में, कैसी आवाज है?
3: मैं कह तो रहा हूँ, मैं महसूस हो रहा हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ अब्दुल रहमान भाई की।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
3: की गुफ्तगू सुनी। और इसी तरह अली भाई हैं आपके साथ, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है। सो आप अहबाब सारे इस किस्म की प्रोग्राम्स करते रहे, हम आपको सुनते रहेंगे।
0: बहुत नवाज़िश,
1: बहुत शुक्रिया,
0: जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए, मोहब्बतें बांटते रहिए। जी मैं इंशाल्लाह सुनाऊंगा आपने जो गज़ल की फरमाइश की है। जी अब्दुल रहमान भाई।
1: जी मैं ये बात कर रहा था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो हमें एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसी कोई एक सजेशन दे देते हैं जो हमारे लिए बड़ी बात में फ़ायदेमंद
0: बिल्कुल
1: जो है वो प्रूव होती है। इस्लामाबाद में लास्ट ईयर एक ऑल पाकिस्तान लेवल का नेशनल सॉन्ग कंपटीशन, मिले नगमों का कंपटीशन था।
0: ठीक है,
1: जिसमें तकरीबन कोई आप कह लें कि 250 से ज़ायद जो है वो एंट्रीज थी
0: बिल्कुल
1: कंटेस्टेंट्स की। मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि मैं किस मिले नगमे को चुनूं।
0: अच्छा,
1: इतने अच्छे मिले नगमे थे, इतने लेजेंडरी सिंगर्स के थे, मैडम नूर जहाँ के थे और मेहदी हसन साहब के थे।
0: उस
1: वक्त मशवरा फिर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है। मेरे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे शामिल मुगल, उन्होंने मुझे एक सजेशन दी कि आप इस मिले नगमे को तैयार कीजिए और फिर आप प्रेजेंट करें, तो मुझे उम्मीद है कि आप स्टैंड अप करेंगे। और उसी में पोजीशन मेरी आई
2: क्या बात है।
1: और अभी भी आपने वही सुना कुछ देर पहले, वही मिले नगमा सुना,
2: क्या
1: ये चीज़ बड़ी मैटर करती है मैं समझता हूँ।
2: बिल्कुल ऐसे ही है, दोस्तों का इनकरेज करना भी यकीनन ये बहुत अहम है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। और भी लाइव कॉलर्स हमारे साथ कुछ देर में रखा
2: जी, कॉलर्स जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह उनको लेंगे। सामीन मुकर्रम, हमारा आखिरी सेगमेंट तकरीबन जारी हो चुका है, हमारे पास 8 से 9 मिनट हैं और इन 8 से 9 मिनट्स में हमें आपको अलविदा भी कहना है, पैगाम भी देना है। और सामीन मुकर्रम, मैं चाहूँगा अली भाई के पास कोई मजाहिया गज़ल है
4: जी,
2: तो हाँ कोई मजाक का तिड़का भी लगाया जाए ना।
4: बिल्कुल, मैं ढूंढ के लाया हूँ।
2: क्या बात,
5: ढूंढ के लाया?
2: और कहाँ से ढूंढी है आपने?
4: ये तो वैसे मैंने इंटरनेट से ही ढूंढी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिलों तक ये जरा पहुँचे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए, तो बस फिर हमारा तो काम बन गया। कि उकसा रहा है मिलने को मौसम बहार का, उकसा रहा है मिलने को मौसम बहार का, फिर दिल में खौफ है तेरे अब्बा की मार का, दिल में खौफ है तेरे अब्बा की मार का, और भाई भी तेरे दोष हैं खून खार शक्ल के।
2: अच्छा,
4: भाई भी तेरे दोष हैं खून खार शक्ल के, और रियान भाई एक दो नहीं है, गैंग मुकम्मल है चार का। एक दो नहीं है, गैंग मुकम्मल है चार का, तकड़ा सा एक पठान भी है गेट पर तेरे, तकड़ा सा
2: मुश्किल है
4: पहरों पर पठान, तो बस फिर तो अल्लाह ही बचाए, तकड़ा सा एक पठान भी है गेट पर तेरे, मूछे हैं जिसकी हू बहू तलवार मार का, ऊपर से धाड़ती हुई अम्मा तेरी कमू, ऊपर से धाड़ती हुई
2: अम्मा तेरी कमू
4: जैसे खुला हो कोई बोनट हो कार का।
2: लो भाई क्या बात है,
4: ये मैंने खास आपके लिए मैंने पढ़ना तो है और आपके सामने बैठ
2: मुझ पर रहम कीजिए।
4: नहीं बस आप सुन लें कि अब हौसला नहीं है तुझे पेश कर सकूं।
2: अच्छा,
4: अब हौसला नहीं है तुझे पेश कर सकूं, तोहफा तो ले लिया है मगर है उधार का, तोहफा तो ले लिया है मगर है।
2: इतना हौसला बहरहाल आप पेश करें, मैं मुझे इससे क्या गर्ज है,
4: आप उधार
2: हाँ मैं ले लूंगा,
4: तोहफा दीजिए आप।
2: हाँ तोहफा दीजिए। फिजा डार भी हमारे साथ मौजूद है, फिजा कौन सी गजल मजाहिया गजल सुनाना चाहेंगी?
5: जी मैं पढ़ती हूँ। करता हूँ याद रंज पुराना मैं एकदम, यानी कबूल है का जमाना मैं एकदम।
2: ओए होए होए, समझे हैं आप बात, समझे हैं,
4: लेकिन शायद हमसे बेहतर यहाँ मौजूद कुछ और लोग समझ रहे
5: हैं। समझ रहे हैं बिल्कुल
2: जी।
5: पहलू में तेरे बैठना चाहेंगे जब रकीब,
2: अच्छा।
5: पढ़ने लगूंगा कौमी तराना मैं एकदम।
2: ओए होए, यानी आप उनको खड़ा कर देंगे कौमी तराना,
5: ताकि वो बैठ ना सके। हाँ,
2: बैठ ना सके।
5: ऑफिस में इसलिए है मेरा खास मकाम, घरता हूँ शॉर्ट लीव बहाना मैं एकदम। उस मौलवी को फोन करूंगा बवक्त शाम, लहजे को करके ऐन जनाना मैं एकदम। काटूंगा करवे हिजर का एक एक पल अजीज, खाकर कोई लजीज बनाना मैं एकदम।
2: क्या
4: अगर आप भी कुछ थोड़ा सा?
2: हाँ बिल्कुल, मैं जाते जाते डॉक्टर खुर्शीद रिजवी की गजल सुनाता हूँ और उसके साथ ही आपसे पैगाम लेते हुए सामीन तक पैगाम पहुँचाते हुए हम जाएंगे, क्योंकि वक्त जो है बहुत मुख्तसर रह गया, वक्त की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं और हमारा और आपका साथ यहीं तक था। जब कभी खुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, जब कभी खुद को ये समझाऊं कि तू मेरा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं, मुझ में कोई चीख उठता है नहीं ऐसा नहीं, कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद।
1: बिल्कुल
2: रमान भाई, आप जब कुछ पढ़ते हैं कुछ गाते हैं तो दिल में उतर जाते हैं, तो सुनने वाला पता क्या कहता है? कब निकलता है कोई दिल में उतर जाने के बाद, इस गली के दूसरी जानिब कोई रास्ता नहीं,
1: कोई रास्ता नहीं,
2: इस गली
1: और दरवाजा नहीं,
2: हाँ कोई रास्ता नहीं, तो तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क। तुम समझते हो बिछड़ जाने से मिट जाता है इश्क, तुमको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं।
1: क्या बात है,
2: तुमको इस दरिया की गहराई का अंदाजा नहीं, उनसे मिलकर भी कहाँ मिटता है दिल का इस्तिराब, उनसे मिलकर भी कहाँ मिटता है दिल का इस्तिराब, इश्क की दीवार के दोनों तरफ साया नहीं,
4: इश्क
2: की दीवार के दोनों तरफ साया नहीं। सामीन मुकर्रम, अपना ख्याल रखिए और हमेशा खैर बांटते रहिए, इस मुल्क की हिफाजत कीजिए, ये मुल्क हमें हमारे अजदाद ने جس طرح دیا ہے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کی سالمیت کو جہاں کہیں بھی خطرہ ہوا اور ہماری ضرورت ہو تو نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ کرنی چاہیے نہ مال کی پرواہ کرنی چاہیے. بہت مقدس امانت ہے جو ہمیں ہمارے اسلاف نے دی ہے. عبد الرحمٰن بھائی کیا کہیے گا آخر پر سامعین سے؟
1: بس ایک ہی بات ہے اور ایک ہی شعر ہے جو علامہ ڈاکٹر اقبال کا, میں ادھر آپ کے ذوق آپ کی نظر کرنا چاہوں گا. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیرے فساں لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ.
2: کیا بات ہے جی علی بھائی.
4: میں بس یہی کہوں گا اپنے سامعین سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کہ آج جتنے بھی شعرا کا ہم نے آج یہاں ذکر کیا, آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ ہی انہوں نے پازیٹیویٹی, محبت, امن, پیار کا درس دیا. تو میں اپنے سامعین سے بھی یہی کہوں گا کہ آج وقت ہے اسی چیز کی, نگیٹیوٹی کو دور کریں اور پازیٹیوٹی کو جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں کریں, محبت کو, ایجوکیشن کو, پیار کو, جو آج کی اہم ضرورت
2: ہے. بہت شکریہ علی بھائی, بہت اہم پیغام دیا آپ نے, آپ ہمارے ساتھ رہے, آپ کا بے حد شکریہ. اور آخر پر فضا ڈار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فضا کیا کہیں گے سامعین سے؟
5: میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے 14 اگست قریب ہے, ہم آزادی کی خوشیاں بھی منا رہے ہیں, اسپیشل ٹرانسمیشن بھی یہاں پہ ریڈیو پاکستان میں جاری ہے, لیکن آزادی صرف خوشیوں تک محدود نہ رکھیں کہ ہم صرف جھنڈا لگا لیں اور قومی اور ملی نغمے گا لیے. آزادی ایک ذمہ داری ہوتی ہے. آپ ایک ملک میں رہتے ہیں, آزاد ملک میں ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہیں, فرائض ہیں, آپ نے ان کو نبھانا ہے.
2: بالکل,
5: اس کی حفاظت میں, اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں.
2: بالکل ٹھیک ہے, ہمیں اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے, اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. جہاں جہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار عام ہے, ہم اپنا کردار ادا کریں. جی سامعین, یہ تھا آج کا پروگرام, یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ انتظار کریں گے کہ ریحان مرزا اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر بھی ہماری خدمت میں آئے. تو اگر وقت نے موقع دیا اور اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ پھر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے, ایک ملی نغمہ سنیے اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نے کے بعد
6: FM 101 جشن آزادی کے سلسلے میں خصوصی فیچر پیش خدمت ہے. میں پاکستان ہوں, تحریر سہیل پرواز, راوی حیدر عباس, پروڈیوسر زبیر بشیر, ایگزیکٹو پروڈیوسر نزاکت شکیلا, پیشکش FM 101 لاہور.
7: Stand pure. You are tuned into the one above, 101.

पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है।

अलैकुम पाकिस्तान, इस उम्मीद और यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आप सुन रहे हैं हमें और हमें कहते हैं जी एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं मोहम्मद इस्लाम, और मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, इस उम्मीद और यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आप सुन रहे हैं हमें और हमें कहते हैं जी एफएम 101 चैनल।

0: भाई जुबानों की बात करें तो पंजाबी जैसे हैप्पी सिंह जी आए तो पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई, क्या ही बात,
1: क्या बात है यार, क्या बात है।
2: पंजाब तो हमारा ऐसा है कि बहुत डाइवर्स है। पंजाब में आपको सिंधी भी मिल जाते हैं, बलोची भी मिल जाते हैं, जो भी हो जितने भी लोग हों वो पंजाब से ही एसोसिएट होना चाहते हैं क्योंकि पंजाब की ना एक अपनी शान है, एक अपना रुतबा है पंजाब का।
0: ऐसा ही। अच्छा, मेरे पास वैसे इस्लाम जो है उनका ताल्लुक गोजर खान से है शायद, गांव से, तो गांव के बारे में बताएं। हम तो खैर शहर से हैं लेकिन गांव की मतलब इस्लाम से
3: लेकिन जो शहर की एक रौनक होती है उसको हम कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। लाहौर है वो कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं ना कि जिन्हें लाहौर, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात आपने कही। अच्छा, मैं अपने अगर इलाके का बताऊं तो मेरा ताल्लुक बेसिकली फैसलाबाद से है, जो हमारा
0: सेंटर इस्लाम बताते चलूं, मैं भी फैसलाबाद से
3: मैच हो गया।
2: मेरा भी ददियाल और ननियाल फैसलाबाद का ही है।
3: ये तो मतलब कि पाकिस्तान के मैनचेस्टर से हम सारे निकल आए हैं, बहुत बेहतर हो गया,
2: बेहतरीन हो गया।
3: अच्छा, गांव में गांव की खूबसूरत यादें होती हैं। वैसे हर मुल्क में गांव पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मुल्कों के अंदर या दीगर रियासतों के अंदर गाँव नहीं होते। हमारे पास जो डाइवर्सिटी, जो सादगी, जो कल्चर हमारे देहात में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, मैं समझता हूँ कि बहुत कम है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे आज भी याद पड़ता है, तकरीबन कोई पिछले 5 या 10 सालों की पुरानी बात होगी, हम अपने ऐसे स्कूल में, जैसे जाहिर है सब पढ़ते हैं तो पढ़ा करते थे, हमने जो है वो टाट पे बैठना, क्या खूबसूरत यादें थी। मतलब मुझे आज भी याद पड़ता है कि वो सफेदे के बड़े से दरख्त के नीचे बैठ के, घास के ऊपर बैठ के पढ़ना।
0: हाय हाय हाय हाय।
3: हाँ,
0: एक
3: पाकिस्तान मुझे सुन रहा है इस वक्त, मुझे पता है आप लोग मेरे साथ हैं तो आप भी इसको याद कर रहे होंगे कि आपकी बचपन की जो मेमोरीज हैं वो भी इसी तरह से थी। अच्छा, वो हमने बैठना वहां पे, पढ़ना, हमारे जो उस्ताद होते थे हमें कहना कि आप तख्तियां निकालें लकड़ी की, वो हम लेके आते घर से।
2: और अरे अरे इस्लाम, आप तो बहुत नहीं थे,
3: इतना भी पुराना नहीं है, लेकिन ये कि हमने, मैंने वो सीरियसली मैंने वो एंजॉय किया, वो बहुत जबरदस्त था। एक वो तख्तियों के ऊपर हम कलम के जो उनको मतलब कि अपने आप से वो एक नाइफ के साथ, एक छुरी के साथ, एक चाकू के साथ उसको बनाते खुद, या हमारे टीचर्स जो हैं वो बना के देते, फिर हम उससे एक अमला।
0: इसी मेहनत ने आपको आज इतना निखार के बाहर निकाला है माशाल्लाह से।
3: बिल्कुल ऐसे ही मेहनत हमने की, शुरू से की अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस तरह बाकी भी लोग करते हैं, पाकिस्तानी जाहिर है बहुत मेहनती लोग होते हैं, और गाँव के जो लोग बेसिकली होते हैं, देहाती होते हैं, वो तो इतने इतने इतने जवाकश होते हैं, इतने मेहनती होते हैं कि खेतों से लेकर सुबह सुबह उठ जाते हैं, फिर वहां पे जो बच्चे होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स के साथ इतने जुड़े होते हैं, अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ जो है वो शहरों की खूबसूरती या बेहतर बता सकती है, बताए ये, मैं ये पाकिस्तान में हूँ और गांव में हूँ हम लोग, तो साग की रोटी और सरसों का,
2: मुझे लगता है कि ये वो डिश है जो शहरों में भी उतनी ही पाई जाती है।
0: बिल्कुल उसका कोई मैच नहीं है, तो कोई मैच हो ही नहीं सकता, मतलब कोई बात ही नहीं है इस चीज की। तो
3: मतलब आप शहरी लोग हमारा मुकाबला करने की कोशिश करते हैं?
0: नहीं नहीं नहीं, होता है। अच्छा, हमारे कॉल ने एक सवाल रखा है आप लोगों की जनरल नॉलेज को जज करने के लिए, तो कॉल करके हम पाकिस्तान की कॉल कीजिए, हमारा कॉलिंग नंबर 4211100101 पर आप कॉल कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल ऐसे ही है, और आप हमें जरूर कॉल करें, हम आपकी कॉल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप सिर्फ हमें सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं तो कॉल भी करें ना।
0: सही बात।
3: जी मानूर, आपके पास क्या है ऐसा जो आप हमारे सामीन के साथ जो है अपनी एक कोई खूबसूरत याद, कोई आप लास्ट टाइम मुझे बता भी रही थी कि आप नॉर्दर्न एरियाज गए, वहां पे घूम के आए, कैसा लगा जो गिलगित के लोग हैं, आजाद कश्मीर के लोग हैं, कितने खूबसूरत मेहमान नवाज और एक हमें वेलकम करने वाले लोग होते हैं, तो आपने कैसा पाया उनको, कैसा और कितना एंजॉय किया वहां पे जाके?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मेरे घर में पहाड़ों को लेकर कोई अलग ही मोहब्बत है, मेरे फादर को, मेरे इवन मदर को, हम लोगों को पहाड़ों की बहुत आदत है, तो साल में एक बार दो बार मेरा जाना आना होता ही रहता है। और नॉर्थ से जो मोहब्बत है वो भी इसी वजह से है कि वहाँ के लोग जो होते हैं ना, वो आपको एक अलग तरीके से ही वेलकम करते हैं। उनके अंदर एक मेहमान नवाजी शायद शुरू से ही होती है, उनको पता होता है कि ये लोग बाहर के हैं, ये लोग हमारे मेहमान हैं। तो काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, इनफैक्ट ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं 3 दिन पहले होकर आई हूँ, तो हमें एक वैन ड्राइवर अंकल थे, उनको हमने बोला कि हमें रात के 3 बजे जो है जाना है वापस स्टेशन, तो अगर आप हमारी कोई मदद कर दें। तो वो पूरी रात अपना घर नहीं गए, वो पूरी रात वहीं होटल के बाहर उन्होंने एक छोटी सी चारपाई डाल ली थी और वो वहीं बैठे रहे कि इनको छोड़कर ही आऊँगा अब। ये उनकी एक मेहमान नवाजी थी, ये उनका हमारे लिए मोहब्बत थी कि उन्होंने ये हमारे लिए किया।
3: हाँ, मतलब ये जज्बा जो है वो हम पाकिस्तानियों के अंदर ही पाया जाता है। कितने हम लोग डाइवर्स हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मुश्किल में हों तो हम जो है वो एक दूसरे के लिए जज्बा रखते हैं कि यार हमने उनकी जो है वो खिदमत करनी है, या उनकी जो बात है अगर उनको कोई परेशानी है, उनको कोई मसला है, तो हमने उसको किस तरह हल करना है। मतलब कि वो कहते हैं ना, इकबाल ने कहा था ना कि हैं वही लोग जहाँ में
0: आते हैं जो काम
3: दूसरों के, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी ये जो जज्बा है ये सिर्फ पाकिस्तानियों के अंदर, मैं अगर खित्ते की बात करूं तो पाकिस्तान में ये जज्बा पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के बना हुआ।
0: बिल्कुल इस्लाम जज्बे की जो आपने बात की, मेरे ज़हन में आ रही थी क्रिकेट की बात, जब क्रिकेट मैच होता है स्टेडियम में होता है। अच्छा, घर में सब अपना एक तजिया कर रहे होते हैं, जी ये वाली बॉल ऐसे खेलनी चाहिए थी, ये ऐसे क्यों हो गया,
4: नहीं किचन में खाना पक रहा है, बाहर टीवी लगा है,
2: चल रहा है,
4: मैच पे फुल ध्यान है।
3: जो हमारे पाकिस्तानी हैं वो इस बात पे तो ऐसे यकजा हो जाते हैं कि क्रिकेट का मैच हो और स्पेशली जब हमारे असली दुश्मन भारत के साथ तो फिर उसको तो मिस हम कर ही
4: नहीं सकते, कर ही नहीं सकते,
3: कुछ भी छोड़ सकते हैं लेकिन वो मैच
4: नहीं छोड़ सकते।
2: अच्छा, पाकिस्तान और भारत को लेकर मेरे पास एक बड़ी कोर मेमोरी मेरे दिमाग में आई है अभी। मुझे याद है 2021 का T20 था जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीत गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो वो शो बल्कि मैं रेडियो पे सुन रही थी क्योंकि हम लोग गाड़ी में थे, हम कहीं ट्रेवल कर रहे थे, तो मुझे याद है जब आखिरी ओवर रह गए थे और बिल्कुल मैच इस तरह था कि जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, तो मुझे याद है हमने गाड़ी साइड लगा ली थी और पूरा एंड तक सुनकर ही हमें तसल्ली आई थी।
0: मैं थोड़ा माजी में चली जाऊँ, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में
2: वो एक बात खूबसूरत
0: याद है हमारी की जज्बा जो पूरी कौम ऐसे मौकों पर मुत्तहिद हो जाती है ना, वो दीदनी होती
3: है। क्रिकेट तो हमारी जान
0: जान है,
2: क्या बात है,
0: कॉम्प्रोमाइज
3: तो क्या ही बात हो जाती है। इंडिया का मैच हो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ, बेशक वो किसी भी खेल में हो,
0: बिल्कुल
3: वो हम जो है उसके ऊपर पूरा हमारी कौम का, हमारे मीडिया का और इवन हम सबका फोकस होता है कि पाकिस्तान जो है वो जरूर जीता है और हम जीते भी
0: अभी।
3: बिल्कुल
0: थी उनको सपोर्ट करने के लिए कि हमारा नौजवान जी हमारी नुमाइंदगी कर रहा है,
4: वो जो खेल खेल रहे थे उससे हमारी कौम को बड़ी नॉलेज मिली है।
0: बिल्कुल।
4: पहले क्रिकेट हॉकी, लेकिन वो जो चीज है
0: क्रिकेट से निकल कर खेलों में हमारे पास इतनी चीजें, इनफैक्ट फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल गई है वो पाकिस्तान से गई है और ये
4: सियालकोट
0: हमारा सियालकोट, सही बात है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले सालों में पाकिस्तान फुटबॉल भी खेलेगा
4: इंशाल्लाह,
3: खेलेंगे जरूर खेलेंगे। पाकिस्तान जो है वो खेलों के मैदानों में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा चुका है और दिखा भी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान हॉकी 4 वर्ल्ड कप हम जीत चुके हैं, ओलंपिक्स मेडल जीत चुके हैं, स्क्वैश में हम कितनी देर चैंपियन रहे हैं, मतलब हमारी एक पूरी हिस्ट्री रही है। मतलब हम किसी भी मुकाबले में किसी भी मैदान में जो है वो हमने उसको खाली नहीं छोड़ा,
0: खाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी नहीं,
3: जीत के हैं, झंडे गाड़ के हैं,
4: झंडे
3: गाड़। इस तरह मैं दुआ भी करता हूँ, यकीन रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी पाकिस्तान को बाहर रिप्रेजेंट करते हैं, वो जरूर जिस तरह से जज्बे, लगन और मेहनत के साथ पाकिस्तान का नाम वहां पर रोशन कर रहे हैं, वो जरूर बस जरूर हमारी दुआएं हमारी उनके साथ मौजूद रहेंगी हमेशा।
0: बिल्कुल ऐसा
3: है। इस मौका पर जब यौमे आजादी आ रहा है, हम जितने भी हमारे लेजेंड्स प्लेयर्स थे, या इस वक्त हमें सुन रहे हैं या मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, हम उनकी सलाहियतों पर जो है वो रश का इजहार करते हैं और उनको खराज तहसीन जरूर पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की खातिर खिदमत अदा की हैं, वो जो है वो काबिल कदर हैं और लाजवाल खिदमत हैं। इस तरह और भी मैदानों की अगर बात करें, सेहत का मैदान हो, आज जिस तरह हमारा एक दिन मनाया जा रहा है अकलियतों का, उसको फरामोश नहीं कर सकते।
0: हुए क्या ही बात है उसकी,
3: क्या बात है,
2: मतलब आप सोचे उस टाइम पे जब लड़ाइयां चल रही होती थी, जब हम लोगों को लग रहा होता था कि शायद अकलियतें इतनी जरूरी नहीं है, तब किसी ने सोचा कि नहीं, पाकिस्तान में अकलियतें भी उतनी ही जरूरी है जितनी मेजॉरिटी।
3: यौम आजादी से पहले जब हमें आजादी नहीं मिली थी, फिर जैसे हमारे रफका ने मेहनत की आजादी,
4: हमारे जो कायद का मैसेज है वो अकलियतों को बहुत अच्छी तरह डिफाइन कर
0: सही बात है कि
4: और खूबसूरत बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान हर किस्म की अकलियत को, पाकिस्तानी हो, पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो, इसके साथ साथ हिंदू, सिख हो, क्रिश्चियंस हो, मैं अपने एनवायरनमेंट में देखती हूँ एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली।
0: बिल्कुल, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, आखिर में हमारा पैगाम ही यही है कि हम पाकिस्तानी हैं।
2: शक अच्छा है? मैं यहाँ पे अब टॉपिक को बदलते हुए एक शर्मिंदा एतराफ़ करना चाहूँगी, आप तैयार रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी चाय से कोई दिल लगी नहीं। अरे बस
3: लेकिन हम जो है वो इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा वक्फा लेंगे, उससे पहले हम एक ट्रैक सुनते हैं, बहुत ही जबरदस्त और खूबसूरत किस्म का मिलने लगवा है, आइए सुनते हैं।
2: अच्छा बात

0: दूसरे की बात को काटा नहीं। कंबाइंड शो के जो सबसे बड़े एथिक्स होते हैं वो यही होते हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के तो हम मतलब इतना फील नहीं करते, जब ऑन एयर लोग आपको सुन रहे होते हैं वो इस चीज़ को बड़ा मतलब कि भाई एक ही बात मुकम्मल नहीं हुई, ये चीज़ आप चारों में नहीं थी, सबने वेट किया है अपनी टर्न का। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी तैयारी थी, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छा था, ऑब्वियसली
1: कोई स्क्रिप्ट तो
2: नहीं,
0: बहुत अच्छा चारों मार्शल आप लोग बहुत अच्छा बोलने वाले हैं और आप लोगों ने साबित कर।
3: वेल हमारा फेसबुक पेज है जी, facebook.com/fm101, एक और लाइव कॉल आ रही है, देखते हैं, दोबारा ड्रॉप हो गई है कॉल, तो दोबारा से कर सकते हैं आप 051111011 पे। वेल जनाब, हम बात कर रहे थे दिल दिल पाकिस्तान के हवाले से, तो

के तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज्यादा जश्न आजादी।

0: जी जैसा कि उमर ने कहा कि मौजू को बताना चाहिए, तो लाइवा मैं भी कहता हूँ कि ऑडियंस को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए, आपको बता देना चाहिए,
1: आपको बता ही देना चाहिए, इतनी ज्यादा ना करें हमारी ऑडियंस के साथ, बता दें उनको टॉपिक।
2: अच्छा अब दोनों मिल गए और मुझे बाहर कर दिया और मुझे जालिम दिखा रहे हैं।
0: आप भी साथ हैं?
1: नहीं नहीं मैं आप दोनों के साथ हूँ, आप ये ना समझे कभी ये कह रहा है की मैं आपके साथ हूँ, पर कभी हसीब कह रहा है की मैं लाइबा के साथ हूँ, बट मैं आप दोनों के साथ हूँ,
2: हम सब साथ साथ हैं क्योंकि हम एक हैं। जी तो आज का जो मौजू है वो है पाकिस्तान के खूबसूरत मुकामात, सुनते ही दिल खुश हो गया।
1: और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस मौजू के बाद, इस मौजू को सुनने के बाद आप सबका दिल करेगा कि आप घरों में ना रुकें, बैग पैक करें, गाड़ी स्टार्ट करें और निकल जाएं वादियों में।
0: लेकिन कुछ मकामात ऐसे हैं उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा गर्मी जाने का और सर्दियां आने का।
1: अच्छा। ये पाकिस्तान की आवाम है, जुगाड़ निकाल लेती है।
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं,
1: गर्मी हो या सर्दी हो ये जुगाड़ निकाल लेते हैं,
2: पहुंच जाते हैं जहां इन्होंने पहुंचना होता है। अच्छा तो यहाँ मैं अपना एक वाकया शेयर करूँ अगर, तो वो खानदान का एक सड़ियल बच्चा होता है ना जो किसी प्लान में शामिल नहीं होता, मैं एक वक्त में वो बच्चा थी। तो मेरे घर वाले यही करते थे कि मुझे गाड़ी में डाला और वहां जाके बाहर निकाला कि चलो पहुंच गए, मतलब कोई प्लान तो मैं कभी बनाती ही नहीं थी। तो मेरी याददाश्त में जो पहला सफर मुझे याद है और वो इतना खूबसूरत सफर कि
1: गाड़ी में डाल के आपको
0: नहीं, मेरे ख्याल से ये वो बच्चा था कि इसको कहते थे आपने गाड़ी में रुकना है, सामान ना कोई ले जाए,
1: सामान ना कोई ले जाए।
2: वाह वाह वाह,
1: डिग्गी में सामान के साथ लाइबा बैठेगी।
2: मैं आपको याद कराना चाहती हूँ कि हम एक हैं। जी तो मैं अपना वाकया बता रही थी कि पहला सफर मेरे घर वाले 12 बजे मुझे उठाया, उन्होंने गाड़ी में डाला बिल्कुल वो सामान की हिफाजत के लिए ना, तो उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं इस्लामाबाद, और मैं थी कि उफ क्यों, मतलब मैं सो रही हूँ। लेकिन जब मैं सुबह मेरी आंखें खुली तो मेरी आंखें खुल ही गईं और मेरे 14 तब्बक भी रोशन हो गए। उस सफर में मुझे इतना मजा आया कि उसके बाद से जो है ना वो ट्रैवलिंग मेरे अंदर ये जज्बा बेदार हुआ कि मैं भी सफर करूंगी। उर्दू वाला जी तो हम चलते हैं, अब ड्राइविंग सीट जो है हमने दे दी है उमर को और मैं एज यूजुअल सामान की हिफाजत कर रही हूँ, ठीक है, पीछे बैठ के, तो हम डिग्गी में बैठ के अब देख लें। जी तो हम शुरू करते हैं ये सफर। उमर आप, मैं चाहती हूँ क्योंकि हम पंजाब में हैं, बिलखसूस लाहौर में हैं, तो यहीं से सफर शुरू करते हैं।
1: बिल्कुल भाईबा आपने ठीक कहा कि हम इस वक्त जब पाकिस्तान की मशहूर जगहों की बात हो और हम उसमें अपने जहाँ पे हम रहते हैं सुबह पंजाब का जिक्र ना करें कि कैसे हो सकता है। मैं शुरुआत करूंगा अपने सुबह पंजाब से, और स्पेशली क्योंकि हम लाहौर में मौजूद हैं और इस टाइम जो हमारे सामीन हमें सुन रहे हैं वो रेडियो के जरिए सुन रहे हैं, और हमारा जो रेडियो का स्टेशन FM 101 वो भी लाहौर में मौजूद है, और तो हम स्टार्ट यहीं से करते हैं अपने रेडियो से।
2: अरे वाह, यानी कि ये सफर रेडियो पाकिस्तान से शुरू हो रहा है।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ मौजूद हैं तो हम सफर यहीं से स्टार्ट करते हैं।
2: जी तो शुरू करें उमर।
1: मुझे लाहौर से बैठ जाएंगे डायरेक्ट तो ठुक जाएगी गाड़ी कहीं पे।
2: चले आप भी शुरू करें।
0: स्पीडो चलती है,
1: स्पीडो बहुत स्लो है यार, टाइम लग जाएगा।
2: हसीब इनकी रहनुमाई करें आप।
1: हसीब तुम चुप रहो, अभी मुझे बोलने दो।
0: चलो आप बोलो,
1: ये मेरी रहनुमाई ना करो आप। तो स्टार्ट करते हैं अपना लाहौर से, रेडियो पाकिस्तान से। रेडियो पाकिस्तान की तारीख की बात की जाए तो रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तान बनने से पहले अगर देखा जाए तो पहले भी ये इमारत यहाँ मौजूद थी, पर पाकिस्तान बनने के बाद 1947 के बाद इसका नाम जो था पहले ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान से, ऑल इंडिया रेडियो से ऑल अपना रेडियो पाकिस्तान कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट स्टार्ट से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज चल रही हैं। इसमें FM जिस पे आपने सुन रहे हैं FM 101 ये भी है, और
0: मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा क्योंकि लाहौर मेरा भी शहर है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके हाथ में है मेरे शहर का फसाना।
1: जी
0: तो ज़रा एहतियात से चलिए।
1: मैं बिल्कुल बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे पता है कि इस ड्राइविंग सीट पे आके मैं बल्कि ड्राइविंग सीट ड्राइव कर रहा हूँ, साथ में सीट बेल्ट भी बांधी हुई है क्योंकि पता है ना सीट बेल्ट ना बांधने पे चलान भी हो जाता है लाहौर में।
2: जी और वैसे
0: भी हो जाता है,
2: लाहौर की जो ट्रैफिक है वो बहुत तेज है।
1: एक बात मैं क्लियर कर दूं, लाहौर
2: लाहौर बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी तो उमर, रेडियो पाकिस्तान से तो हम निकल चुके हैं, अब आप बताएं कि हमारी अगली मंजिल क्या है, हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं आप?
1: लाइबा, रेडियो पाकिस्तान के बाद हमारा अगला स्टॉप ज़्यादा दूर नहीं, रेडियो पाकिस्तान के बिल्कुल ही पास चंद मिनट की मुसाफत पर है बादशाह मस्जिद।
0: अरे वाह,
1: मस्जिद का जिक्र उसमें ना आए ये कैसे हो सकता है?
0: बादशाही मस्जिद वाली फील आ रही है। हसीब, आपको भी आ रही है ना?
2: मुझे आ रही है, बल्कि मुझे अपने जात का भी याद आ रहा है कि मैं मुगल हूँ और वो भी मुगल थे।
0: ओ वाह जी।
2: और मेरे बड़ों की बनाई मस्जिद है
1: जी। जी,
2: दूसरे काम भी हैं उनके, लेकिन मस्जिद ज्यादा अच्छी चीज है, तो मैं पॉजिटिव चीजों को बताना चाहूंगा।
1: हसीब, आप कभी वहां गए हैं?
2: मैं बहुत दफा गया हूँ, लेकिन जैसे किसी की शादी है और निकाह पे जाते हैं लोग, वहाँ पे निकाह करवाते हैं, और वहाँ पे बड़ा प्यारा सा म्यूजियम भी है, तो म्यूजियम को देखने भी जाना चाहिए। उसके अलावा जो इमारत का स्ट्रक्चर है, जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जो उस पे मतलब एक दफ़ा आप देखते हो तो आपकी आंखें रुकती हैं, ऐसी बिल्डिंग है। उसके साथ ही बादशाही मस्जिद और शाही किला, बीच में से रस्ते लगते हैं उन दोनों को। शायद मेरी उर्दू भी सामने लाहौरियों जैसी है,
1: बिल्कुल,
2: लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरा पूरा बताऊं। उसके बीच में से बागात गुजरते हैं जहाँ पे राजा रंजीत सिंह थे, जहाँ पे कोहे नूर हीरा ला के रखा गया था, तो इन सारी चीजों की बात भी जरूरी है। और वहाँ पे बादशाही किले के अंदर आपको एक मस्जिद मिलती है, जिसके बारे में बड़ी मशहूर स्टोरी है कि वो थोड़ी सी हॉरर है,
0: लेकिन
2: वो भी मैं देख के आया हूँ। मोती मस्जिद, सही याद करवाया आपने, वो बड़ी खूबसूरत मस्जिद है।
1: उसके बिल्कुल अकब में शीश महल,
2: शीश महल, और उसके अलावा, उसके अलावा मेरा ना थोड़ा सा टॉपिक घूम रहा है, मुझे ना हॉरर चीजें ज्यादा याद आ रही है, क्योंकि वहाँ पे तय खाने।
0: हसीब से माइक ले लें, ये तो हमें डरा रहे हैं।
2: आप तो बताना चाहेंगे इसके बारे में?
1: मैं यही बताना चाहूंगा कि आप, हसीब ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मैंने बादशाही मस्जिद स्टार्ट किया, तो उसके बाद अब हसीब हमें लेके चले गए अपना शाही किले में, और शाही किले में जो अमारात मौजूद हैं, उन्होंने, हसीब ने हमें उसके बारे में बताया कि वहाँ म्यूजियम भी हैं, जहाँ पे उस जमाने की काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उन्होंने सेव करके रखी हुई हैं, स्टोर की हुई हैं, ताकि जो लोग बाद में आने वाले लोग हैं, जो उस टाइम पे नहीं थे, वो वहाँ पे आएँ, वो चीज़ें देखें और अपने आप को उस दौर में ले जाएं, जहाँ पे जिस वक्त इन चीज़ों से, इन सामान से जंगें लड़ी गईं, बादशाह जो थे उस टाइम के, महारानियाँ किस तरह रहती थीं, उनका रहन सहन कैसा था, हमें वहाँ पे जाके वो फील आती है कि वो किस तरह रहते थे उस टाइम पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: बात बड़ी सीरियस हो गई है। मैं यहाँ पे जो मेरे नए आने वाले लोग हैं जो बादशाही मस्जिद आएंगे, उनको एक हिदायत देना चाहता हूँ, जब भी बादशाही मस्जिद आए अपने बच्चों का हाथ ना छोड़ें, क्योंकि मैं भी बचपन में घुमा हूँ और बहुत से लोग भी वहाँ घूमते हैं।
0: वैसे आप कहाँ कहाँ नहीं घूम चुके, आप जैसा शरारती बच्चा तो मेरा ख्याल है हर जगह ही घुमा रहता है, बताइएगा।
2: मैं ना जरा घूमने फिरने का शौकीन बच्चा हूँ, और मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन है, मैं आगे नई चीज देखने चले जाता हूं।
1: हसीब वो शरारती बच्चा है जो वहां जाके दोबारा पे नंबर लेके आता है।
0: उमर, आपने ड्राइविंग सीट पे रहना है, हसीब कहीं हमें घुमा आते हैं,
1: हसीब एक्सीडेंट कर देगा।

0: वेलकम वेलकम बैक सामीन, हम ट्रैक ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी तक ड्राइविंग सीट जो है वो उमर के पास ही है, तो एहतियात कीजिए।
1: मैंने पहले भी एहतियात से गाड़ी चलाई है, मैं आगे भी एहतियात से ही गाड़ी चलाऊंगा।
0: बिल्कुल,
1: असीब का मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कि असीब गाड़ी ठोक देगा।
0: नहीं नहीं, सामीन इस बात के शाहिद हैं कि सब बहुत सेफली ड्राइव कर रहे हैं।
1: असीब सीट बेल्ट बांध के।
2: जी जी,
0: मुझे तो डिग्गी से निकालें।
1: नहीं, सामान हमारा चोरी हो जाएगा, आपको नहीं निकालना।
0: ये तो गलत बात है, हम अपने सामीन से पूछते हैं कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है ना, तो आपने हमें बताना है कि इन दोनों का रवैया जो है ना वो कैसा है।
1: बहुत अच्छा है।
0: जी, तो हम बात कर रहे थे लाहौर की, और लाहौर का जिक्र तो मैं समझती हूँ कि बहुत लंबा चल सकता है। तो कहाँ थे हम उमर, आप अब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं?
1: हम सॉन्ग ट्रैक से पहले हम थे शाही किले में। शाही किले से निकलते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं जो कि है
0: शाही किले से निकलने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। सुना?
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: मैं तो सुना करूंगी कि माइक जो है वो मेरे सामने है। जैसे कि हसीब ने कहा कि इनको सब कहते हैं मुगल हैं, तो यानी कि बादशाही मस्जिद इनकी है, तो इसी तरह मुझे भी बहुत लोग कहते हैं। मैं जब बताती हूँ कि मेरा नाम लाइबा शाहजहान है तो कहते हैं कि मुगलों से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ।
0: जी नहीं, शाहजहान जो है वो वैसे भी कोई और भी हो सकते हैं।
2: इंस्पायर होके रखा जा सकता।
0: हाँ, इंस्पायर होके रखा जा सकता, बिल्कुल,
2: जैसे कि नूरजहां।
0: हाँ बिल्कुल। और इससे भी मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं जब कोई 5 या 4 क्लास में थी तो एक बच्ची थी मेरे साथ, तो उसने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है। मैंने कहा मेरा नाम लाइबा शाहजहान है। तो अगले दिन कहती कि आपके बाबा का नाम नूरजहान है। तो मेरे बाबा ने कहा कि किसी दिन तुम्हारे घर आके गाने गाऊंगा, फिर तुम्हें याद रहेगा कि मेरा नाम क्या है।
1: तो लाइबा ठीक है, अब चलते हैं अपना बादशाही किले से निकलते हैं और साथ ही चलते हैं रंजीत सिंह की मड़ी पे। बादशाही मस्जिद का जिक्र हो और रंजीत सिंह की मड़ी का जिक्र ना किया जाए कैसे हो सकता है, क्योंकि हर साल लाखों की तादाद में सिख यात्री वहां पर आते हैं, अपनी समाजी रसूमात अदा करते हैं। तो हम यहाँ पे अपने अपना जो तारीख की बात कर रहे हैं और साथ में मशहूर जगहों की बात कर रहे हैं, तो बादशाही मस्जिद शाही किले के बाद रंजीत सिंह की मड़ी का भी जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी था। और इसके साथ साथ अगर हम वहां से निकलें, क्योंकि 14 अगस्त की आमद आमद है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और अनकरीब आप भी जो है 14 अगस्त पे वहाँ मुझे लगता है जरूर जाएंगी।
0: हाँ, किस चीज के साथ? बाजा के
1: साथ, पांव पांव रखते हुए।
0: बिल्कुल नहीं,
1: एक बाजा, एक झंडा, एक लाइबा डिग्री में बैठी हुई।
0: मुझे डिग्गी से बाहर निकालेंगे।
1: जाएंगे तो आपकी फैमिली आपको हमेशा की तरह डिग्गी में ही रख के लेके जाएंगी।
0: अब वो ऐसा नहीं करते।
1: तो चलें, मैं बता देता हूँ कौन सी जगह है। वो जगह है ग्रेटर अपना नए पाकिस्तान, जिसका मौजूदा नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है। क्योंकि 14 अगस्त का जिक्र हो और मशहूर जगह हो रही हो।
2: उमर, जैसे आपने नाम लिया मीनार पाकिस्तान का, बल्कि जो लाहौर में रहते हैं और जो लाहौर के बाहर भी रहते हैं वो सारे अपने बचपन में कहीं ना कहीं मीनार पाकिस्तान जरूर आते हैं।
0: बिल्कुल,
2: और वहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, 14 अगस्त पे तो वहाँ पे इतना रश होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ लाहौर से ही नहीं, बाहर से भी, लाहौर के इर्द गिर्द से, इनफैक्ट जो अदर दूसरे सूबे हैं।

0: से भी लोग मेरे पाकिस्तान हर साल लाखों की तादाद में आते हैं, जब वहाँ पे देखा जाए तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हजूम होता है लोगों का, और सब लोग कौमी परचम लेके बाजे लेके वहाँ पे आते हैं, और वो वहाँ पे जो अपना फायरवर्क होता है, यकीन माने कि वहाँ पे सिर्फ मेरे पाकिस्तान के अंदर नहीं, उसके इर्द गिर्द भी ट्रैफिक इतना जाम होता है, हट वही आप वाली बात के बाजे
1: बिल्कुल
0: जरूरी है, जो जंगल सोर बाजी तो जरूरी है ना।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ वैसे 14 अगस्त की बात नहीं है कि वहाँ पर रश होता है, वहाँ पर आप आम रूटीन में भी जाएं तो आपको बहुत रश मिलेगा। मीनारे पाकिस्तान में जो बाकी सूबों से लोग घूमने आते हैं, अगर वो लाहौर आए तो मीनारे पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद, ये वो स्पॉट हैं जिनको वो कभी भी मिस नहीं करते।
2: और अगर आप इस जगह का ड्रोन शॉट देखें तो क्या खूबसूरत नजारा आता है, एक तरफ मीनारे पाकिस्तान, दूसरी तरफ शाही किला, और उसके साथ ही आपको बादशाही मस्जिद मिलती है, बल्कि कई सारी किताबों का वॉलपेपर भी है ये जगह।
0: बिल्कुल ऐसी ही बात है, हसीब ने बहुत अच्छी बात की इसके साथ, जब आपने बादशाही मस्जिद की बात की तो हसीब खापों से याद आया कि लाहौरी तो वैसे ही बहुत मशहूर है खापों के लिहाज से, तो क्यों ना फूड स्ट्रीट की तरफ चलें।
2: चलो
0: बहुत
2: चलो।
0: सफर कर लिया है, बहुत घूम लिया, भूख लगी है तो कुछ खा भी लेते हैं,
2: चलो
0: तो चलते हैं लाहौर की मशहूर फूड स्ट्रीट की तरफ।
1: बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगी थी कि मुझे डिग्गी से निकाले, मुझे कुछ खाना है।
0: आपको मुश्किल आते हैं परेशान है।
2: और फूड स्ट्रीट से मुझे याद आया कि फूड स्ट्रीट में भी तारीखी इमारत हैं, तारीखी दरवाजे लगे हुए हैं, और उन तारीखी दरवाजों को अगर आप देखो तो आप एक दफा पीछे चले जाते हो, बल्कि शाही किले के बिल्कुल पीछे, शाही किला बीच में से जा ही नहीं रहा क्योंकि वो बिल्कुल लाहौर का दरमियान है।
1: बिल्कुल,
2: और उसी के साथ फूड स्ट्रीट बनी है। लाहौर में तीन फूड स्ट्रीट है, एक ग्वाल मंडी में, एक शाही किले के साथ, और तीसरी जो हमारी माल पे है। और सबसे ज्यादा आजकल जो चलती है वो शाही किले के साथ वाली चलती है, और वहां पे बड़ी पुरानी इमारत और बहुत खूबसूरत नजारा है। उसके अलावा वहां पे खाने भी बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: और यहाँ पे इसके साथ हम स्पेशल थैंक्स करेंगे अपनी गवर्नमेंट का, जिन्होंने उस स्ट्रक्चर को, जिनके वो स्ट्रक्चर पहले ही बहुत उमदा लाजवाब था, और हमारी मौजूदा हुकूमत ने वहाँ पे काम करके उसको उसी अंदाज में जैसे वो पहले था उसी अंदाज में उसको रिस्टोर किया, तो उसको एक मतलब एक नई चमक मिली, पहले की तरह जैसे पहले था बिल्कुल वैसे दोबारा रिस्टोर करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि वहाँ पे साथ ही जो जैसे हसीब ने बताया कि वहाँ पे दरवाजे हैं, वहाँ का ग्रे स्ट्रक्चर है, उसको उसी तरह जैसे वो पहले था उसी तरह उसको रिस्टोर करना एक बहुत बड़ी बात है।
1: जी, वर्ल्ड सिटी लाहौर की तो क्या ही बात है। और अभी रिसेंटली 2026 में ही हमारा एक प्रोजेक्ट था, और हम सारे क्लास फेलोज जो हैं वो इकट्ठे होकर गए, और इतना मजा आया, वजीर खान मस्जिद, दिल्ली गेट, अंदरून सारा जब हम घूमे, और वो मुझे डिग्गी में बिठा के नहीं गए, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो वो जो है हम वहाँ गए, नाश्ता किया और बहुत मजा आया।
2: अच्छा, आपने क्या नाश्ता किया था?
1: हमने वहाँ पर पहले तो हमने बहुत तलाश किया, लड़कियाँ जब इकट्ठी होती है ना तो फिर वो कहती हैं कि नहीं ये चीज नहीं वो चीज़ नहीं।
2: मैंने सुना लड़कियों को ना तीखी चीजें खाने का बड़ा शौक होता है, जैसे गोलगप्पे हो गए।
1: Exactly.
2: तो आपको कहाँ के गोलगप्पे पसंद है?
1: मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है, और मैं आपको ये बात बताऊं कि जब भी गोलगप्पे खाती हूँ अगले दिन मेरा गला खराब हो जाता है, और कल रेडियो के प्रोग्राम की वजह से मैंने गोलगप्पे मिस किए हैं, क्या दुख याद आ गया।
0: ये तो बहुत ज्यादती होगी आपके साथ,
1: क्योंकि मुझे पता, हाँ डिग्गी में आप लोग बिठाए और गोल गप्पों की वजह से मेरे गले
2: नहीं, जब मैं ड्राइविंग करूंगा मैं आपको साथ वाली सीट पे बिठाऊंगा।
1: थैंक यू हसीब जी। तो इसी के साथ ड्राइविंग सीट पे उमर है, माइक पे तो मैं हूं ना, तो मेरी मर्जी में सामीन को जहां मर्जी ले जाऊं। जी सामीन, तो हम तरफ आ गए हैं, और आमों की खुशबू तो आ रही होगी आप लोगों को,
2: हल्की हल्की
1: हल्की हल्की नहीं,
2: मौसम है लेकिन हल्की हल्की खुशबू,
0: बिल्कुल खुशबू के साथ भूख लगने लगी है। आमों का जिक्र हो और साथ पेट में चूहे ना दौड़े, कैसे हो सकता है?
2: पहले कुछ खा ना लें ब्रेक देके।
0: मैं तो कहता हूँ आम मंगवा लो, आम भी खा लेते हैं।
1: चले आम आ रहे हैं हमारे, और साथ साथ हम आपको सोहन हलवा भी खिलाते हैं।
2: हाँ ये तो सौगात है ना मुल्तान की।
0: सोहन हलवे से मुझे स्टोरी याद है, जब मैं हसीब सफर कर रहे थे, हसीब याद है आपको, आपने बस में सोहन हलवा खाया था। आप बताएंगे मैं खुद
1: बताएं
2: मैं आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मैं अपने सामने को बताना चाहता हूँ कि मुल्तान
0: आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था जब आपने सोहन हलवा खाया था?
2: थोड़ा थोड़ा दिल खराब हुआ था,
0: ज्यादा हुआ
2: नहीं, बचत थी।
0: चले चले चले ठीक है,
1: चले इस जिक्र को हम यही छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि इसलिए
0: चले मैंने हसीब माफ किया आपको,
2: चलो आप, शुक्रिया आपका, माफ करने वाला बड़ा होता है आप ऐसे भी काफी लंबे हैं माशाल्लाह।
0: जी जी जी।
1: अब हम चलते हैं शम्स तबरेज़ी के की तरफ।
2: माशाल्लाह
1: जी, तो हम वहाँ पहुँच गए, आपको वहाँ की फील आ रही है?
2: हल्की हल्की
1: हल्की हल्की आ रही है। अब जो
0: जिक्र हो, भूख लगी हो, तो फिर हल्की हल्की फीलिंग आती है, भी कर रहा हूं खाने का।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसी के साथ अभी हम कहाँ थे? शम्स तबरेज़ी के मज़ार पर।
2: जी,
1: जी तो ये
2: गर्मी काफी हो गई है, हम नॉर्दर्न साइड पे ना चले,
1: यहाँ से देखिए ये ले मुझे यहाँ से लेके जा रहे हैं। चलें जैसे आप कहें, क्योंकि माइक तो आपके सामने भी है, ले चलें।
2: तो मैं अपने सामने को बता रहा हूं कि जो
0: ड्राइविंग सीट ले लिया आपने, सीट बेल्ट तो बांध लो, चलान करवाओगे क्या?
2: चलो कोई बात नहीं, इमेजिनेशंस ही हैं इनकी, खैर। अच्छा, तो मैं आपको अपने नॉर्दर्न एरियाज का बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाके। अभी थोड़ी सी चीजें सीरियस हैं, क्योंकि अगर आप देखें ना, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत ही खूबसूरत जगहों से और उसके अलावा मौसमों से नवाजा है। पाकिस्तान में चार मौसम आते हैं और चार मौसम अपना अपना रंग दिखाते हैं।
1: बिल्कुल ऐसे
2: पाकिस्तान के लोग इन चार मौसमों में सरवाइव करते हैं और इंजॉय करते हैं, और कहीं भी चले जाएं उनके लिए गर्मी सर्दी बर्दाश्त के काबिल होती है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि मैं थोड़ी सी बात बताऊं, अगर फ्रांस में जैसे पीछे गर्मी हुई थी और दूसरे ममालिक में गर्मी हुई थी, तो वो लोग बहुत तंग हुए थे, क्योंकि वो सारा साल एक ही मौसम में रहते हैं, है ना। वहां पे भी खूबसूरती है, लेकिन जो पाकिस्तान की खूबसूरती है, जब ऐसे पत्ते झड़ते हैं, फूल सड़क,
1: डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है ना, बहुत। हाँ। यानी कि जबानों में देख लें, खानों में देख लें, शहरों में देख लें, इसी तरह मौसमों में भी।
2: और ऊपर से हमारी गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया कि रस्तों को और जगहों को बहुत ही खूबसूरत बना दिया, सजा दिया, सवार दिया लाहौर को भी, और उसके साथ साथ उसके इर्द गिर्द के इलाकों को भी, बल्कि अब नॉर्दर्न साइड्स पे भी जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारा पॉइंट आता है, वो मरी पॉइंट है, बड़ा फेमस पॉइंट है, सब लोग जाते हैं।
1: ठंड लगना शुरू हो गई है?
2: नहीं, अभी ठंड हुई नहीं, हल्की हल्की। तो उसमें हमारे पास जीपीओ चौक आता है, जहाँ पे अक्सर आप हर तरह के बंदे की तस्वीर फेसबुक पे देखेंगे। और उसके अलावा हमारे पास कश्मीर पॉइंट आता है,
0: स्पेशली जीपीओ की सीढ़ियों पे।
2: हाँ, वहां से बहुत लोग गिरते हैं। हाँ, जब वहां पे बर्फ जमी होती है।
0: मुझे लगता है आप भी वहां
1: गिरे हैं। एहतियात कीजिए।
2: नहीं, मैं बच गया था, मैं वहां नहीं गिरा था, मैं थोड़ा सा, नहीं, मैं थोड़ा सा आगे होटल की सीढ़ियों पे गिरा था।
0: ये मुझे यकीन है तुम खाना खाते वक्त गिरे होगे।
2: अच्छा, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहूंगा। लाइव मेरा वाकया बीच में रह गया, तो मैं बताना चाह रहा था कि जब मैं मरी गया था फर्स्ट टाइम, वहां पे मरी में तूफान आया था और बिजली की तारें गिर गई थी, तो मैं अकेला बंदा था जिसने शूज पहने हुए थे कपड़े वाले, नॉर्मल, मतलब मैं तो घर से बाहर गया था दोस्त की तरफ मिलने, और आगे हम बाइक पे बैठे और बाइक
1: पे घर वालों को लगा के घूम गए।
2: हाँ जी, नॉर्मल मैंने निकला था मैं घर से। अच्छा, तो वहां पे पहुंचे, अब जब मेरे शूज सारे गीले थे, तो जब मैं पाँव रखता था जहाँ पे तार गिरी हुई थी, मुझे अकेले को करंट पड़ता था, बाकियों को नहीं पड़ता था। बस वही वजह बनी कि मैं एक मंजिल पूरा नीचे तक गया गिरता हुआ सीढ़ियों से। उसके बाद से मैं मरी नहीं गया, लेकिन मैं रुका नहीं, मेरे शौक नहीं रुके। मैं मरी से आगे यूबिया भी गया, नथिया गली भी गया, एपटाबाद भी गया, बहुत सारे इलाके घूमे और बहुत ही खूबसूरत
0: जगह। नान लेने गए थे, वो नान वो क्या दुकान पे गए, वो कहाँ गए? नाश्ते का वेट कर रहे हैं।
2: मैं बहुत हुक्म मानने वाला बच्चा हूँ अपने वालदैन का। मेरे वालिद साहब बड़े सख्त हैं। जब मैं तीसरे दिन घर आ रहा था, मेरी अम्मी ने कहा, बेटा अच्छा सा सालन बने, नान लाजमी लेके आना।
1: अंकल का चार्जर मिल गया, मैं आपको बता रहा हूँ।
2: तो मैं उसके बाद मेरा सफर जारी रहा। पहला पॉइंट मेरा मरी था, और उसके अलावा भी मैं बहुत सारा नॉर्दर्न एरिया घूमा हूँ। तो जो खूबसूरती मेरी आंखों से मैंने देखी है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कश्मीर वाली साइड का जिक्र करें, तो क्या खूबसूरत है माशाल्लाह।
0: आपको वहाँ पे कश्मीर का जिक्र कर दिया, कश्मीर तो वैसे ही जन्नत की
1: जन्नत नजीर वादी कहा जाता है। बिल्कुल,
2: अगर आपको यहाँ पे जन्नत लग रही है, तो हम दुनिया में रह के बात करें, तो यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास स्विट्जरलैंड भी है। ठीक है
0: जी जी जी।
2: तो स्विट्जरलैंड की बात चल रही है, तो सवाद कलाम और उसके इर्द गिर्द के इलाके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, वो हमें स्विट्जरलैंड का व्यू पेश करते हैं।

0: मुझे क्या।
1: तो जी सामीन, आपने हमारा शो सुना। उम्मीद करता हूँ आप सबको हमारा शो बहुत पसंद आया होगा। इस सफ़र में जो मेरे साथी थे, हमारी होस्ट लाइबा, मैं आपका मेज़बान हसीबुर रहमान, और मेरे साथ उमर फ़ारूक, बहुत ही खूबसूरत नाम। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ जब भी अगर दोबारा मौका मिला तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा और इसी तरह आपको नई से नई चीज़ें बताऊंगा।
2: तो जी नाज़रीन, अब हमारे शो का जो है वो टाइम ख़त्म होता है और ये आप सुनेंगे मिली नगमा। और इसके साथ साथ आखिरी मैसेज हमारा यही है कि आपने 14 अगस्त के मुतालिक मैं एक जो है इस्लामी पैगाम दूंगा कि आप सब 14 अगस्त वो है वो मिली जोशो जज्बे के साथ मनाएं, घरों से निकलें, झंडे उठाएं, अपने जो है वतन के साथ इस अपना जो मोहब्बत है उसका इजहार करें, और साथ में हमें भी याद रखें। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे साथ पाकिस्तान का जो मशहूर जगहें थी वहाँ पे गए, आपने जैसे कॉल आई आपकी कि आपने बताया कि हम भी आपके साथ, हमने प्रॉपर फील किया कि हम वहाँ चले गए। तो मिलते हैं एक नए शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सुनेंगे ये मिली नगमा।

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रुमैसा कुरैशी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क भर में कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म और दिफाई पैदावार के वज़ीर ने इस्लामाबाद में एक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया है। नायब वज़ीर आज़म ने खित्ते और दुनिया भर में अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने के पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर मंसूबा बंदी और तरक्की की ज़ेर सदारत हंगामी रद्द अमल कमेटी के 13वें इजलास में मुल्क भर में मानसून की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल अजीज की 18वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और शाम की एक अदालत ने साबिक हुक्मरान बशारुल असद को इंसानियत के खिलाफ और जंगी जराइम के इल्ज़ामात में कसूरवार करार देते हुए उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी है।
1: Hi, this is FM 101.
2: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जा दें। ज़ेर तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
3: 101 FM।
4: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
7: This is FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
6: This is FM 101.
3: सुनते रहिए FM 101.
7: आइए सामेईन अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा. मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन. ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है.
8: आज हम बयान करेंगे पारा है चौथा सूरह आल इमरान है आयत मुबारक 142. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अम हसिब तुम अम मैंने क्या हसिब तुम क्या तुम समझते हो क्या तुम इस हिसाब में हो क्या तुम इस ख्याल में हो क्या अंतद खुल जन्नत था कि ऐसे ही दाखिल हो जाओगे जन्नत में. वल्लम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदु मिनकुम और अभी अल्लाह ने तुम्हारे गाजियों का इम्तिहान ही नहीं लिया कोई तुम्हारा और ऐसे ही भेज देगा जन्नत में. वयालमस साबरीन और साबरों का भी इम्तिहान नहीं लिया क्योंकि सब तुम्हारे सब्र का. तो ये चीज़ जो अल्लाह ताला के यहाँ इशात फरमाई गई है कुरान मजीद में कि किसी तरह से भी तुम्हारी छूट नहीं है. कभी ये ना समझना कि तुम ऐसे ही जन्नत में नहीं और हम जरूर तुम्हें परखेंगे. और ये ईमान वालों के लिए ईमान है तो सब कुछ है. बाकी जो गैर ईमान है गैर ईमान वाले लोग जितने माशरे में रह रहे हैं तो अगर उनकी आजमाइश नहीं हो रही और उन्हें कोई अल्लाह ताला नहीं चेक कर रहा ना बीमारी भेज रहा ना मुसीबत भेज रहा. एक तो होता है ना खुद की पैदा करदा. हाँ मुसीबत जो होती परेशानी दो तरह से होती है. एक एक जो अपने हाथों से आगे भेजी जाती है उसका तो कोई अजर नहीं होता. वो तो काफरों को भी मुसलमानों को भी दोनों को आ सकती है. हाँ किसी तरह से एक होती है मुसीबत परेशानी वो कि जब आपने कुछ भी नहीं किया और आप ईमान के रास्ते पर चल रहे हैं अगला चलते रहा ही आपको थप्पड़ मार दे या आपकी दौलत आपका रुपया पैसा आपके बीवी बच्चे किसी तरह से आपको नुकसान पहुंचाए आपको तकलीफ आ जाए माशरे में और आप हो ईमान के रास्ते पे उसका अजर अल्लाह कुरान मजीद में शात माता इस दुनिया में भी उसे देंगे और उसे आखिरत में भी देंगे. यानी उसके लिए दो अजर हैं कि इस दुनिया में भी और आखिर इंसान अलफी खुजर. हाँ और कसम है जमाने की इन इंसान अलफी खुजर कि बेशक इंसान खसारे में है. इंसान मुसलमान नहीं. हाँ इंसान का जिक्र हो रहा है यहाँ. इंसान से मुराद काफर लोग मगर वो लोग जो ईमान वाले अब ईमान वालों का जिक्र कर रहा है वो सालियात और उन्होंने नेक अमल भी किए. यानी ईमानियात में ये भी शामिल है कि आप नियतें सही रखें अपना दारोमदार नियतों का अदराक पे है वजदान पे है आपका एहसास सही हो अंदरून में. इन तीनों के लिए ईमान का होना लाजमी शर्त है. ईमान क्या है? ईमान अल्लाह ताला का एक होना है उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी होना है उसकी तालीमात पर अमल करना है इस्लामी कवानीन हदूद ताज़ीरात तमाम उसके बारे में हज उमरा ये तमाम यानी ऐसी चीज ऐसे कवानीन अमानत में खयानत बदोदी गीबत वालदैन की नाफरमानी कर्ज का लेन देन के आदाब रिश्वत हाँ राशि वल मुर्तशी फिर नार इस तरह की यतीम के बारे वाला तकर्रुल माल अल यतीमा ये तमाम कुरान मजीद के हमसाया के हकूक अजीज़ोकारब तबलीग दीन शादी ब्याह के मामला तलाक के मामला खुला के मामला जादू टूना के मामला कत्ल के मामला कुफर और जमाइश यानी हर तरह की आजमाइश में से गुजरना है उसको हम ईमानियात कहते हैं. जब हमने ईमानियात किसी एक चीज का इनकार यानी जान बूझ कर कुरान मजीद की किसी एक आयत या हुक्म पर जान बूझ कर इनकार या अमल ना करना पूरे कुरान मजीद का एक तरह का इनकार है और ये कुफर में शामिल हो जाता है. इसलिए हर लम्हे लम्हे पे ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम आफाक की इस कारगर शीशा गरी का तो इसमें बड़ा नाजुक मोड़ है. हाँ इसका कोई अजर नहीं मिलता काफिर को. हाँ पहली ईमानियात है पहली शर्त क्या है आजमा. जो ईमान पर कायम रहते हैं उन्हें मुसीबत आएगी तो उन्हें फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं फइन्ना मा अल-उस्री युसरन इन्ना मा अल-उस्री युसरा बस हर मुश्किल के बाद आसानी है. यानी जैसे कोई मुसीबत आएगी ईमान वाले पे तो अल्लाह ताला उसे उसको उसके मुसीबत के बाद फौरन इनाम देगा. यानी जितनी बड़ी कुर्बानी और आजमाइश है मुसलमान उसे गुजरेगा उतना ही बड़ा इनाम अल्लाह ताला उसे था. लेकिन शर्त अल्लाह की यह है कि वो मंदरजा बाला तालीमात जो बताई अभी बयान की हैं तो उसको फॉलो करता हूँ. ईमानदार होना पहली शर्त है. پھر ہر ہر مصیبت پریشانی قربانی کا بدلہ وہ اللہ انسان کو لازمی ضرور اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دیتا ہے، جیسے اصحاب کیف ہیں، جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ، سیدنا بلال افشی رضی اللہ، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، صابر کلی شریف، اسے غازی لمدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت وہ جو بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم ادم ہیں، وہ حضرت علامہ اقبال قائد اعظم، جو انہوں نے محنت کی اتنا بڑا پھل عطا فرمایا کہ رہتی دنیا قیامت تک ان کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، نوٹوں تک پہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما رہا ہے، ان کا ثواب پہنچا رہا ہے، ان کا نام اونچا کر رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہی تھی تو آسمان کی طرف انہوں نے کہا کہ دو دن اچھے گزر گئے، اللہ کیا تو نے مجھے یاد نہیں کیا، کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ تو ان کے مریدوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہاں جب مصیبت نہ آئے تو پھر فکر مند ہو جاتی ہوں میں کہ کیوں نہیں اللہ نے مجھے پوچھا، یعنی پتہ لگا اللہ والوں کے لیے جو مصیبت آنا ہے بڑی نعمت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس سے اللہ یاد آ جائے مصیبت سے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صدق اللہ۔
7: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستان عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ، نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ، لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
6: This is FM 101.
3: سنتے رہیے FM 101.

हम बात करने वाले हैं आज उस जगह की जो ना सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि दिल के एक खास कोने में रहती है, वो जगह जहाँ सुबह की अजान के साथ चाय की प्याली और पराठे की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, जहाँ की गलियों में बच्चों का शोर शराबा गूंजता है, जहाँ बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू एक महंगी परफ्यूम से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो जगह जहाँ हर शहर की अपनी ज़बान है, हर शहर का अपना राग है, लेकिन दिल सबका एक ही धड़कता है। आज हम याद करेंगे उन लम्हात को, उन रंगों को, उन लोगों को जो हमें हर दिन फख्र से चलना सिखाते हैं। हम भरेंगे एक छोटे से मिली नगमे की तरफ। हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा FM 101।

0: मिल जाए तुझे ख्वाब की ताबीर तो क्या।
1: 13 अगस्त 1947, ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक।

कंसर्व किया है और एज ए मेमोरी, एज ए गुड मेमोरी उनको यहाँ पे उन्होंने उनके फोटो फ्रेम्स लगाए हुए हैं ताकि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें कि उन्होंने हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया अपनी ज़िंदगी का। तो ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है रेडियो पाकिस्तान की। रेडियो पाकिस्तान के हॉल को देखा जाए वहाँ पर मजमे लगते हैं, सिंगिंग सेशंस होते हैं, आरजे डॉग्स असद और ज़िया अंजुम ये हमें बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है अभी तक। तो मेरी तो यही खूबसूरत तरीन मेमोरी है, आप लोग भी अपनी यादें बता सकते हैं। लेकिन हम बातें तो चलती रहेंगी और लेकिन हम एक और मिली नगमा सुनेंगे और चलाइए ज़रा एक मिली नगमा।

सुन रहे हैं FM 101. आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू आर कॉल्स, और हमारा नंबर नोट कर लीजिएगा 04211100101. मैं दोबारा रिपीट करने लगी हूँ नंबर को, 04211100101.

0: وعليكم السلام.
1: جي ما
0: ماهين نام كده
1: ماهين
0: الحمد لله ما في قواس ما يعرفني
1: ما بتيك الحمد لله ماهين पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगी?
0: पाकिस्तान के बारे में ये हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है, हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा करते रहेंगे और हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क
2: की बड़ी काबिशें हैं। उसके साथ ही इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान जैसे जैसे ऊपर जाएगा, तरक्की करेगा, पाकिस्तान को इज्जत मिलेगी, ये पीटीआई को बात हजम नहीं होती और ये हर उस मौके पे एहतजाज का ऐलान करते। इससे पहले भी कोई बाहर का सरबराह, किसी और मुल्क का सदर, वजीर आजम पाकिस्तान आ रहा हो उस मौके पे एहतजाज होगा। तो ये जो आज वाकया हुआ है फायरिंग का, मैं समझता हूँ कि इसने सबकी आंखें खोल दी हैं और ये बात अब साबित हो चुकी है कि पीटीआई के हर एहतजाज के पीछे वो एक मजमूम मकसद है कि हमने असले से लेस आना है, हमने फायरिंग करनी है, हमने लाशें गिरानी है, अमन अमान को तबाह करना है और मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। ये आज पूरी दुनिया ने देख लिया है और ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करता रहेगा और क़यादत जिस तरीके से पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है, पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का मुकद्दर जो है वो इंशाल्लाह ताला हर महाज पर फतह होगी और इनको पाकिस्तान के दुश्मनों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा।
3: वफाकी वज़ीर इत्तला तो नशरियात अताउल्ला तारड़ ने रावलपिंडी मॉल रोड पर पीटीआई कारकुन की फायरिंग के हवाले से अहम गुफ्तगू की। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, उनका कहना था तशद्दुद की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुका है और पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते। इनका मकसद मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को खराब करना और मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकना है। जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अहम मौका होता है हमेशा ये लोग धरनों और एहतजाज का ऐलान कर देते हैं। रावलपिंडी फायरिंग वाकई ने इनका मजमूम एजेंडा और इनके अजायम सबके सामने बेनकाब।

0: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है?
1: मैं से बात कर रहा हूँ।
0: आपका
1: मेरा नाम
0: आमिर है।
1: मेरी पाकिस्तान की याद सबसे बेहतरीन ये है, मैं जब स्कूल में जाता था तो मैं अपने टीचर्स के साथ ही सेट हो गया।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

मैं संगीता आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त की आजादी आप सबको मुबारक हो। ये वो दिन है जहां हम लोग आजाद हुए थे और आजादी बहुत बड़ी नेमत है। ये कदर तो उन लोगों को मालूम होती है जो बाहर बैठे हुए हैं।

0: निकाला
1: बहुत शुक्रिया
0: बखैर आफियत सब सब सेट है
1: तैयारियां थोड़ी सी पीकी हैं तो थोड़ी बहुत है। अच्छी हैं कपड़े खरीद लिए गए हैं बाजा नहीं खरीदना
0: क्यों
1: लग चुके अरे बाजा
0: करने का दिन है जिसने आजादी का दिन सेलिब्रेशन का इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला
1: यार तो कुर्बानियों पे बाजे बजाने हैं बस
2: थोड़ा सा मजा
1: क्या करते हो
2: यही तो मजा है
0: थोड़ा सा जश्न ना
1: यार नींद खराब होती है मेरी
0: हाय हाय हाय हाय
1: बाजे नहीं
0: दोपहर को बजा लिया जाए क्या सूट लिया पैंट कोट पहन के आपने ग्रीन और व्हाइट का जो कंट्रास्ट करना है या आपने क्या सलवार कमीज बनाई क्या बनाई
1: सलवार कमीज बनाई और कोटी सोच रहा हूँ अब काली लूं या फिर हरी लूं ये समझ नहीं आ
0: रहा ऑडियंस पे ये किस कलर का जाए हमारी गुजारिश है लिसनर से कि इनको बता दें कि ये कौन से कलर का की वेस्ट कोट जो कर सकते हैं आप 3 दिन बाकी रह गए इतनी देर में तो मैं तो तैयारी 4-5 दिन पहले कर लेता हूँ आपकी कहाँ तक पहुंची
2: आप तो 4 दिन पहले की बात कर रहे हैं हमारी तो तैयारी पहले जब से अगर शुरू होता है तब से शुरू हो जाती है हमारी तैयारियां और हम लोग क्योंकि बेसिकली झंडा तो ऑब्वियसली सारे लगाते हैं वो तो सबको पता है जहाँ तक तैयारी की बात है जाहिर है ये भी एक इवेंट की तरह दूसरे इवेंट की तरह ये भी एक इवेंट बन जाता है हमारे तो घर पे मेहमान आते हैं बकायदा खाने पकते हैं
1: और
3: बात है
2: कपड़े एक तो शुरू आजाद होते हमारी इतनी कुर्बानियों की वजह से
0: फिर जिसने आजादी का ये कैसे मुमकिन है बहुत खूब राहिल साहब आप बताएं कहाँ तक तैयारियां पहुंची आपकी आप तो के पास तो टाइम भी बड़ी मुश्किल से मिलता है सिंगर है माशाल्लाह ऑडियंस को अशरफ साहब जो है वो बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं इनसे सुनेंगे भी प्रोग्राम के दरमियान में भी सुनेंगे प्रोग्राम के एंड को भी सुनेंगे इनको आज हमने सुनते रहना है लेकिन उससे पहले राहिल साहब कहाँ तक आपकी तैयारियां पहुंची
4: जी हमजा भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने का और जहाँ तक रही बात जश्न आज़ादी की तैयारियों की तो तैयारियाँ जो हैं वो जोश व खरोश से चल रही हैं तकरीबन 4-5 दिन पहले जो है वो तैयारियाँ जो हमारी शुरू हो जाती हैं छत वगैरह पे गाड़ियों पे दिलों पे झंडे लग जाते हैं
2: बहुत बड़ी बात की है
4: हमेशा जिंदाबाद रहे
2: बेशक बिल्कुल ये तो हमारा है
4: खाने पीने की तैयारियां भी होती हैं और सारा कुछ ही साथ साथ चलता है
0: खाने पीने की बात पाकिस्तान की बहुत सारी खूबसूरत रवायात हैं जिस पे हम बात करेंगे और पाकिस्तान की रवायात में खाना जो है वो हर इवेंट का एक बहुत मैंने पिछले दिनों में ग्रीन और व्हाइट ट्रेंड देखा तो आप लोग भी कुछ इसी तरह का बनाते हैं भट्ट साहब से पूछते हैं भट्ट साहब आप बताइएगा
1: अरे नहीं नहीं नहीं इसका ग्रीन और ये हरे और सफेद चावलों का रुझान नहीं यहाँ पर अभी तक वो असर नहीं पहुँचा
0: इंशाल्लाह पहुँच जाएगा
1: देखिए अगले सालों में क्या होता है शायद
4: कलर मिलता है ना ग्रीन कलर का तो वो फिर
0: हम मिला के
2: इस दफा आप कोशिश करेंगे होगा
0: इस दफा मेरी
1: कोशिश की जा सकती है जर्दा पकेगा फिर
0: जर्दा पका लें कुछ मीठा तो बहुत चाहिए सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन से याद आ गया मुझे कि रात को 13 अगस्त की रात को से जो है वो जश्न आजादी की आतिशबाजी कौन कौन आप में से कोई जाता है
2: सारे कजन हमारे पहले ही आ जाते हैं 13 अगस्त वाले दिन ही आ जाते हैं और उस रात को 12 बजे हम सारे गुलबर्ग में हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छी आतिशबाजी होती है हम लोग वहां पर जाते हैं
3: मैं तो बल्कि उमर भाई आपको भी कहूंगा कि आप भी इस दफा जरूर
1: चलो ठीक है इस दफा फिर चलेंगे नया एक्सपीरियंस होगा
4: मिलके प्लान करते हैं
0: हां जरूर क्या लगता है आपको कोई ऐसा खूबसूरत सा वाकया जो आपने लिबर्टी पे नोट किया हो कि यार ये मेरे साहब आप ही सुना दें कोई पिछले में आप बता रहे थे कि वो एक वहां पे सिंगर थी और मेरा दिल किया और मेरे आंखों से आंसू आ गए आपने ये भी कहा था तो वो अरे हाँ, किस सिंगर को अपना दिल सुना था वहाँ पे?
1: अरे नाम नहीं पता मुझे, नाम नहीं पता होता हाँ? खैर आवाज का रिश्ता था वो, और वो रिश्ता दिल को ऐसे चीर गया, ऐसे जज्ब हो गया कि आंख पे उसका असर टल गया।
0: साहिर अली बग्गा की बात तो नहीं कर रहे, वो भी काम करते हैं दिल
1: उनके बाल बड़े तो
0: नहीं साहिर अली बग्गा की, शायद आपने किसी और सिंगर से सुना जाए सेलिब्रेशन को पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा मीडिया और दुनिया भर में अगर सुने जाते हैं, कहा यह जाता है कि वो पाकिस्तान के सिंगर है, वो पाकिस्तान के पाकिस्तान में गाते हैं, उनकी वजह शोहरत पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तो हमारी वजह शोहरत है, पाकिस्तान तो हमारी पहचान है। पिछले दो टाइम में भी मैं बात ही कर रहा था, मोहम्मद साहब आप बताइएगा कि क्या जश्न आजादी पे लिबर्टी पे पाकिस्तान में है कुछ खूबसूरत सा आपने देखा? आतिशबाजी तो आपने बताया कि बड़ी
3: सही है,
0: क्या एंजॉय बनाते हैं? आजकल सोशल मीडिया का दौर है,
2: हम तो दोस्तों निकल जाते हैं लिबर्टी की तरफ ही, वहाँ जैसे कि अभी आपने बताया कॉन्सर्ट वैसे ही होता है, तो वो बड़ा एंजॉयमेंट होती है।
0: मैंने बताया आपने क्या एंजॉय किया? मैं तो आप बताएं क्या एंजॉय किया?
4: चलो गए मोमिन साहब,
0: रहील साहब
4: मुझे
0: कहाँ कहाँ पे
4: बचपन में स्कूल वगैरह पे जो है वो परफॉर्म करते थे, और स्टार्टिंग भी मेरा ऐसे ही हुआ कि स्कूल में ऐसे गुनगुना रहे थे, तो 14 अगस्त का मौका था, तो मैडम ने मुझे बोला कि आप जो है ना वो स्कूल को रिप्रेजेंट करें 14 अगस्त के हवाले से, तो बस वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और तब से लगे हुए हैं और कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं 14 अगस्त को। हम
0: बिल्कुल जी बेहतरीन हो गया, मेरे पास मेरे प्रोग्राम में बैठे हो मेरे मेजबान और मेरे सुना ये खूबसूरत सी आवाज पाकिस्तानी को नगमा मिली नगमा
4: जी। हमजा भाई आपको सुना देते हैं थोड़ा बहुत,
0: अता हो

0: एहसान, तेरा एहसान है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज हैरान एहसान, बहुत खूबसूरत आवाज में रहील अशरफ साहब जो है वो हमें सुना रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान का मिली नगमा। और
2: तोपे चलती
1: हैं, मैं

0: हाँ तोपों की सलामी, किस तोपों की सलामी, बड़ी प्राउड मोमेंट होती होगी।
1: प्राउड मोमेंट होता है, और जब फजर का वक्त होता है, बड़ा मुकद्दस वक्त होता है, और उस वक्त बताना होता है कि दुश्मन को कि हम आज़ाद हो गए, और ये 21 तोपे।
0: वाह वाह वाह,
2: क्या बात है उमर भाई, क्या बात।
3: और वाघा बॉर्डर में भी तो सुबह 7 बजे वो
0: परेड बकायदा होती है। और क्या जबरदस्त
1: वो जज्बा
0: होता है। हम तो बकायदा जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बड़ा जज्बा, बड़ा प्राउड। हमें अपने पैगाम जो पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि सामने इनके बगैर कोई प्रोग्राम

0: मूवमेंट को जब किस तोपों की सलामी दी जा रही थी, मुल्क पाकिस्तान को किस तरह से इंजॉय किया?
1: जी हमजा भाई क्या कहते हैं, मैं तो बहुत इंजॉय करता हूँ जब 21 तोपों की सलामी दी जाती है तो दुनिया देख रही होती है, ठीक है। पाकिस्तान पीटीवी पे भी ये जो है ना क्या कहते हैं चल रही होती है नशरियात वगैरह और लाइव सारा कुछ, तो बहुत इंजॉय होता है।
2: लेकिन जो लाइव देखने का मजा नहीं है,
0: कभी लाइव देखने का
1: तो नहीं हुआ, लेकिन जो है ना वो टीवी पे मैं देखता हूँ तो बहुत मजा आता है मुझे।
2: टीवी में देखने में लाइव देखने में फर्क तो है, लाइव में तो क्या जबरदस्त चीज है,
0: टीवी में देख के बड़ा जज्बा हमारा बना।
3: क्या आवाज कैसी होती है?
2: हाँ
3: जब आप टीवी में देखते हैं तो आपको इतनी धमक महसूस होती है,
2: तो आप सोचते हैं जब आप लाइव मौजूद होंगे तो कितने महसूस हो।
0: जो आपके मेहमान बहुत बड़े उन माओं को सलाम है के अंदर कि जिन्होंने अपने पर कुर्बान किए, अफवाज पाकिस्तान के उन नौजवानों को सलाम है जिन्होंने अपने इस मुल्क की खातिर अपना खून बहाया, तो उनको किस तरह अप्रिशिएट कर मुकम्मल नहीं हो।
2: अपनी जानों की परवाह किस पाकिस्तान के लिए कि जो मर्जी को जो
4: पता नहीं क्या हाल होते हैं कभी उनके, कैसे उनके मौसम होता है
2: वहाँ पर, बिल्कुल सख्त मौसम
4: फिर भी वो हमारे लिए वहाँ पर खड़े हैं, सीना तान कर खड़े हैं और हर एक गोली खा लेते हैं सिर्फ हमारे लिए, तो उनको
2: है?
4: सलाम है यार
2: ऐसे मिल जाए। लेकिन आप अपने वक्त वतन की खातिर अपनी जिंदगी को सर्व करें,
0: मैं बिल्कुल जो है उनको मिलती तो उस पर, लेकिन आपको आपकी मेरी हम बड़े लाके सो रहे होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और हम जो उस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो पाकिस्तान जो केटू के पहाड़ों पर चढ़कर शदीद बर्फ के अंदर सर्दियों के दिनों के अंदर हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे होते हैं, उन्हें सलाम
4: सलाम
0: उन्हें सलाम।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
2: सलाम।
0: और यहाँ पर वक्त होता है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 101। आपको नंबर जाते हैं जी 04211100101 पे कॉल करके आप अपना पैगाम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुनते चलते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: उस मिट्टी के रंग रौनक और सरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रैनुलर, जदयू टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: This is FM 101.

वेलकम बैक सामेईन, आप सुन रहे हैं नशरियात। सुन रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें कोई

0: करने वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, नौजवान नस्ल है जो पाकिस्तान में बेहतरीन पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है और पाकिस्तान को शख्स मोमिन जमशेद हमारे साथ मौजूद है। मोमिन साहब, फिर से आपकी तरफ आते हैं, आपने बताया जो है वो भी नगमा ही म्यूजिक का आगाज किया, तो वो किस तरह की तकरीब थी, जश्न आज़ादी की तकरीब थी और क्या वहाँ पे फीलिंग्स थी?
1: जी मुझे याद है, मैं उस टाइम स्कूल में था तो मैं ऐसे ही गुनगुना रहा था, तो मेरे दोस्त वगैरह को तो जानते थे कि मैं जो ना अच्छा गा लेता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा घबराता था क्योंकि मैं स्टेज पर या इस तरह परफॉर्म करने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब मैं प्रिंसिपल को जाके कहा कि हमारे एक लड़का है जो बहुत अच्छा गाता है, फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं स्टेज पे गया और मैंने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया और उस रिप्रेजेंट में
0: बहुत बेहतरीन हो गया, बहुत बेहतरीन हो गया। वहां म्यूजिक आगाज, म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा

0: करके वो कैसा सीन था।
1: आपको पता है जैसे ये 14 अगस्त का दिन आता है, तकरीबात शुरू हो जाती हैं, उनकी तैयारी शुरू हो जाती है स्कूलों में तकरीबात की तैयारी शुरू हो जाती है। हमारी क्लास टीचर ने चुन रहे थे बच्चे के इन्होंने टैबलो परफॉर्म करना है, उनमें भाईजान मेरा नाम भी आ गया, तो मैं भी उनके साथ चला गया। वहाँ पे तैयारियाँ चलती रही 2-3 दिन। वो टैबलो ये था कि हमने दिखाना था वो रेल गाड़ी का मंजर, जब वहाँ से यहाँ आ रहे थे पाकिस्तान जो बन चुका था रेल के जरिए जो आ रहे थे।
0: उस ऐलान के बाद की बात कर रहे हैं ना कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको इसके बाद की बात कर रहे हैं उस वाक्य की क्या।
1: तो वो बहुत होलनाक सा मंजर बना के दिखाना था कि जो आ रहे थे मुसाफिर उनका जो कत्ले आम हुआ, और वो जज्बा जो था वो अजीब सी जो थी फीलिंग, और बहुत ख़तरनाक सा मामला, वो हमने परफॉर्म करना था। तो वही परफॉर्मेंस हुई थी, और उससे हमें पता चला कि ये जो आज़ादी है इसमें तो बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, ऐसी कुर्बानियाँ भी जिनका हमें पता ही नहीं था।
0: पाकिस्तान की इस प्रोग्राम की जिन्नत बना सकते हैं और अपना पैगाम जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे गपशप लगा सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और हम सब पाकिस्तान हैं, बगैर किसी के सब पाकिस्तान है, सिंधी बलोची पठान पंजाबी नहीं है, हम पाकिस्तान है ना। कैसे लगते हैं इसमें मैं बात फिर से करना चाहूंगा कि हम इस चीज को कैसे बुला के यूनिटी के अंदर आया जाए कि हमारी पहचान पाकिस्तान है, इस झंडे के अंदर किसी सिंधी पंजाबी बलोची का रंग नहीं है बल्कि मुसलमानों का और उनकी अकलियतों का सब्ज रंग जो है वो पाकिस्तान की जो अक्सरियत है उनका, और जो सफेद रंग है वो अकलियतों का रंग है, इसमें तो पठानी पंजाबी बलोची कश्मीरी का रंग ही नहीं, तो पाकिस्तान है, तो फिर इस चीज को हमें मद्देनजर रखना चाहिए।
1: जी वैसे ही
0: यूनिटी होनी चाहिए, हमारे में इत्तेहाद होना चाहिए।

0: आप लोग अपने जो उनकी लैंग्वेज है उस हिसाब से मनाते, लेकिन मनाते 14 अगस्त ही हैं।
1: ये बहुत खूब आपने बात की, बहुत खूब आपने बात की कि सिंधी जबान में अगर उनका नगमा गाए तो गाते तो गाते बिल्कुल सांझी अपनी खुशियां और हम एक हैं, हम एक हैं। बहुत बेहतरीन खूबसूरत सी बातें हो रही हैं। सेरेमनी जो है हमारे हर साल बहुत सारे इवेंट्स पे होती है। मैंने तो पिछली दफा 3-4 केक खाए एक ही दिन के अंदर, यहाँ से खत्म किया इवेंट का, दूसरी जगह पे मुझे इनविटेशन था, मैं वहां पे चला गया, वहां से केक खाया, वहां चला गया, उस दिन मैंने 4 केक, यकीन करें मैंने केक पीस जो है ना वो इकट्ठा करके, मैंने तो भी होते हैं कुछ मामला तो होते हैं इस तरह के, दावतों के ऊपर भी होता है, तो इनविटेशन मैंने फाइनल कर ली कि एक साइड से एक हिस्सा, एक साइड से एक हिस्सा, एक साइड से एक हिस्सा, मेरा 1 पाउंड का केक। अब सेरेमनी पे भी इनविटेशन वगैरह जाते हैं फैमिली में?
2: अरे नहीं, हमें तो कोई नहीं बुलाता।
1: ये तो दर्द है। चलिए सब मेरी तरफ से आपको इनविटेशन है।
3: रात का खिलाना?
1: नहीं नहीं, हम काटेंगे, हम काटेंगे ना इस दफा केक, हम यहाँ पे अपना जश्न आजादी को फुल सेलिब्रेट करेंगे। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन भी कस्टमाइज केक जो है वो चल रहे हैं, और पाकिस्तान में जश्न आजादी के हवाले से बहुत ज्यादा ऑर्डर जो आ जाते हैं यहाँ पे। किसी दिन उनकी केक कस्टमाइजेशन की शॉप है, उनसे तो बता रहे थे कि हमें कितने कितने पाउंड के केक आते हैं, और वो इतने इतने बड़े केक टेबल्स पे जब बन के टेबल्स पे आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, तो वो चीज होती है कितने केक्स वगैरह देखे, बड़े बड़े वो बने होते हैं, फ्लैग्स वगैरह
2: होते हैं, बड़े होते हैं।
1: लिबर्टी के अंदर जो है वो भी केक कटिंग सेलिब्रेशन होती है, तो उसमें आप उस चीज को किस तरह एंजॉय करते हैं? फायरवर्क्स बड़ी खूबसूरत होती है, उसको किस तरह एंजॉय करते हैं?
2: भाई इस दफा तो हम जा रहे हैं ना, फिर तो जाके वहां देख लेंगे, हम सारे
1: इकट्ठा जाने का प्लान कर
2: लिया, सारा दिन 14 अगस्त फिरते रहेंगे।
1: आजादी की तकरीबात जो है वो रवा दवा है, पिछले कुछ 3-4 दिन से साइकिल की जो एक हमारी सड़कों की जो है वो खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, कैसा खूबसूरत मंजर है,
0: बिल्कुल
1: ऐसा कैसा खूबसूरत मंजर मंजर होता है ग्रीन और व्हाइट के साथ।
2: माल रोड की तरफ जा ही चुके हैं, तो मेरा कॉलेज आ जाता है जीसी, गोथिक लेट, वो जब सजती है वो हार जो होता है सब्ज, सफेद लाइटों का वो जो हार उस पर ढलता है, तो इतनी दिलकश लगती है वो, क्या ही बात,
1: बहुत बेहतरीन और बड़ा खूबसूरत सा मंजर लगता है, बहुत हसीन जैसा सीन जो लगता है, और ना तो अब आजकल के जेन जी है, सोशल मीडिया का जिक्र ना हो ये तो मुमकिन नहीं है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो जश्न आजादी के कौन कौन सी चीजें कैप्चर करके रील्स की जीनत हम बनाते हैं, रील्स वगैरह बनाते होंगे आप लोग, तो जाहिर बात है यूं बनाए, हम तो मशहूर इसी चीज के लिए हो गए, जेन जी तो फेमस इसीलिए होगी, आपने तो क्या क्या रील्स वगैरह कैसी कैसे कैसे शॉर्ट्स मिलते हैं, कैसे कैसे कैप्चर करते हैं?
2: हमजा भाई रील्स का तजुर्बा नहीं है, अभी शुरू ही नहीं किया, तो नई चीज हम कर रहे हैं, लिबर्टी भी जा रहे हैं और परेड भी देखने जा रहे हैं, तो इस 14 अगस्त के मौके पे क्यों ना मिलकर रील बनाएं।
1: मैं तो पहले भी बनाता हूँ, इस नशरियात से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप बताएं आप क्या इस्तीफा कर रहे हैं? नहीं हम अब आपने उल्टा जो है इंटरव्यू कर दिया है, तो इस पर तो नहीं मैं कह सकता कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देता, तो जवाब मेरी कुछ तकरीबात के ऊपर जो है वो रिकॉर्डिंग कवरेजेस वगैरह के सिलसिले होते हैं, वहाँ पे जाते हैं हम लोग, देखते हैं, हम तो एंजॉय करते हैं। मेरे साथ एक दफा एक कैमरामैन गया और वो मुझे कहता हुआ اتنا زیادہ ساؤنڈ. میں نے کہا اسی کا تو مزہ آتا ہے. میں نے اسے وہاں سے پکڑا, اٹھایا, میں نے کہا آؤ ذرا قریب چلتے ہیں, مائک رکھا ساؤنڈ سسٹم کے پاس, اسے بھی ساتھ میں کھڑا کر دیا, اور جو یقین کرے مجھے آج تک نہیں بولتی. تو میں تو شور شرابے کو, میوزک کو

0: करके आप अपने पैगाम जो है कॉलर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
1: वालेकुम सलाम।
0: हमारे कॉलर जो हैं वो शायद के कॉल कट हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे साथ मेहमान ऐसे ऐसे मौजूद हैं जिनके पास बहुत सारा कुछ कंटेंट है बात करने को, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भी हैं उनके पास बात करने को। और केक कटिंग सेरेमनी की हम बात कर रहे थे और उसके साथ साथ जश्न आज़ादी की खूबसूरत सी तकरीबात किस तरह रात से हमने स्टार्ट किया और जिस तरह रात को आगाज़ होता है 13 की रात को जो सेलिब्रेशंस होती हैं, आतिशबाजी होती है, फिर 14 का दिन आता है और फिर उस 14 के दिन को किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है गलियों में और फिर बैजेस का जो हैं कुछ
2: छापे होते हैं वो जिसमें रंग लगा के छापा लगा के रंग कर देते हैं जो छापा बन
0: जाता है उसका। क्या बात है, क्या बात है, वर्ड जो है वो यहाँ से आया जी, स्टैम्प्स होती है, दरियाफ्त हो गया। रहीम पाकिस्तान की सेलिब्रेशन है जिंदा कहाँ तक पहुंची
3: जी। हमजा भाई खामोश तो नहीं बैठे हुए, लेकिन जहाँ तक बात रही स्टैम्प्स की, वो बचपने का सारा दौर था और हम ज़रूर बचपन में ये सारी चीज़ें करते होते थे, लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हो गए हैं तो वो अब हम अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ये शौक़ करते हैं और हम उनके शौक़ पूरे करते हैं और चल रहा है निज़ाम इसी तरह।
0: बिल्कुल जी, तरीका कार बदल जाता है लेकिन जश्न का जो अंदाज़ है, जश्न का जो लेवल है, जश्न
3: पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था 14 अगस्त वाले दिन,
0: 14 अगस्त
3: बिल्कुल है दिलों में है।
0: बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बातें जो है वो हमारी चल रही हैं यहाँ पे। मोमिन जमशेद साहब, फिर से मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप कहते हैं कि यार ये बंदा मुझे नहीं छोड़ता, आपको मैंने मोमिन साहब कुछ सुना
4: जी? जी जरूर।

0: फोन से बात कर लेते हैं जी, कॉलर यहाँ पे कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।
1: हाँ जी, वालेकुम सलाम हमजा साहब, आपको और आपके साथियों को, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं, ठीक ठाक हैं?
1: मैं मोहम्मद सलमान बाग सुनना वाला से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा बात कर रहे?
1: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट सलमान बाग लाहौर से बोल रहा हूँ।
0: ओके ओके ओके, मोहम्मद सलमान भट्ट साहब लाहौर से बात कर रहे हैं। सर खुश आमदीद कहते हैं, क्या बताएंगे जश्न आजादी के हवाले से? आपने मेरा नाम लिया, आप बाकायदा मुझे सुन रहे हैं, उम्मीद करता हूँ।
1: आपने इन्होंने जो भी वो कायदे आजम का पढ़ा ना, आपका एहसान है, तो मैं तो रो पड़ा हूँ।
0: हाय हाय हाय हाय, क्या बात है। ये जज्बा ये कि आपने एक मिली नगमा सुन के जो एक मोहब्बे वतन है वो रो पड़ा है, क्या कमाल है।
1: तो ये इनके बच्चे की आवाज भी बहुत प्यारी थी, बड़ा मजा आया, लेकिन इन्होंने एक लाइन ही पढ़ी है, मेरा दिल कर रहा था मैं सारी सुन लूं।
0: चले जी, आपकी फरमाइश पे इनसे सारी सुन लेते, सारा पूरा मिली नगमा जो है वो ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, वो आपको सुना देते हैं।
1: कई दफा सुना है और हर दफा रो पड़ते हैं।
0: बहुत खूब हो गया, नहीं सुने फिर एंजॉय करें।
1: ये जैसे जैसे हमारे लीडरों ने मेहनत की हुई है ना, हमको भी इस तरह ही मेहनत करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। आपको यूं दी तूने आजादी को, दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। बहुत शुक्रिया।
1: बेटा एक बात और पूछनी थी, आपकी जो ट्रांसमिशन इस्लामाबाद से चलती है वो नंबर में जब भी मिलाता नहीं मिलता।
0: नहीं उसका ये लाहौर लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर की ये महफिल है, और लाहौरियों से लाहौर की बात करें उसका
1: मुझे इस्लामाबाद का नंबर कहाँ से मिले? नंबर तो यही है 111 000 उसके आगे 5051 लगता है, लेकिन वो मिलाता मिलता है।
0: जी जी, आप ट्राई करें, इसका इशू में भी हो, आप दोबारा ट्राई करें, हो जाएगा, मसले वाली बात ही नहीं है।
1: एक उनका और भी नंबर है लेना, और कहाँ से लें हम ये नंबर?
0: वो उनकी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, कर लीजिएगा, उस पर वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, नेटवर्क का इशू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सलामत रहें।
1: अस्सलाम वालेकुम।

0: वेलकम बैक सामिन। यहाँ पर कॉल जो है वो भी एक मौसूल हो चुकी है, कॉल ले लेते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं जी, कॉल जो है वो अटेंड नहीं हो पाई। कोई मसला नहीं, हम बैठे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, तो कॉल नहीं तो क्या हुआ। हमारे साथ हमारी ऑडियंस, हमारे मेहमान मौजूद हैं, रहील अशरफ साहब से हम कुछ सुनना चाह रहे हैं। आगे में से जब कॉल, हम इनकी आवाज सुन के रो पड़े, तो क्या बात है, इनकी आवाज में क्या दम है। तो ये एक दफा यकदम
1: सुना देते हैं आपको और अपने ऑडियंस को भी, भरपूर उनकी फरमाइश पे।

ये वतन तुम हो प्यारे, इस चमन के फूल रंगों से

बहुत खूब, बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार सा प्रोग्राम जो है वो आज FM 101 हम एक है की खसूसी नशरियात पे आपने सुना, और वक्त जो है वो खत्म हो जाता है और यहाँ पे भी

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म बॉन्डेड वेयर हाउसेस का तीसरे फरीक से 3 साल आजादाना ऑडिट कराने की हिदायत की है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती मौजूदगी के बगैर समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ खिदमात की फराहमी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल पर जोर दिया है। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के इश्तराक से पाकिस्तान में स्मॉल बिजनेस ग्रोथ एकेडमी का आगाज किया है। शाम में जंगी जराइम के इल्जामात में कसूरवार करार दिए जाने पर साबिक हुक्मरान बशार अल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई गई है। और अब खबरों की

0: Hi, this is FM 101. 101. 101.
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, ख्वातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहायश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशीबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखानाजात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: 101 FM
3: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोहर वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
4: This is FM 101.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: from the house of 6B Food Industries.
1: This is FM 101.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: I love FM 101।
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: Tune in to One Above, FM 101.

Everybody One. Everyone on Radio Pakistan Lahore se janab mujhe kehte hain aapki RJ aapki host aapki to Shiba Malik aapke saath aur aap sun rahe hain Lahore on hai. 5:09 ho chuke hain aur mera aur aapka saath rehne wala hai saath aur saath of course 7 baje tak mera aur aapka saath rehne wala hai. Aaj hai 11 August 2026 aur din hai hamara Tuesday ka aur Tuesday wale din jo hai I'm just asking I'm like Tuesday ko pooch lete hain chalo kya haal chaal hai aap logo ka. ऐसे लगता है कि जैसे ना मैं दो हफ्ते के बाद आई हूँ ऐसे लग रहा है. आई मीन गलतफहमी भी हो सकती है ये मेरी. आई जस्ट होप एंड बिलीव आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में होंगे, आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी अच्छी गुजर रही होगी. और अच्छे की उम्मीद रखते रहना चाहिए, अच्छे की उम्मीद के साथ ही जिंदगी की बहारें हैं, अच्छे की उम्मीद के साथ ही जो है हम जिंदगी का जो तसलसल है उसको बरकरार रख पाते हैं, अच्छे की उम्मीद के साथ ही किसी के साथ चल पाते हैं और अच्छे की उम्मीद के साथ ही जिंदगी का सफर आसान बना लेते हैं, कभी अपने लिए कभी किसी दूसरे के लिए. सो आज शिबा मलिक 7 बजे तक मेरा और आपका साथ 11 अगस्त 2026. और शो में शामिल आप हो सकते हैं 4471 पे मैसेजेस करेंगे, साथ ही साथ हमारा फेसबुक हैंडल है facebook.com/FM101 लाहौर. और अगर आप लाहौर में नहीं है तो भी आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं.

जश्न आज़ादी की जो तैयारियां है ना वो भरपूर तरीके से एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग, एवरीवन इज प्रिपेयरिंग, सारे लोग जो हैं उसकी तैयारियां कर रही हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ कि वाई वी नीड अ डे, हम लोगों को एक ही दिन, और ये सब 10 के बाद से ना माहौल बदल जाता है। 10 अगस्त के बाद से माहौल ऐसा हो जाता है कि लाहौर में या पाकिस्तान की किसी भी शहर किसी भी जगह पर आप जाएँ तो माहौल ऐसा बना हुआ होता है, पता चल रहा होता है कि हाँ कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो मैं नॉर्मली, मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो वो सिर्फ इन्हीं 4-5 दिनों में देखने को क्यों मिलता है? व्हाई वी आर नॉट फीलिंग इट, व्हाई वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एवरी डे, हर एक दिन सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं महसूस करते हैं कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं एंड वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने मुल्क के लिए कुछ अच्छा करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उसको इतने अच्छे से पूरा करें कि हमें कोई एक खास दिन ना मनाना पड़े। हर दिन हमारा है, हमारा अपना मुल्क है, सभी दिन हमारे हैं, हम जो भी करें अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना सा एतराज़ है, बाकी तो ज़िंदगी गुजर ही रही है और मेरे एतराज़ से मतलब क्या ही फ़र्क पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज़ यू नो, जब हम मुल्क से बाहर होते हैं ना तो इस तरह के एतराज़ात जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। सच में जब दूसरे मुल्क में बताया जा रहा होता है ना, ओके फ़लां फ़लां जो है वो फ्रॉम पाकिस्तान एंड दिस इज़ पाकिस्तान डे, दिस इज़ इंडिपेंडेंस डे, तो फिर उस टाइम वो वाली जो फील है ना उसका मज़ा ही कुछ अलग है। एनीवेज़, www.radio.gov.pk/livestreaming के थ्रू जो है आप शो में शामिल हो सकते हैं। यू कैन फील एट लाहौर, यू कैन फील एट पाकिस्तान एंड यू कैन फील एट होम। जी, इट्स अ माइनॉरिटीज डे, अकलियतों का आज दिन है 11 अगस्त 2026। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और 11 अगस्त 1947 में जो है कायदे आजम ने असेंबली में एक स्पीच दी थी और एक बिल जो था वो प्रेजेंट किया था जिसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के जो अकलियती राइट्स हैं, जो अकलियतों के हकूक हैं, उनका ख्याल रखा जाएगा, उनको पूरी फ्रीडम होगी कि वो अपनी मर्जी से अपनी जो है इबादत गाहें वहां पर जा सकेंगे, अपनी मर्जी से पाकिस्तान में जिंदगी गुजार सकेंगे, इक्वल राइट्स जो हैं उनको दिए जाएंगे, उनकी प्रोटेक्शन का, उनकी हारमनी का, उनकी सोशल टॉलरेंस का जो है वो प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। और दैट वाज द विजन ऑफ कायद आजम मोहम्मद अली जिना, ये उनका विजन था। और पाकिस्तान का जो यू नो कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ जो है वो भी इसकी जो है पूरी तरह उसके साथ एग्री करता है। तो बकायदा जो है ये जो है अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के जो मिनॉरिटी राइट्स हैं उनका जो है वो ख्याल रखा जाएगा। वो 11 अगस्त 1947 में जो था प्रॉपर एक बिल दिया गया था, असेंबली में बिल पास किया गया था और उसमें अश्योर करवाया गया था कि पाकिस्तान में अकलियतों के हकूक का प्रॉपर जो है वो ख्याल रखा जाएगा। एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कस कि हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा जो हैं, शी इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल टू लेट अस फील, अकलियतों को ये फील कराने के लिए कि वो हमारे साथ हैं और वो हमें प्रॉपर इक्वल राइट्स जो हैं वो दे रही हैं। बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वो शो में लेटर ऑन डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि आज अकलियतों का दिन है, इट्स अ माइनॉरिटीज डे, पाकिस्तान में जो है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं शो में जिसको हम डिस्कस करेंगे, गो ऑन रहेगा ये सिलसिला। इंटरनेशनल माइनॉरिटीज डे जो है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है बट आज पाकिस्तान में ये है माइनॉरिटीज डे। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं शो में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में, पंजाब में और पाकिस्तान के दूसरे सूबों में मिनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या जो हैं वो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू बिगिन माई शो डेफिनेटली फ्रॉम हियर। And I wonder...

एंड आई एम वंडरिंग कि जो है वो हमारा जो सिस्टम है ना वो काम क्यों नहीं कर रहा. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग. अच्छा, ये बड़ा मज़ा आता है कि जब लाइव शो होता है ना तो आरजे जो है वो अनाउंस कर देता है और उसके बाद पता चलता है कि नहीं जी, सिस्टम कह रहा है व्हाट आर यू डूइंग, प्लीज़ आई एम नॉट कोऑपरेटिंग. तो उस टाइम कॉपरेट जो है वो नहीं हो रहा होता और फिर उस टाइम हम कहते हैं अच्छा ओके फाइन लेट्स डू इट अनदर वे. क्योंकि लाइव शो होता है तो हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम कहते हैं ओके हम कर ही लेंगे, डेफिनेटली हम कर ही लेंगे. एनीवेज आई हैव गॉट टू प्ले दिस और साथ साथ जो है आप लोग हमारे साथ हैं और पीसी वन ठीक ही चल रहा था, इसे पता नहीं क्या हुआ है, बट बात वही है ना, मेरा शो है तो फिर

और अगर आप लोगों ने ये वीडियो जो है उसको बड़े गौर से देखा है तो आप लोगों को समझ आएगी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ के जितने लोगों ने कुर्बानी दी थी, जितने लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए साथ दिया था, ऐसे गूज़बम्स आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ये देख के। सो कायद का पैगाम ये था कि अकलियतों को प्रॉपर जो है वो राइट मिलेंगे, उनके हकूक का ख्याल रखा जाएगा। 11 अगस्त 1947 को ये जो था असेंबली में बिल पास किया गया था और प्रॉपरली अशोर करवाया गया था कि हम जो है अकलियतों के हकूक का प्रॉपर जो है वो ख्याल रखेंगे। सो लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस मेनी प्रोजेक्ट्स, मेनी थिंग्स दैट जो कि सीएम साहिबा की तरफ से हो रहे हैं, वो भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड, आज शिवा मलिक FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर।

Pakistan Zindabad, Beshakar, ye wo wale din hai, ye wo wali feel hai that we are wherever we are. Main hamesha ek cheez kehti hoon ki ji hum apne passport se pehchane jaate hain, wo green passport, wo green dupatte, wo green kameeze aur white dupatte, matlab ye sab ye hamari pehchan hai. Aur jab hum kisi dusri jagah pe hote hain na to us cheez ko zyada feel aati hai. Lekin ek baat aur bhi hai, jab main kehti hoon ki hum log 10 ke baad se hi 14 august ki feel lena shuru ho jate hain, is cheez ki feel lena shuru ho jate hai ki ye mulk jo hai wo हमारा है. Why we are not feeling it every day? हम हर दिन क्यों नहीं उसको महसूस करते हैं? मेरा सिर्फ इतना सा रहता है, लेकिन मज़ा भी तभी आता है जब हम अपने मुल्क में होते हैं. ये सारी दिन सारी चीज़ें ना यहाँ भी सेलिब्रेट करने का मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज हम जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में जब जाते हैं ना तो फिर हम बेचारे बेचारे से लग रहे होते हैं. हमारा इंडिपेंडेंट डे चल रहा होता है और हम बड़े मासूम से लग रहे होते हैं. इतना कर सकते हैं कि अच्छी कंपनी है तो डेफिनेटली दे आर गिविंग यू लिवरेज कि आप उसको सेलिब्रेट करें, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सुकून से बर्दाश्त करें, चुप करें, एक फ्लैग लगाएं और यूनिफॉर्म पे अपने कपड़ों पे एंड यू आर जस्ट सेलिब्रेटिंग इट. आप शायद अपने ही ऑफिस में अपनी ही किसी जगह पे जो है उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट ओवरऑल नहीं होता. सो एवरी डे वी आर सेलिब्रेटिंग, एवरी डे वी आर फीलिंग, एवरी डे वी आर taking the responsibility of it that hum Pakistani citizen hain aur bye Allah Hafiz. Professor Zia sahab jo hain wo ja rahe hain, wo bilkul professor ki look mein aaj. So we are taking the responsibility of it ke hum we are Pakistani and we are proud to be a Pakistani, and we take the responsibility of ke hamare sath rehte hue jitne bhi minorities hain, akliyati log jo hain wo is cheez ko feel kare ke hum log equally Pakistan ke is jo hai mohabbat, Pakistan ki is peace and harmony ko share karte hain. So this is the day, aaj jo hai minorities day hai and we are all celebrating it. Hum sare isko celebrate kar rahe hain. कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और वो क्या है. अब इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे चल रही है. एनीवेज सो प्रोग्राम में मेलो म्यूज़िक रहेगा, नए पुराने गाने जो हैं वो मिक्स प्ले हम करते रहेंगे, शो को आगे बढ़ाते हैं और वी गॉट टू प्ले दैट ऑफ कोर्स. इसके बाद जो है आप लोगों के मैसेजेस शो में शामिल करेंगे, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बट राइट नाउ हियर वी गो, आर वी गोइंग टू प्ले दैट फ्रॉम कोक स्टूडियो, इज इट, क्या हम वहाँ से प्ले करने जा रहे हैं? That's how I'm asking about myself. Is it? No, we're not. अच्छा चलो, ये पता नहीं क्यों ऐसे मेरा दिल कर रहा है ये वाला गाना प्ले करने का. तसल्ली से नहीं बंदा किसी को कदम मगरो ले. Here we go with this.

0: We'll be back after this short commercial break. Stay with us.
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: I love FM 101।
1: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मेयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

Angeles is welcome back. Okay, FM 101.2 Pakistan Lahore. Or time is running. You know, time is really flying. और वक्त जो है वो ऐसे भागता चला जा रहा है क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना शो और मेरा शो जब स्टार्ट होता है तो यू नो वेरी वेल कि क्या होता है. दिस इज वेलकम बैक. ओके, एफएम 101.2 पाकिस्तान लाहौर. और लाइक टाइम इज रनिंग, यू नो टाइम इज रियली फ्लाइंग. और वक्त जो है वो ऐसे भागता चला जा रहा है क्योंकि हम

कि यू आर सेफ एंड साउंड हियर इन पाकिस्तान, और अच्छा लग रहा है. आई मीन बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट जो हैं वो उन्होंने अकलियतों के लिए स्टार्ट किए हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी आर जस्ट लुकिंग फॉर के सब अच्छा अच्छा ही होगा. सो वी जस्ट होप दैट, एंड वी आर अगेन थैंकिंग दैट हमारी सीएम साहिबा जो हैं, शी इज़ रियली वेरी एक्टिव ब्यूटीफुल, तो वो जो हैं पर वो खूबसूरत तो वो सच में जो है, बट शी इज़ वेरी एक्टिव और वो काम भी जो है वो कर रही हैं, एंड assuring us that we are safe and sound here in Pakistan. So later on, हम discuss करेंगे briefly कि वो कौन कौन से project हैं. Here we gonna go with this.

0: Places, welcome back. All right, जी. So, लाहौरों ने भी दर्ज शिबा मलिक और अकलियतों का दिन, बहुत सारे काम, बहुत सारी बातें. इसके साथ साथ ये भी देखना है कि इंटरनेशनल डेज या वर्ल्ड डेज कौन से हैं, वो भी देख लेते हैं. पहाड़ों का दिन है आज. ओ हो, तो फिर तो मैं जरूर प्ले करूंगी तुम चले आओ पहाड़ों की कसम. ये गाना भी बहुत आला है वैसे तो. अच्छा जी, उसके साथ साथ है प्ले इन अ संडे, इट्स दैट डे टू. और किसी न किसी जगह पे अफ्रीका में जो है नेशनल फूफू डे मनाया जाता है. आई हैव ट्राइड दैट फूफू, इज रियली वेरी टेस्टी, मज़ेदार है, इसलिए मैंने उसको मेंशन कर दिया है. उसके साथ साथ जो है और कौन सा खास दिन है इंटरनेशनल दिन, और क्या है, वर्ल्ड स्टील पैन डे भी है. ओके, उसके साथ हिप हॉप डे है, डांस वालों का दिन भी मनाया जा रहा है. इनके भी अपने मज़े हैं वैसे. अच्छा जी, पहाड़ों की कसम मैंने लगा तो दिया है, पर मैं आई वॉन्ट टू प्ले दैट पुराना वाला जो है ना, वो प्ले करूँगी, उसकी अपनी वाइब्स हैं. इसके बाद आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शो में शामिल करेंगे. आई एम जस्ट हैविंग माई टी अलॉन्ग विद द लाहौर ऑन है, सो कमर्शियल आई गेस. सो इस आर के मैंने कम्प्लीट कर दिए हैं, 6 o'clock स्टार्ट होंगी दोबारा से. हैव यू गोना गो विद दिस,
1: मुझे माफ़ कर देना.
0: ओहो, ये सबसे बुरी बात होती है कि जब किसी ने किसी को छोड़ना होता है तो मुझे माफ़ कर देना. माफ़ करना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऐसे मौके पे जब दिल कर रहा हो कि अगले बंदे का कत्ल कर दो और फिर आगे से कोई ये कह दे मुझे माफ़ कर दो, नॉट इजी जॉब. आज शिवा मलिक और FM 101 पाकिस्तान लाहौर ऑन है.

ओके, अब आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो शामिल कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर मैसेजेस रह जाएंगे और टाइम जो है गुजर जाएगा, और गुजरा हुआ वक्त जो है ना वो अपनी बेकदरी बहुत अच्छे से इंसान को ना सिखा के जाता है। फिर इंसान कहता है काश मैंने उस टाइम पे ये किया होता, और फिर सारी ज़िंदगी हम उस काश के साथ रहते हैं। आई रियली डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में काश ज़्यादा हो और आमिन सुम आमिन कम हों।

जनरल सा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये है कि औरत औरत की दोस्त होती है, वो उसको अंडरस्टैंड करती है. क्या ये बात सच है? आई मीन सीरियसली, कि औरत औरत का दुख जो है वो समझ सकती है, औरत औरत का दर्द जो है वो समझ सकती है, और औरत ही औरत की दुश्मन है. सो आज ना कुछ इस तरह की बातें जो है ना वो मेरे दिमाग में ऐसे आ रही थी. डोंट कंसीडर इट टॉपिक. फेसबुक के मैसेजेस शामिल करने जा रही है. इजाज़ है, अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप और सब दोस्त कैसे हैं? आज मैं सबसे पहले, क्या बात है तुम्हारी, वेरी गुड. उसके बाद तारीख, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शिबा वेलकम टू स्टूडियो. फिर दोस्तों क्या हाल है, अल्लाह सबको खुश रखे. तमाम खूबसूरत समातों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम ऑल द वे फ्रॉम कुवैत. तारीख आपको भी खुश आमदीद. शिबा जी, आज लेट आने वालों को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आज तुम पहले आ गए हो तो तुम सजा चाहते हो. क्या बात है, ये दस्तूरे दुनिया सा हो गया है कि जब हम कोई काम पहले कर लेते हैं और हमारा अपना फायदा निकल आता है, फिर हम कहते हैं यार ये तो काम गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए. अच्छा जी, बेस्ट आरजे इन द हाउस शिबा जी, वेलकम बैक आफ्टर टू वीक्स, सेम टू यू, थैंक्स अ लॉट. और पाकिस्तान जिंदाबाद. ऑफकोर्स जश्न आज़ादी जो है वो जोरों शोर से जो है वो हमारे घरों में दाखिल होने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है. ऑफ कोर्स हमारे घरों में वही दाखिल हो रही है क्योंकि हम आम दिनों में तो वो फील ही नहीं ना करते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं. किंग फजल ने मैसेज किया ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा, बहुत शुक्रिया जी, आपको भी खुश आमदीद शो में. और इमोजेस के लिए इजाज़, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ इट. खावर, अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द स्टूडियो. मैम दो हफ्तों के बाद आपका आना सर आंखों पर. मैम क्या हाल है आपके? सॉरी, मेरा नाम खावर अब्बास है. पाकिस्तान के लास्ट क्यों मैं कहने वालों, आपको दिल से सलाम और आज़ादी मुबारक एडवांस में पेश करता हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें भी आज़ादी मुबारक हो. हामिदुल्लाह मलाखेल है हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा, आपको भी खुश आमदीद. ये क्या बात हुई कि क्या चल रहा है हम दोनों के बीच, एक शो आप मिस करती हैं और एक मैं, मेरे से हो जाता है, हमारा हिसाब हो जाता है बराबर, बाकी आप देख लें. हाँ, ऐसे बड़े हिसाब बराबर तुमने कर दिए हैं, बट पिछले हफ्ते शो नहीं हुआ था, चहलम की वजह से शो नहीं हुआ था. सो आज तो इम्पोर्टेंट शो था, सो हाउ कुड आई जस्ट मिस इट. मुनव्वर अब्बास ने अस्सलाम वालेकुम लाहौर से, नाइस शो, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया. बरकत जमील बलोचिस्तान से, आपको भी खुश आमदी, थैंक यू. फरहद मेमन, मिठाई किस खुशी में है, ज़रा ये भी बता दीजिए. हम हर दिन इसलिए मनाते क्योंकि कायदे आज़म का हमें, कायदे आज़म ने हमें इजाज़त दी है, लेकिन मैं वो इजाज़त ढूंढ रही हूँ कि ये भी बिल पास हो गया, कौमी असम्बली में उन्होंने बिल पास कराया, ये भी सारा कुछ हो गया. मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि ये उन्होंने कहाँ कहा था कि बाजे बजा बजा के एक दूसरे का सर खा जाना है. वो बात अभी तक मुझे मिली नहीं, काफ़ी सालों से मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, वो नहीं मुझे मिला. अच्छा जी, रियाज भट्टी हैं, खुश आमदीद. शादरा से आप भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी शो में शामिल होने के लिए, थैंक्स अ लॉट. बहुत बहुत शुक्रिया वो सारे लोग जो शो में शामिल हैं और शो को पसंद कर रहे हैं, पोस्ट को लाइक किया, शेयर किया, थैंक्स अ लॉट गाइज. नईम टेलर हैं, गुड म्यूज़िक, गुड शो, थैंक्स अ लॉट जी. गुल यासीन हैं हमारे साथ, आपको भी खुश आमदी, थैंक यू सो वेरी मच, द ऑसम शो, थैंक यू सो वेरी मच रियाज, बहुत बहुत शुक्रिया. अकबर हैं कराची से ऑल द वे, वालेकुम अस्सलाम और तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम, थैंक यू. शफकत अली ख़ान हैं जी, मैं शफकत अली हूँ के चक नंबर 755 से, प्रोग्राम ज़बरदस्त है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी. जिन लोगों को शो अच्छा लग रहा है, ओके, आई हैव गॉट टू प्ले दिस सॉन्ग. अब गाने कुछ ऐसे अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सो व्हाई नॉट टू प्ले.

दिस इज वेलकम बैक ओके जी लाहौर ऑन है और 3 मिनट रह गए तो मैंने कहा मैसेजेस जो हैं वो शो में शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद 6 बज जाएंगे और फिर शो बिल्कुल ख़त्म जो हो जाता है, फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। एनीवेज जी मैसेजेस आप लोगों के शामिल करते हैं। इजाज बेनिश का मुझे नहीं पता है वेयर रियली शी इज़ गॉन और अब मुझे गुस्सा भी है नाराज़गी भी है। शिबा जी कमेंट ब्लॉक हो जाते हैं प्लीज़ डू समथिंग, आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग दैट वाई कमेंट क्यों ब्लॉक हो जाते हैं, अनलिमिटेड होने चाहिए ये ब्लॉक क्यों हो जाते हैं, सो आई हैव टू नो आई बेटर टू सॉर्ट आउट द रीज़न कि क्यों ऐसे हो क्यों रहा है। अच्छा जी ओहो पेज एक्चुअली रिफ्रेश नहीं था हो रहा तो 4471 वालों के जो मैसेजेस हैं ना वो मैं खा पी गई हूँ। मैं बतूल है महरीन है समरीन है महरीन का मैसेजेस एक दो दिन पहले आया था। अच्छा समरीन और महरीन हमेशा मेरे से मिक्स हो जाते हैं। उसके साथ साथ जरियान है सब ने मैसेजेस किए हैं, उसके साथ कौन है रानिया है और कौन है एहतशाम है, सबके मैसेजेस आए हुए हैं। वालेकुम अस्सलाम आई एम परफेक्टली ऑलराइट एंड होपिंग द सेम फॉर यू गाइज, आप लोग भी उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे फर्स्ट क्लास होंगे। और आई वॉन्ट टू प्ले दैट सॉन्ग बट बिफोर आई गो विद दिस, आप लोगों को पता है कि न्यूज़ फ्यूज़ का जो है वो टाइम हो चुका है, सो न्यूज़ के लिए जाएंगे फिर वापस आएंगे। और ये कौन है, अच्छा भैया अगर आप 4471 पे मैसेज करते हैं तो अपने नाम के साथ मैसेज किया करो, इट इज़ वेरी गुड। आप लोग पैसे लगाते हो तो कम से कम आपका नाम तो ऑन ईयर जाना ही चाहिए ना, तो बंदा जो है वो प्रॉपरली बताता है कि मैं फ़लाँ जगह से फ़लाँ जो है वो आपको मैसेज कर रहा हूँ, हमें भी पढ़ने का मैसेज मज़ा आएगा। ठीक है मानसून है बरसात है और आप सभी लोगों को पता है कि ये ख़तरनाक सा टाइम है, रोड्स आर स्लिपरी, फिर उसके बाद पानी जगह जगह भर जाता है, उसके साथ डेंगू है मलेरिया भी है टाइफाइड भी है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मानसून अपने साथ लेके आता है। इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बच सकते हैं क्या कुछ कर सकते हैं। बाय ट्रेन लेट्स गो फॉर न्यूज़।

0: from the house of 6B Food Industries.
1: Sunte rahiye FM 101.

0: इस मिट्टी के रंग रौनक और जरखेजी हमारे किसान से ही तो है आबाद। अब इसका और भी मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे साथ है सोना यूरिया ग्रेनुलर, जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, जिसका मोती जैसा दाना छटा करने में आसान, दे नाइट्रोजन की देर पा दस्तयाबी और बनाए फसल को और भी शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी का मान बढ़ाए।
1: दिस इज FM 101।
2: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
3: एंड नाउ यू आर ट्यून्ड इनटू
2: FM 101। हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: स्माइल एंड डायल 111 FM।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
5: सुनते रहिए FM 101।
2: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

मुझे कहते हैं आपकी आरजे, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शीबा मलिक आपके साथ, और आप सुन रहे हैं लाहौर ऑन है। Alright जी, पाकिस्तान में जो है आज मिनोरिटीज डे मनाया जा रहा है, अकलियतों का दिन जो है वो मनाया जा रहा है पाकिस्तान में पूरे जोशो खरोश के साथ और अश्योरेंस के साथ कि जी हम पाकिस्तानी जो हैं वो मिनोरिटीज हम सेफ हैं और हमारे जो राइट्स हैं वो महफूज हैं और उनकी रिस्पेक्ट की जा रही है, उसका ख्याल रखा जा रहा है, एंड वी आर लीगली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। So, however, you know, religious freedom, जैसे Christians, Hindus, Sikh और Ahmadis and frequently they are experiencing their own, you know, gaps and, you know, discrimination, अगर उनको लगता है कि feel करते हैं, face करते हैं, but right now there are many things, बहुत सारे rules, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनको assure करवाई गई हैं कि आपकी freedom का ख्याल रखा जाएगा, आपकी जो एक शख्सी आज़ादी है उसका ख्याल रखा जाएगा, और इसके लिए कोई बिल पास कराना आजकल के दौर में कोई वो नहीं था कि अभी ये जो है लॉ वो पास हुआ है। ऑलरेडी 11 अगस्त 1947 को कायदे आजम ने जो है प्रॉपरली बड़ा इन्हांस किया था इस बात के ऊपर और बड़ा जोर दे के ये बिल पास कराया था, कौमी असेंबली में स्पीच दी थी और कहा था कि सारे जो हैं मिनॉरिटीज़ उन लोगों को ये लीगल राइट है कि वो उनके पूरा प्रॉपरली उनका ख्याल रखा जाएगा, एंड दे आर नॉट गोइंग टू एवर फील द डिस्क्रिमिनेशन दैट आर लिविंग इन पाकिस्तान बिकॉज दे आर ऑल्सो सेक्रीफाइस देयर सेल्फ पाकिस्तान के लिए, उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है। सो हमारी सोशल इनकम स्टिग्मा, हमारी कन्वर्सेशंस, फोर्स कन्वर्सेशन, फिर उसके बाद है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, ये सारी चीज़ों का पाकिस्तान में जो है वो ख्याल रखा जाएगा। ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी तय हो चुका था 11 अगस्त 1947 को बता दिया गया था। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर फॉर ईच अदर, और ज़िंदगी गुजारने का तरीका भी यही होता है कि कभी आप हमारी सुने, कभी हम आपकी सुने, और इसी तरह ज़िंदगी जो है वह गुजर जाती है। एंड येट देर आर मैनी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो स्टार्ट किए हैं मिनॉरिटीज़ के लिए, एंड इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिनॉरिटीज़, अकलियतों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लुकिंग फॉरवर्ड कमिंग टू आर वे इन फ्यूचर इंशाल्लाह। सो हम होप कर रहे हैं कि ये हो जाए। खैर अब जो है आई गोना प्ले दिस सॉन्ग, मैडम के दो गाने निकाले थे, बट फर्स्ट आई वांटेड टू प्ले दिस वन, हियर वी गो विद दिस।

हाय डिलीशियस, वेलकम बैक। वेल जी, कलीम भी इस वक्त जो है शो सुन रहा है। ओके कलीम मेरे भाई, मैसेज मैंने देख लिया है और पता चल गया है कि आप भी शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और अम्मा को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह सलामत रखे, सेहत जिंदगी तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अपना भी ख्याल रखिएगा और उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम दुआ बोलिएगा। ओके तो तारिक, अगर तुम शो सुन रहे हो तो आई डोंट वांट टू से मच मोर। अब तुमसे और क्या ही कहूँ, तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता है कि तुमने क्या करना है। ओके खैर, अच्छा ज़रियोन ने और ना ऑलमोस्ट बतूल ने सेम मैसेज किए हुए हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब हम ऐसे, हमारे साथ ऐसे ही सुतेलों वाला सलूक होगा। ये बात नहीं है कि टाइम क्योंकि कम होता है तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैसेज, क्योंकि पेज ही फ्रेश नहीं हो रहा था, मैं बार बार उसके साथ लगी हुई थी तो मैं क्या ही करती।

अच्छा जी, सो अच्छा मैंने ये एक कंप्यूटर के ऊपर वो गाना तब से निकाला हुआ था जुनून से और इश्क से, तो वो ही चल रहा था, तो वो मैं देख रही थी। रिक्वेस्ट वाला सीन अगर आज आप कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं होगा प्ले, बिकॉज टाइम इज़ ऑलरेडी शॉर्ट। तो हम लोग जो हैं मैसेजेस शामिल करेंगे आप लोगों के, जिन लोगों को ये लग रहा है नहीं नहीं, जरियोन ने आज शायरी की भी रिक्वेस्ट नहीं करनी। जरियोन इज़ गुड, ही इज़ डूइंग रियली गुड। अच्छा जी ओके, ये कौन है? अच्छा जी मैम, आज शो में एनर्जी नहीं आ रही, लगता है आप सैड हैं। एक तो तुम्हें हर वक्त यही फिक्र पड़ी रहती है सैड है, तुम्हें समझ भी आ रही है कि मेरा गला ख़राब है। पिछले एक हफ्ते से मेरा गला जो है सफ़र कर रहा है प्रॉपरली मैं बिल्कुल आवाज़ मेरी वैसे वाली ठीक नहीं हुई है, खांसी स्टील अभी लगी हुई है। तो खबर कभी कभी तबीयत ख़राब होती है, आवाज़ ख़राब होती है, उसके साथ सैडनेस का कोई ताल्लुक नहीं होता है। कि तुम उधर भी मैसेज कर रहे होते मैम सैड लग रही हूँ, कहाँ से मैं तुम्हें सैड लग रही हूँ, अपने वालों ही। अच्छा जी, गुलाब गुलाब ने मैसेज किया, सलाम अलैकुम, आप ही नाम तो अब बड़ा ही बहुत ही मजे का है यार गुलाब ओके सिंगर गुलाब। हुमा शेख ने मैसेज किया, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? माशाल्लाह जबरदस्त शो है आपका, पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप हैं हुमा शेख, ओके हुमा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन माय शो अगेन। ओके गुलाब ने कहा, वेरी नाइस शो, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब। अच्छा जी, तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमें पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए और इज्जत करनी चाहिए। जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं, इसी तरह अपने मुल्क को, अपनी गली मोहल्ले को भी साफ रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल जी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन हम करते नहीं हैं। बात ये है कि हम करते नहीं, कहते तो बहुत कुछ है लेकिन हम करते ही नहीं हैं सबसे आसान यही काम लग रहा होता है कि हम गली मोहल्लों, अपने घर को सिर्फ साफ रखें, बाकी गली शहर उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें, वो तो बॉदर ही नहीं ना करते हम। वी शुड नॉट व्हाट? वाह, मैंने मैसेज निकाला और मैसेज कहता है आई एम गॉन। अच्छा जी, वी शुड नॉट केयर अबाउट एनी रिलीजन और कास्ट, वी आर ऑल पाकिस्तानी एंड वी शुड हैव ब्रदरहुड अमंग आर सेल्फ। यही तो बात है यही रिस्पेक्ट करने की तो बात हो रही है। मेरे हस्बैंड भी परदेश से आपको सुन रहे हैं, उनके लिए ये सॉन्ग मेरी तरफ से डेडिकेट कर दीजिएगा, वे माही घर सरमद गदीर। ओके तो आपके हस्बैंड का क्या नाम है? आपके हस्बैंड को भी अस्सलाम वालेकुम। और कौन है? और जिस तरह मुल्क के हालात हैं, हमारी बेटियों की इज्जत, वेल ये इतना सेंसिटिव मैसेज है, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेकिन जो हालात हैं यकीन मानिए देख के गुस्सा तो जो आता ही आता है, दुख और तकलीफ से ना बुरा हाल होता है कि बंदा क्या करे, किधर जाए। कि बहुत सारे राइट्स हैं, हम अकलियतों के राइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोगों के राइट, इज्जतें, बहुत कुछ महफूज नहीं है। तो पहले तो मैं, जो मुझे ऐसे लग रहा है कि उसी चीज़ की इज्जत किसी की महफूज रख लें तो वो सबसे बेहतरीन बात है। राइट्स तो बाद में देखे जाएंगे, पता नहीं क्या है वो वाले राइट्स, उन चीज़ों का ख्याल रख लें जो अल्लाह की अदालत में जाके हमने जवाब भी देना है। मैम जी, अगर आपका मूड अच्छा है तो मैं एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करूँ? नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिबा सुन रहा हूँ, ओके। तारिक अगर सुन रहे हो तो फिर तुम्हें भी समझ आ गई होगी कि मैसेज आया है, उन्होंने तफसीलन मैसेज मुझे किया था, कॉल भी कर रहे थे पिछले दिनों लेकिन मेरा फ़ोन ख़राब था। ये जो मेरा फ़ोन ख़राब हो रहा है नाज़रीन, ये जो बीच बीच में दो दो हफ्ते का गैप आ रहा है फ़ोन का, पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि फ़ोन ये चाह रहा है कि मैं ना वापस 80s वाले दौर में चली जाऊँ और कीपैड वाले फ़ोन पर आ जाऊँ। मुझे ऐसे लग रहा है मैं वापस उसी दौर में जाना चाह रही हूँ, स्टोनेज वाले दौर में जाना चाह रही हूँ मैं। खावर कह रहे हैं कि मैम ये सब नाइस शो क्यों कह रहे हैं? पता नहीं खावर इनका दिमाग को क्या हुआ, ये नाइस शो कह रहे हैं, आई डोंट नो क्यों कह रहे हैं, प्लीज पूछो इनसे। जरियोन ने मैसेज किया, शिबा मलिक आपकी आवाज इतनी प्यारी है कि दिल करता है कि हर वक्त आप शायरी करती रहें और मैं सुनता रहूं। अच्छा सही, ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है।

0: Angelicious, welcome back. Okay, जी, so, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद है. वेल जी, मोहम्मद जहाँ से भी आप सुन रहे हैं, आपको भी खुश आमदी. थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग इन माय शो. और चलें, जब आपका मूड फ्रेश हो तब मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको. ओके, ठीक है. सो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
1: आज के दिन 11 अगस्त 1947 को हज़रत कायद आज़म ने कानून साज असम्बली में एक तारीखी खिताब किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि आज से आप सब आज़ाद हैं. आप मसाजिद में जाएं, अपने अपने मंदिरों में जाएं, आप गुरुद्वारों में जाएं, आइन और कानून के मुताबिक, चाहे आपका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, बतौर पाकिस्तानी आप सबके हकूक बराबर हैं. ये बात हजरत कायद आजम ने जब कानून साज असम्बली में की तो उनका एक एक लफ्ज आज आइन का हिस्सा बन चुका है. और मैं समझता हूं कि इस हवाले से पाकिस्तान बनने के बाद जहां पर आपने अपना बेहतरीन किरदार अदा किया, अपनी तमाम बसीरत और अपनी तमाम तवानाइयां आपने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए आपने सर्व की. और इस तरह अगर आप तालीम के मैदान में देखें तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ने बेपनाह खदमात अंजाम दी हैं. मैं खुद कैथेड्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ सेंट एंथनीज के पढ़े हुए हैं, मेरी बहन कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में पढ़ी हुई हैं. कहने का मकसद यह है कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से मुसलमान हैं, हमने इन स्कूलों में तालीम हासिल की. तो जिसने आपको तालीम के जेवर से रास्ता पैरास्ता किया, उनकी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से अगर हम उनकी सताइश नहीं करेंगे तो ये नाइंसाफी होगी. इसी तरीके से आप देखें कि पाकिस्तान की जो जंगें हुई उनमें हमारी अकलियत बरादरी ने बहुत ही शानदार किरदार अदा किया. सैसल चौधरी को ले लें. और फिर आप देखें इसी हवाले से आपकी जो जुडिशरी है और जस्टिस कार्नेलियस से कौन वाकिफ नहीं. उन्होंने, मैं समझता हूं कि बतौर एक जज, एक मुनसिफ के एक शानदार किरदार अदा किया. और फिर इस तरह जोगिंद्रनाथ मंडल, उनका नाम कौन उनसे वाकिफ नहीं, या एसएल गिप से कौन वाकिफ नहीं, एसपी संगा उनसे कौन वाकिफ नहीं. मैं समझता हूं कि ये वो हस्तियां हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त करोड़ों मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान बनने के बाद कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लिया. अभी आपने देखा कि जिनके वालिद ने अपने बेटे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी, मैं शरीक हुआ था रसूमात में भी, ये वो कुर्बानियां हैं जिनको हमें बड़ी कदर से देखना चाहिए. सिख बरादरी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, हिंदू बरादरी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है, पारसी बरादरी ने, ये बहुत पुरमन बरादरियां हैं, इन्होंने हमेशा पाकिस्तान में अमन से जिंदगी गुजारी, कभी किसी लड़ाई झगड़े का हिस्सा नहीं बने. तो आज हम 11 अगस्त के हवाले से, जो हमारी मिनोरिटीज का दिन आज हम मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि उसके लिए मैं वजीर जनाब सरदार यूसुफ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और जनाब चौधरी आजम तारड़ साहब को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं. और यहाँ पर हमारे हिंदू नुमाइंदे बैठे हैं, तो ये बात हमें अपने जहनों में अच्छी तरह बसा लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले करोड़ों मुसलमान और हमारे जो दूसरी जो अकलीतें हैं, हमें सब ने मिलकर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से हमकिनार कराना है। इकबाल का ये शेर आज इस यूनिटी की अकाशी कर रहा है। फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में, बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये हमांगी, ये बामी ताल्लुक, दोस्ती, मैं समझता हूँ कुर्बतदारी, ये आज के दिन ये पैगाम, तो ये हमांगी, ये बामी ताल्लुक, दोस्ती,

0: हम सेहत के लिए दिन रात काम करें और लोगों को तालीम के जेवर से आरास्ता पैरास्ता करें, नौजवान नस्ल को आज के जो जदीद अलूम हैं उससे उनको एम्पावर करें ताकि पाकिस्तान दुनिया के मुकाबले में, बाकी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में इज्जत और वकार के साथ खड़ा हो उस सफ में। अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान ने मक्कतुल मुकर्रमा में ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है। मैं यहाँ पर आज फिर ये बात बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूँ कि ये डिफेंस पैक्ट जो हुआ है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान, ये किसी मुल्क के खिलाफ ये मुआहदा नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फरोग देने का, ये मुआहदा है तरक्की और खुशहाली को फरोग देने का। और आज जिस तरीके से गल्फ के अंदर एक इंतहाई हैजानी कैफियत मौजूद है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इसका खात्मा करेंगे और खित्ते में अमन कायम होगा। मैं समझता हूँ इस्लाम का, कुरान करीम का और उस पर हंसना से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनसे हमें ये सबक मिलता है। तो मैं आखिर में सब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
1: वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का अकलियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म कहते हैं अकलियती बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया। तालीम के मैदान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की खिदमात काबिले सत्ताईश हैं। हम सब ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करना है। आज पाकिस्तान में अकलियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अकलियतों ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। मसीही, हिंदू, सिख, पारसी भाई बहनों का हमारे दिल में बहुत एहतराम है। वज़ीरे आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 11 अगस्त का खिताब आज आइन का हिस्सा है। पाकिस्तान

0: from the house of 6B Food Industries.
1: This is FM 101.
2: Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas tapal dane dar.
3: And now you are tuned into
2: FM 101. Har Pakistani ke dil ki pukar. Chai bane bas tapal dane dar.
4: Sunte rahiye FM 101.
5: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
6: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

हेलो, यहाँ पे मशवरा ये आ रहा था, लुक लाइक्स यू शुड वाइंड अप द शो. सो क्या ख्याल है, खबर वाइंड अप कर दें? अभी नहीं होगी, बस यही कमी रह गई थी. बस तुम लोगों को थोड़ी सी बीच में आ जाना डिस्टर्बेंस तो मुसीबत पड़ना शुरू हो जाती है कि ओ हो क्यों हो रहा है यार. आई कैन अंडरस्टैंड दैट हफ्ते में एक शो होता है, बट यू नो दीज थिंग्स आर, वो क्या मैं बोलती होती हूँ, स्पाइसेस, ये मसाले हैं शो के. सो यू नो फिर बर्दाश्त करें, फिर और क्या बर्दाश्त करें या पास करें वाली सीन जो है ना वो हो जाता है. एनीवेज, सो आज अकलियतों का दिन मनाया जा रहा है और मिनोरिटीज़ डे है पाकिस्तान में. सो उसी के हवाले से जो होता है वो स्पीच थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, तो एम्फोसाइज़ किया जा रहा था. और हम सारे जो हैं वी आर इक्वली शेयरिंग दैट हार्मनी एंड पीस, दैट पाकिस्तान में जो है मिनॉरिटीज़ के जो राइट्स हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की जा रही हैं, और किसी भी तरह से वो इनसिक्योर और डिस्क्रिमिनेट जो है वो फील ना करें. और इस हवाले से पाकिस्तान की और पंजाब की जो कोशिशें हैं, काविशें हैं, वो खराज तहसीन जो हैं वो पेश करने के काबिल हैं. बिकॉज मरियम साहिबा ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा रही हैं. सो अटर्नीज, वॉलंटरीज और बहुत कुछ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपकमिंग आ रही हैं. आप लोग जाके देख सकते हैं, जो पोर्टल है मिनॉरिटी राइट्स वाला पाकिस्तान का, आप वहाँ पर जाके उस पोर्टल पर जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं. लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बट लोग ना होमवर्क नहीं करते, स्टडी नहीं करते. तो आप लोग जाके ज़रा देखा करें कि हमारे जो पोर्टल्स हैं गवर्नमेंट के, ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हम अवेल कर सकते हैं, जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं. इट्स नॉट जस्ट ओनली सेइंग कि हम लोग यहाँ पर आते हैं, शो करते हैं, आपको बताते हैं और चले जाते हैं. It's not that only. It's just like आप उसको फॉलो अप करें, उससे काम करें, फ़ायदा उठाएं उन अपॉर्चुनिटी से, ताकि आप जो हैं आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें और अच्छे से लोगों को बता सकें कि हाँ जी वी आर सेफ. ये जो कॉन्सेप्ट है लोगों ने बनाया हुआ है कि पाकिस्तानी मिनॉरिटी राइट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इक्वली शेयर्ड नहीं हैं, तो ये बात गलत है कम्प्लीटली. सो वी आर नॉट एग्री विद दैट. अच्छा जी, लगता है कि चली गई, बिल्कुल भी नहीं. जदो सारा जग सो में मैनू आवे तेरी याद, ये सॉन्ग जाते हुए लगा दीजिएगा. हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि लास्ट में ही हम लोग चल रहे हैं, तो प्रॉबेबली लगा ही देंगे ये वाला गाना भी. अच्छा जी, बतूल ने मैसेज किया है कि आज का शो बहुत मज़े का था शिवा, तुम्हारी आवाज़ अच्छी लग रही है, लेकिन बीच बीच में पता चल रहा है कि गला ख़राब भी है. तो ये खावर को नहीं पता चल रहा था, खावर को कोई बताए, खावर को कोई चुक के उठा के मारे, इसको समझ नहीं आ रही थी कि गला ख़राब है, ये क्या चल रहा है. एनीवेज, दोस्त दे आर नॉट कमिंग इन शो. आज शो में हम लोगों ने उनको मिस भी किया, ठीक है, और याद भी किया, ठीक है. और कुछ ऐसे मीसने बन के जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे जानते नहीं पहचानते नहीं, ठीक है, वो वाला सीन भी है कुछ लोगों का यहाँ पे. सो खैर, एनीवेज, ज़रा देख लेते हैं कि लाइफस्टाइल क्या चल रहा है. लाइफस्टाइल मॉनसून चल रहा है, बारिशें हैं. प्लीज़ बारिशों के मौसम में खंभों से दूर रहें, जहाँ पे पानी रहता है, नदी नालों में, हर जगह पे जो है वो सैलाब की प्रॉपर अलर्ट जारी हैं. और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि प्लीज़ जब भी कभी इस तरह की न्यूज़ में अलर्ट हों, फ्लड अलर्ट दिए जा रहे हों, तो सैलाब को, पानी को ना इजाज़त दें कि वो घर आके आपको नॉक करे. प्रॉपर जो है गवर्नमेंट के साथ प्रॉपर तावन किया करें, उनको बताया करें कि हाँ जी वी आर विद यू, तो वो नॉक नॉक वाला सीन ना करवाया करें.

नीड सो मॉनसून है, अपनी स्किन का ख्याल रखिए और अपने आसपास जो है लोग उनका भी ख्याल रखिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जब कोशिश करें कि गंदा पानी जो है आपकी इर्द गिर्द ना खड़ा हो, क्योंकि उसकी वजह से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो भी आ रही हैं। सो नाउ आई हैव टू लीव, अब जाने का जो है वो वक्त हो रहा है, और थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ़ यू जो शो में शामिल रहे। आज माइनॉरिटी डे जो है वो पाकिस्तान में मनाया जा रहा है और नॉट इंटरनेशनली पाकिस्तान में, तो क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त 1947 को जो है बिल पास किया था असेंबली में और शोर करवाया था, प्रॉमिसेस दे दिए थे और कहा था कि पाकिस्तान में अकलियती लोग जो हैं, सारी मिनॉरिटीज़ जो हैं, दे आर सेफ़ एंड साउंड और हम उनका प्रॉपरली जो है हर एक चीज़ का ख्याल रखेंगे। सो ये उन्होंने अशोर कराया था। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ़ यू जो लोग शो में आज शामिल रहे। यस, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, अल्हम्दुलिल्लाह शो जो है वो हो गया है। कैसा रहा वो तो आप लोग बताएंगे, और दे माही घर आ सॉन्ग ठीक है, हुमा आई विल ट्राई टू प्ले बिफोर लिविंग ऑफकोर्स। फिर और कौन है, जुरिया ने कहा कि आज का शो बड़ा फास्ट फास्ट रहा है, आज ऐसे नहीं लगा कि 2 घंटे का शो हुआ है, ऐसे लग रहा जैसे सिर्फ 1 घंटे का शो हुआ है। हाँ ऐसे ही लगता है, जब बीच में हमारे 10-15 मिनट निकल जाते हैं ना, तो फिर हमें ऐसे लगता है कि शो का टाइम बहुत कम था, हम मतलब लालची हो जाते हैं। ऐसे लग रहा होता है अरे यार और टाइम होना चाहिए था, तो मुझे भी ऐसे लगता है, इट्स नॉट जस्ट कि आपको मेरा शो अच्छा लगता है तो आपको ऐसे लगता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यार थोड़ा सा और टाइम होना चाहिए था। एनीवेज नाउ आरजे शिवा मलिक की साइनिंग ऑफ, लीविंग यू विद द लास्ट ट्रैक हुमा, दैट्स योर सॉन्ग ओके। सो ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मुलाकात होगी 14th ऑफ अगस्त पे, तो हो गई ही इंशाल्लाह, और ट्यूसडे तो रहता ही है। सो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने आसपास अपने सारे उन लोगों का भी ख्याल रखिए जिनको केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बी सेफ एंड साउंड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़ एंड हार्ट्स ऑफ़ लव्स।

0: after this short commercial break. Stay with us.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार.
0: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
2: दर्द से भरी मेरी ये कहानी है, ना बात करनी ना तुझको सुनानी. सोचो कभी मैं ये किसे कहूँ, आता नहीं मेरे दिल को सुकून. दुनिया झूठी, दुनिया वाले है फेक, उनके बारे में मेरा है टेक. I don't care what you think.

तक सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
0: सुनते रहिए FM 101 101।

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: सुनते रहिए FM 101 101।

जैसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भरना

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: सोना यूरिया ग्रैनुलर जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करदा आला मयार का सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: देयर्स म्यूजिक एंड देन देयर्स मैजिक वन अबव FM 101।
3: पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
4: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: We will be back after this short commercial break. Stay with us.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.
3: हर पाकिस्तानी के दिल की पुकार, चाय बने बस टपाल दानेदार।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार करता आला मयार का सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रैनुलर मिट्टी का मान बढ़ाए।
2: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: There's music and then there's magic. One above FM 101.

0: Prime Minister says minority communities are playing active role for development of the country. Deputy Prime Minister has stressed for adoption of digital technologies to provide various services to overseas Pakistanis. Pakistan and European Union have agreed to further strengthen mutual cooperation. Finance Minister has emphasized on presenting commercially viable projects to potential investors and financing institutions. Security
1: forces. मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर. तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें. रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं. बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें. बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं. बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरतेहाल में खुसूसी तवज्जा दें. ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें. नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें. जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें. दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें. रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरतेहाल से आगाह रहें. खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें. बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें. हिफाजत सिर्फ एहतियात में.
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालावारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है. तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोड़ वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है. इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें. दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें. दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है. इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं. इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके.
3: This is FM 101.1.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: हमें कमज़ोर समझ कर के कुछ नाआकबत अंदेशों ने एक खुशफहमी का शिकार होते हुए एक जिसे कहते हैं ना एक चढ़ाई करना शुरू की, और फिर अल्लाह ने उनको कैसी तारीखी इबरतनाक जो है वो शिकस्त से दो चार किया। मैं ये समझता हूँ कि जो कम अज़ कम उनके यहाँ आज की तारीख तक पैदा होने वाले हर बच्चे को जो है वो सबक देने के लिए और उनको सबक सिखाने के लिए बहुत काफ़ी इतनी सी बात। और फिर उसके बाद भी ये तो चलें एक मैदान मर्द मैदान होने का एक मामला है ना, आप ये देखें कि अल्लाह की रहमतें जो हैं उनकी सिमत अभी तक इस मुल्क की तरफ कैसी वालेहाना है कि वहाँ कैसी इज्जत अता करके पूरी दुनिया की तवज्जो आपकी तरफ की। और फिर ये जो अमेरिका ईरान वाला मामला है उसके अंदर जिस अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मुमलिकत को एक पूरी दुनिया के अंदर इसकी अहमियत को उजागर किया और सारी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया आप देखें कि वो ईरान और अमेरिका की बात कम कर रहा था और पाकिस्तान की बात जो है वो ज़्यादा नुमायाँ तौर पर जो है वो की जा रही थी और पाकिस्तान का किरदार और पाकिस्तान की हिकमत अमली और पाकिस्तान का जज्बा वो ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा था। और यकीनन ये सारे वो आसार हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम से मैं बहुत उम्मीद की हद तक नहीं यकीन की हद तक ये देखता हूँ कि ये मुमलिकत जो है ये जिस जिन खूबियों के साथ आरास्ता और पैरास्ता है इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ बहुत जल्द ये अपने असल मकाम अपने असल मंजिल की तरफ सफ़र शुरू करेगी। और कैसे होगा ये मैं और आप जब तय कर लेंगे ना कि हमने अपने अपने हिस्से का काम करना शुरू करना है और हमने हुकूमतों की तरफ और उन चीज़ों की तरफ कम देखना है और अपना जो पहले इनफरादी किरदार है उसे ठीक करते हुए अपने हिस्से की शमा जो है उसको जलाना शुरू करना है। आप देखेंगे ये अगर वाकईतन सब ने इस नीयत और इरादे के साथ कमर कस ली तो चंद दिनों में ये जो अंधेरे हमें नज़र आते हैं सारे रोशनी के अंदर बदल जाएंगे।
1: शिकवे ज़ुल्मत और शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कुछ शमा जलाते जाते। तो आपकी बात कि हमने अपने हिस्से की शमा जलानी है अपना जो रोल है ना वो अदा करना है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए क्या हम यकीनी तौर पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उससे जो हमारे कौमी मसाइल हैं या जो इखलाकी मसाइल हैं उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं?
0: मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि दीन का मामला इतना आसान है
1: सर
0: और इतना खूबसूरत एहसास के साथ कि मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि इंसान की इस ज़िंदगी के लिए भी और इसके बाद की ज़िंदगी के लिए भी उतना दीन ही बहुत काफ़ी होता है जो उसने पाँचवीं क्लास तक हासिल किया होता है। मैं दोबारा दोहरा दूँ अपने सामीन के लिए कि इंसान की इस ज़िंदगी की कामयाबी के लिए भी और इसके बाद हमेशा रह जाने वाली ज़िंदगी दोनों ज़िंदगियों के लिए कामयाबी उसके लिए उतना दीन ही काफ़ी है जितना पाँचवीं क्लास तक मैंने और आपने सीखा होता है। असल मामला क्या है कि वो दीन सीखना काफ़ी नहीं है, उसकी अमली गवाही और शहादत मेरे और आपकी ज़िंदगी से आनी चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक।
0: मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितना हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने मुखालफीन के हवाले से हुस्ने सलूक पर बात करते हैं तो हमारे दिल ठंडक पाते हैं ना, हमारे दिल से जान को दिमाग को जाते सारे रास्ते मुअत्तर होना शुरू हो जाते
1: बेशक
0: हमारे अंदर एक सरशारी और एक फ़ख्र आना शुरू होता है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर हम मेरे करीम आका ने जितना अपने दुश्मनों के साथ उसने सलूक रखा है अगर वैसा सलूक हम अपने दोस्तों के साथ करना शुरू कर दें, उससे ज़्यादा नहीं दुश्मनों से ज़्यादा नहीं, जितना सिर्फ दुश्मनों के साथ हुज़ूर का उसने सलूक था ना उतना सलूक आप और मैं अपने दोस्तों के साथ करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगियां भी जन्नत बनना शुरू हो जाएं, हमारे दोस्तों की ज़िंदगियां जो हैं वो भी जन्नत बनना शुरू हो जाएं। असल मामला जो है वो अपनी ज़िंदगी को अमल की गवाही के साथ मुस्तहकम करना है। इस उम्मत के अंदर फरहान भाई मुझे ये बताएं कोई एक पाँच साल का बच्चा ऐसा है जिसको ये बात ना पता हो कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुआशरे में मक्के और उसके गिर्दो नवा में लोग उनके इस्म ज़ाती यानी लफ्ज़ मोहम्मद से कम जानते थे और सादिक और अमीन के नाम से ज़्यादा जानते थे।
1: बेशक बेशक बेशक
0: आप तसव्वुर करें इंसानी तारीख के सबसे झूठे मुआशरे को अल्लाह ने अपना सबसे सच्चा रसूल अता किया। इंसानी तारीख में अपनी बददियानती पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र करने वाले मुआशरे को अल्लाह ने अपना सबसे अमानतदार रसूल अता फरमाया। तो बात यह है कि मैं हमेशा एक बात आम दिनों में भी ये सोचता हूँ रबीउल अव्वल की क्योंकि आमद आमद है तो ये जैसे जैसे ये दिन मुतबर्रिक अय्याम करीब आते हैं حضور کے ساتھ جڑنا، حضور کی زندگی پر غور و فکر کرنے کا عمل

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अक़लियतें मुल्क की तरक्की में फाल किरदार अदा कर रही हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने दिफा और हवाबाजी के शोबों में दो तरफा तआवुन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने पीटीआई की तशद्दुद और इंतशार की सियासत की मज़म्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला पंजगूर में फितनातुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंबे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आपको यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीका जात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, एसएमएस वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में।
2: मूसलाधार बारिश और शदीद झालाबारी लोगों को जख्मी और इमारतों, गाड़ियों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेज और मुसलसल बारिशों से पानी छतों, घरों की बुनियादों और जोहर वगैरह में इकट्ठा होकर बाइसे तकलीफ और जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। इससे बचाव के लिए ये चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दीवारों, छतों और बुनियादों में दरारों का मुकम्मल मुआयना करें। दीवारों और छतों में शगाफ की मरम्मत करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम स्ट्रक्चर तेज बारिशों को बर्दाश्त करने के काबिल है। इमारतों की उखड़ती टाइलें या ईंटें उनको महफूज कर लें या हटा दें जो शदीद बारिशों के दौरान उखड़ सकती हैं और खतरा बन सकती हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि निकासी आपके निजाम में मलबा या कचरा ना हो ताकि पानी के जमा होने से बचा जा सके।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101. सुनते रहिए FM 101.
3: आवाजें चुप होती हैं पर जज्बात बोलते हैं।

सुनते रहिए हर रात 12 से 2 मंगल और जुमा ओनली ऑन FM 101।

सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। सौ सलीबें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। आज फिर से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कहने से पहले भी कुछ कहूँ, या फिर कह देने के बाद कुछ वजाहत करूँ। कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, कितना आसान था तेरे हिजर में मरना जाना, फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते। उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। खैर जी, मेरा नाम ज़िया अंजुम है। हर मंगल को रात 12 से 2 प्रोग्राम हरफ़े जुनू आपके लिए लेकर आता हूँ। 12:07 हुए जाते हैं, 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ा लेट नाइट है, थोड़ा जल्दी आया करें, और कुछ कहते हैं कि बड़ा अच्छा टाइम है। इस वक्त हम बिल्कुल फ्री होते हैं, सारे कामों से फारिग होके सुकून से लेटे होते हैं, और यूं आपका प्रोग्राम सुन के अच्छा लगता है। बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं और आपकी शिकायतें हैं, दोनों सर आंखों पे हैं। जिंदगी है, जिंदगी इसी चीज़ का नाम है। यहाँ पे मोहब्बतें और शिकायतें दोनों साथ साथ चलती रहती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि ज़िंदगी मुकम्मल मोहब्बतों से भर जाए, और यूं भी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ शिकायतें हों, मोहब्बतें ना हों। हाँ, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि जैसे शिकायतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, गम या दुख कुछ ज़्यादा घेरा तंग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी यकीन जानिए, हर चीज़ की गुंजाइश हमेशा रहती है। ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें 100% कभी भी कुछ नहीं होता, कुछ भी कभी भी 100% नहीं होता। कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है, मोहब्बतों में, नफ़रतों में, दुश्मनियों में, दोस्तियों में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, कोई गुंजाइश, कोई सिलसिला रह ही जाता। ऐसे ही छोटी छोटी बातों को लेकर आपके पास आते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं, और यूं ही गुफ्तगू के सिलसिले दराज होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि 2 बज गए। 12 अगस्त 2026 शुरू हो चुका है, आज़ादी का महीना है। वो एक शेर याद आया मुझे, हमें आज़ादी भी मिली तो कुछ ऐसे नासिक, जैसे कमरे से कोई सहन में पिंजरा रख दे। कभी कभी हम कितने ज़्यादा कैद होते, हम कितने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं उन बेड़ियों में, उन जंजीरों में, उन सलाखों के पीछे जो दिखाई तो नहीं दे रही होती, लेकिन बहरहाल हम कहीं ना कहीं कैद ही होते हैं किसी ना किसी चीज़ में। कभी वो कैद हमारी अना की कैद होती है, कभी वो कैद मोहब्बतों की कैद होती है, कभी वो कैद दोस्तियों की कैद होती है, और कभी कभी वो कैद जबरन कैद होती है।
बहरहाल हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी कैद में रहते ही हैं। कहने को हम आजाद होते हैं, कभी कभी कुछ बातें कुछ लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं असल में वो वैसी होती नहीं हैं, वो अंदर से बिल्कुल कुछ और होती हैं, और वो कुछ और किसी और को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। और से और हुए दर्द के उनवां जाना, अव्वल अव्वल तो ये आलम था कि कुछ होश नहीं थी, रगे मीना सुलग गुट्ठी के रगे जाना जाना। आखिर आखिर ये आलम है, अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाए तेरा पैमा जाना। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। अव्वल अव्वल की मोहब्बत के नशे याद तो कर, बिन पिए ही तेरा चेहरा था गुलिस्तां जाना। आखिर आखिर ये आलम है कि अब होश नहीं, रगे मीना सुलग गुट्ठी के रगे जा जाना। दिल समझता था कि शायद हो फसूरदा तू भी, दिल की क्या बात करें दिल तो है नादा जाना। मुद्दतों से यही आलम ना तवक्को ना उम्मीद, दिल पुकारे ही चले जाता है जाना जाना। जिंदगी तेरी अता थी सो तेरे नाम की है, हमने जैसे भी बसर की तेरा एहसान जाना। हम भी क्या सादा थे, हमने भी समझ रखा था, गमे दौरान से जुदा है गमे जाना जाना। अब के कुछ ऐसी सजी महफिले यारा जाना, सर बजानू है कोई सर बगरे बां जाना। हर कोई अपनी ही आवाज से कांप उठता है, हर कोई अपने ही साए से हिरासा जाना। जिसको देखो वही जंजीरे बपा लगता है, शहर का शहर हुआ दाखिले जिंदा जाना। अब तेरे जिक्र पे हम, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए, अब तेरा जिक्र भी शायद ही गजल में आए। और से और हुए दर्द के उनवां जाना, हम के रूठी हुई रुत को भी मना लेते थे, हमने देखा ही ना था मौसम में हिजरा जाना। होश आया तो सभी ख्वाब थे रेजा रेजा, जैसे उड़ते हुए और आँख परेशान जाना, जैसे उड़ते हुए और आके परेशान जाना। अब के तजदीदे वफा का नहीं इम्कान जाना, याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना। याद क्या तुझको दिलाएं तेरा पैमा जाना।

सुनते रहिए FM 101 101।

अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है, यूं है, यूं तो कहने को सभी कहते हैं, यूं है, यूं है, तूने देखी ही नहीं दश्ते वफा की तस्वीर, नो के हर खार पे एक कतराए खून है, यूं है, अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने। अच्छा जी, तमाशे तो होते रहेंगे। शेक्सपियर कह के गया था कि दुनिया एक तमाशागाह है, यहाँ पे हर शख्स एक किरदार है, वो इस तमाशे में आता है, इस तमाशे के स्टेज पर आता है, अपना किरदार निभाता है, किरदार निभा कर चला जाता है। हर किरदार मेन किरदार नहीं होता, मरकजी किरदार नहीं होता, मरकजी किरदार तो कोई कोई ही होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो हर शख्स कम से कम अपनी कहानी का मरकजी किरदार तो खुद ही होता है। अपनी कहानी में मैं किसी और को मरकजी किरदार कैसे दे सकता हूँ, खुद ही सोचे। मेरी कहानी का मरकजी किरदार तो मैं हूँ, हाँ, लेकिन देखने वाले जो दूर से इस कहानी को देख रहे होते हैं वो अपने हिसाब से जज करते हैं कि किसको कौन से किरदार में कहाँ पे रखना है। हम कभी कभी अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की कहानी में मरकजी किरदार तो रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्यारे भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, जिनकी ज़िंदगी में हम मरकजी किरदार बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में हम एक साइड रोल, एक एक्स्ट्रा, एक इजाफी शख्स के अलावा कुछ भी नहीं होते। हमारी वक्त इतनी भी नहीं होती कि अगर हम कुछ देर के लिए, कुछ अरसा के लिए मंजरनामे से गुम हो जाएं, तो वो हमारी परवाह भी करेंगे। आप खुद सोचिएगा, आपकी ज़िंदगी में कितने ऐसे लोग हैं जो अचानक से मंजरनामे से गुम हो गए और आपको पता भी नहीं चला। कई सालों के बाद कोई ऐसा शख्स मिला, पुरानी बातें कोई छिड़ी, याद आई तो याद आया कि हाँ यार, एक वो शख्स भी तो हुआ करता था, दिन रात उसके साथ गुजरते थे, मुलाकातें होती थीं, एक तसलसल था, लेकिन फिर उसके बाद गुम हुआ, तो ऐसा गुम हुआ कि याद तक ना आया। ऐसे लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में नहीं होते, हम भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसे ही होते हैं, बेजरर से, बेनुमाया से, बेवक़्त से। आपके मैसेजेस आए हैं, उन मैसेजेस को पढ़ लें, क्या कहते हैं? मेरा ख्याल से पढ़ लेते हैं। हाय माज अली हमारे साथ हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ, मैं माज अली पिशावर से। शुक्रिया जी, प्रोग्राम में खुश आमदीद तो मैं आपको कहता हूँ क्योंकि प्रोग्राम मेरा है, आप सामे हैं, मैं मेज़बान हूँ, तो जो मेज़बान होता है खुश आमदीद वो कहता है। क्या ख्याल है। लुबना महमूद हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम सलाम, और कहती हैं कि योर लाइव स्ट्रीमिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इफ़ यू गेट इट देन फेसबुक डज़ नॉट वर्क।
अच्छा मुझे नहीं पता कि आप इसको किस तरह से चलाने की कोशिश कर रही हैं। बहरहाल हमारी एक ऐप है और ऐप का नाम है रेडियो पाकिस्तान लाइव न्यूज़ प्रो। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं और लिखें रेडियो पाकिस्तान लाइव न्यूज़ प्रो तो आपको हमारी ऐप मिल जाएगी। इस ऐप से आप लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हमें मोबाइल से सुन सकते हैं। इस पे एफएम 101 के तमाम नेटवर्क्स आ रहे होते हैं। मैं इस वक्त एफएम 101 लाहौर से बराह रास्त हूँ जबकि मेरा ये प्रोग्राम नेटवर्क पे सुना जा रहा है कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर कोयटा मुल्तान सियालकोट सिब्बी। इसके अलावा जहाँ जहाँ पे भी मेरी आवाज़ इस वक्त गूंज रही है आपकी समातों से टकरा रही है। कैसे कर लेते हैं यार आप रात के इस पहर में भी कैसे कर लेते हैं मुझ जैसों को भी सुन लेते हैं। कमाल करते हैं। निम्मी चौधरी हैं कहती हैं कि वाह जी वाह ये किस बात पे आपने वाह जी वाह कहा है। बहरहाल निम्मी थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका कि आपने बड़ा खूबसूरत सा ये एक पोस्टर मुझे डिज़ाइन करके दिया। मैं काफ़ी अरसे से अपने पुराने पोस्टर्स यूज़ कर रहा था यहाँ पे। निम्मी चौधरी ने मेरी रिक्वेस्ट पे एक बड़ा खूबसूरत सा ये पोस्टर जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं हरफे जुनू का ये डिज़ाइन करके दिया है गो के AI से डिज़ाइन करके दिया है। और मैंने इनसे पूछा कि किस तरह से किया है मुझे भी कुछ सिखा दें तो इन्होंने कहा कि आप भी AI से दोस्ती कर लें। हाय हाय हाय हाय हाय अब कहाँ पे होती हैं ये दोस्तियाँ। अब तो दोस्तियों से जान छुड़ानी पड़ती है। अब तो दिल करता है कि बंदा संन्यास ले ले जंगलों में निकल जाए तन्हा हो जाए छोड़ दे ये दोस्तियाँ यार ये क्या रखा है इन दोस्तियों में। अच्छा जी बहरहाल एच इनायत खान हैं सलाम करते हैं या करती हैं करते हैं इनायत खान हैं। अस्सलामुअलैकुम ज़िया भाई कैसे हैं। मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं। फैसल अब्बास सलाम करते हैं वालेकुम अस्सलाम और वेलकम टू द शो लाहौर ओके शुक्रिया। और इनायत खान कहते हैं कि ढेर सारी दुआएं सलाम फ्रॉम कोयटा से ओके थैंक यू। अस्मा कौसर सलाम करती हैं वालेकुम अस्सलाम और दुआएं देती हैं। जुगनू जूनियर हमारे पास आ चुके हैं सलाम करते हैं। हर दिल अजीज़ टॉप ऑफ द टॉप वन ऑफ द बेस्ट RJ थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि चलो कुछ देर हंसते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर इनायत पर के बेबुनियाद बातें हैं सभी रिश्ते सभी नाते ज़रूरत की इजादें हैं कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना कि सब है फेर लफ्ज़ों का है सारा खेल हरफों का ना है महबूब कोई भी सभी जुमले से कसते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं। जिसे हम जिंदगी कहते जिसे हम शायरी कहते गज़ल का काफिया था जो उनवान नज़मों का जो लहजा जब बदलता था कयामत खेज लगता था वक्त से आगे चलता था बला का तेज लगता था जो साया बन के रहता था जुदा अब उसके रास्ते हैं चलो कुछ देर रोते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं चलो कुछ देर हंसते हैं मोहब्बत पर इनायत पर के बेबुनियाद बातें हैं सभी रिश्ते सभी नाते ज़रूरत की इजादें हैं कहीं कोई नहीं मरता किसी के वास्ते जाना कि सब है फेर लफ्ज़ों का है सारा खेल हरफों का चलो कुछ देर हंसते हैं। क्या बात है जी जुगनू जूनियर छा गए यार आप। RK मुग़ल सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे भैया वालेकुम अस्सलाम। और आपने भी एक गज़ल भेजी है मैं इसको ज़रूर शामिल करूँगा। इस्लाम गुज्जर कहते हैं कि सर आज खुले आसमान के नीचे सुनूँगा आपको
मैं गांव पहुंच गया हूं। क्या बात है, आर के मुगल हैं, इनका कहना है कि भाई एक फरमाइश है, अगर हो सके तो प्लीज चला दें। मार गई उडीक मैनू, दे गया तरीक मेरा ढोला। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, कोशिश करूंगा, वादा नहीं है इरादा है। बहरहाल शुक्रिया आपका कि आप सुन रहे हैं। साइम तबस्सुम का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यकीन करो आपके बात करने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा है। अल्लाह आपसे राज़ी हो, हमेशा खुश रहे, आप के लिए दिल से दुआ है। मैं आपको पेरिस फ्रांस से सुन रहा हूँ। भाईजान ऐसे ही अपने प्यारे अंदाज में कोई गज़ल सुना दो, आपका बहुत शुक्रिया होगा। मैं आपके प्रोग्राम को दिल से सुनता हूँ। भाईजान आपको और आपकी पूरी टीम को मोहब्बतों भरा सलाम, दुआ, जश्न आज़ादी मुबारक, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। और गज़लें तो मैं आपको 3-4 सुना चुका हूँ, अब ऐसा करते हैं कि एक अदद गाना सुनाते हैं, क्या ख्याल है? इश्क पहले था या आशिक पहले, आए माशूक तो आशिक पहले।

जब इश्क के हाथ लगे हैं जब से, हाय हाय हाय हाय। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे जया अंजुम कहते हैं।

सुनते रहिए FM 101 101।

वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको प्रोग्राम हरफे जुनू में। 12:37 हुए चाहते हैं और अभी बहुत वक्त पड़ा हुआ है आपके और मेरे इस सफ़र में। बड़ा लंबा सफ़र है, वक्त है कि ये जो वक्त है किसी धूप छाँव के खेल सा, इसे देखते इसे झेलते मेरी आंख गर्द से अट गई, मेरे हाथ रेत से खो गए, मेरे हाथ बर्फ से हो गए। तेरे हाथ से मेरे हाथ तक वो जो हाथ भर का था फासला, कई मौसमों में बदल गया, उसे नापते उसे काटते मेरा सारा वक्त बदल गया। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं अगर आप कॉल करना चाहें तो 042-111-000 पे आप मुझे कॉल करेंगे। आपकी कॉल्स को मैं ज़रूर शामिल करूंगा आपसे कुछ देर के बाद। मैंने चेक कर लिया है, फ़ोन लाइंस बिल्कुल ठीक हैं। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था कि हमने अनाउंस तो कर दिया लेकिन बाद में पता चला कि फ़ोन लाइंस ही ख़राब हैं। तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कुछ देर तक मैं कॉल्स का सिलसिला यकीनन लूँगा, आपके साथ बातचीत के सिलसिलों को दोबारा से यहीं से जोड़ूंगा। लेकिन आपके कुछ मैसेजेस हैं जो कि 4471 पे मुझे मिल रहे हैं।

आर के मुगल की तरफ से जुगनू जूनियर की सालगिरह के मौके पे ये ख़ास नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का गाना डेडिकेट किया गया था। इसको हम मिस नहीं करवा सकते थे, तो जुगनू ये स्पेशल आपके लिए। सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

0: कुछ जंजीरें ऐसी होती हैं जिनसे हम जकड़े होते हैं लेकिन वो नज़र नहीं आती, और वो जंजीरें होती हैं कभी कभी किसी की याद की जंजीर। कुछ ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हमारी ज़िंदगी में शामिल रहे होते हैं, जिनके साथ बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहो, बड़ा एक ताल्लुक और सिलसिला रहा होता है, और हम उनसे, उनकी याद से, उनकी याद की जंजीरों से जकड़े होते हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये होती है कि वक्त के गुज़रने के साथ साथ वो जो राब्ता है, वो जो राब्ते का तसलसल है, वो टूटता चला जाता है। वो लोग जो कभी मंजूर नज़र हुआ करते थे, जो हर पल हर दम अजीज़ हुआ करते थे, जिनके साथ वक्त गुज़रा करता होता था, अब कई साल गुज़र जाते हैं तो उनके बग़ैर वक्त गुज़रता रहता है लेकिन कोई राब्ता नहीं होता। ना उनकी तरफ से कोई पहल होती है, ना हमारी हिम्मत होती है कि हम उनसे राब्ता कर सकें, पहल कर सकें। अगर बात करें भी तो क्या बात करें। मैं अपने कुछ दोस्तों से मिला, बड़े अरसे बाद मिला, और मैंने उनसे मिलके अपनी बड़ी पुरानी बातें की। पुरानी बातें करने के बाद वो जो हमने वक्त अच्छे गुजारे थे साथ, वो जो हमने एक दूसरे के साथ मोहब्बतें निछावर की थीं, वो जो हमने एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दिया था, वो जो हमारी एक दूसरे के साथ बड़ी ही खूबसूरत मेमोरीज़ बनी हुई थी, हमने सारी वो याद की। और फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ का एतराफ़ किया कि यार, अब मैं तुझसे राब्ता करते हुए बड़ा हिचकिचाता हूँ, वक्त बदल गया है। एक दौर था कि जब हम बग़ैर पूछे बताए हम एक दूसरे के पास पहुंच जाते होते थे, लेकिन अब ये है कि अब तुझसे राब्ता करने के लिए, तुझसे बात करने के लिए 100 दफ़ा सोचना पड़ता है। उसने भी आगे से यही एतराफ़ किया कि हाँ, वक्त की गर्दिश ने कुछ इस तरह का सिलसिला इख्तियार किया है कि पहले जितनी फुर्सत या फरागत हुआ करती थी, या पहले जो हमारे मिलने मिलाने में एक तसलसल हुआ करता था, उस तसलसल के टूटने के साथ साथ एक और चीज़ जो हमारे दरमियान में आई, वो दूरी और जुदाई के साथ साथ हिचकिचाहट भी है। अब मैं तेरे घर के पास से गुज़रता हूँ, तेरे दफ्तर के पास से गुज़रता हूँ, तो सोचता हूँ कि उससे राब्ता करूँ कि ना करूँ। पता नहीं वो बिज़ी होगा, पता नहीं वो उस तरह से वक्त दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। कुछ दोस्तों से तो मुलाकात हुई, तो मुलाकात में उनके साथ आप जनाब करके बात हुई, तो मैंने उनको डांटा। मैंने कहा, यार मैं तेरे लिए तू ही हूँ, ये जो तू मुझसे आप जनाब करके बात कर रहा है ना, मुझे लगता है कि मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा जिगर नहीं है, कोई और है। तो तेरी मेहरबानी, मैं तेरे लिए जौन सा ज़िया हूँ, मैं तेरे लिए जौन सा तू हूँ, मुझसे उसी तरह से बात कर। लेकिन वक्त इतना बेरहम है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो हमारे लिए तू हुआ करते हैं, वो आप हो जाते हैं, जिनके साथ बेतकल्लुफ़ी होती है, जिनके साथ कितनी अपनाइयत और इतना याराना होता है, जिनके साथ किसी किस्म की कोई भी बंदिश, कोई कैद, कोई मसलहत नहीं होती, उनके साथ भी हम आप जनाब और कितनी मसलहतों में पड़ जाते हैं। और ऐसा फ़कत सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, या सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ होगा, यकीनन आप में से भी वो लोग जिन्होंने एक वक्त गुजारा है, एक ज़िंदगी बिताई है, वो जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप अपने उन्हीं पुराने दोस्तों से, अपने ही उन पुराने जानने वालों से, उन्हीं पुराने यारों सज्जनों से जब मिलते हैं, तो कभी कभी कितनी दूरी आ जाती होती है बीच में। मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त एतराफ़ कर लिया करें उनसे मिलने के बाद कि यार हाँ, हमारी गलती है, हमारी गलती है, हमने गलत किया है, चलो इसको दोबारा से ठीक करने की कोशिश करते हैं, दोबारा से अपने सिलसिले को वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। कम से कम इन मसलहतों को, इन आप जनाब, इन बातों को तो कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं, पीछे छोड़ते हैं। ये जो आप जनाब वाली बेतकल्लुफी होती है ना, ये हर जगह नहीं होती। हर जगह पे हर किसी से आप तू का मुतालबा नहीं करते। कुछ लोग होते हैं, कुछ इतने करीबी लोग होते हैं कि जिनसे जब आप करके बात करते हैं तो वो फटाफट से पहचान जाते हैं कि यार ये शख्स मुझसे नाराज है, नहीं तो पहले इसने कभी मुझसे आप करके बात नहीं की। आज ये आप करके बात कर रहे हैं तो यकीनन कुछ हुआ है, होता है ना। अब ना वो मैं हूं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज। अब ना वो मैं हूं, ना वो तू है, ना वो माजी है फराज। जिस तरह दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिलें। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिलें। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। न तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आपके कुछ मैसेजेस देखते हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉल्स की तरफ दोबारा आते हैं। देखते हैं हमारे साथ कौन कौन हैं। बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं, इनको शामिल करना है, इनको देखना है। उज़्मा एजाज हैं, कहती हैं कि हम यूसुफ़ जमा थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। अभी मैं कुछ ऐसे ही बात कर रहा था ना, कितने मेहरबान होते हैं लोग, कल की बात होती है। वो दिन भी थे कि हम तुम्हारी जुबान पे थे, मौजूए दास्तान थे अभी कल की बात है। ऐ कारवाने इनकलाब गर तुमको याद हो, हम मेरे कारवां थे अभी कल की बात है। जिन दोस्तों की कमी है आज हयात में, वो अपने दरमियान थे अभी कल की बात है। कुछ हादसों से गिर गए मोहसिन जमीन पर, हम रश के आसमां थे अभी कल की बात है। हम यूसुफ़े जमा थे अभी कल की बात है, तुम हम पे मेहरबान थे अभी कल की बात है। क्या बात है उज़्मा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरत गज़ल भेजी और क्या ऐन उस मौजू के मुताबिक भेजी जो मैं बात कर रहा था। कहती हैं कि वक्त के पाँव भी नहीं और रफ्तार भी गज़ब की है। अली अब्बास कहते हैं कि शोका बीजीएम की क्या बात है, सलाम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज आपका शो सुन रहा हूं, आपका शो बहुत ज़बरदस्त है, ब्रावो, सलामत रहें, खुश रहें, थैंक यू सो मच। अली अब्बासी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिरा मसूद कहती हैं कि आग ही आग है गुलशन पे कोई क्या जाने, किसने फूंका है नशे मन पे कोई क्या जाने। ना कहीं सोजनो रिश्ता, ना कहीं बखिया गरी, सर बसर चाक है दामन पे कोई क्या जाने। देखते फिरते हैं लोग आईना सैयारों के, दिल का गोशा भी है दर्पण पे कोई क्या जाने। क्या बात है, अच्छा साइम तबस्सुम कहते हैं कि भाईजान बहुत अच्छा बोलते हैं, आप मुझे बता दो प्लीज आपका प्रोग्राम कब होता है। मेरा प्रोग्राम आज कल सिर्फ मंगल को यानी ट्यूसडे को रात 12 से 2 FM 101 नेटवर्क पे हुआ करता है। सिर्फ आप मुझे मंगल वाले दिन रात 12 से 2 FM 101 नेटवर्क पे सुन सकते हैं। इसके अलावा जुमे का प्रोग्राम आजकल नहीं हो रहा। जुमे का भी प्रोग्राम हो रहा था पिछले महीने तक रात 12 से 2, लेकिन अभी इस महीने सिर्फ एक प्रोग्राम है 12 से 2, और अभी फ़िलहाल आप यही सुन सकते हैं। जुगनू जूनियर हैं, कहते हैं कि सर ज़िया मेरे साथ नवीद भट्टी और को सलाम कह रहे हैं, आपको पहली बार सुन कर ही आपका दीवाना हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नवीद भट्टी साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुगनू जूनियर के साथ मौजूद हैं, आपकी मोहब्बत है, चाहत है, और जीते रहें, सलामत रहें। साइम तबस्सुम कहते हैं कि आपसे कब जुदा रहा हूं मैं, ज़िंदगी से खफा रहा हूं मैं, ख़त को ख़त ही नहीं समझ लेना, आपके हाथ आ रहा हूं मैं, आजकल मैं भी हूं सुना जाता, आजकल तुमको गा रहा हूं मैं, जब तुझे देखने की फुर्सत थी रास्ते में पढ़ा रहा हूं मैं। क्या बात है जी, एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: कौन बात कर रहे हैं, कहां से
1: जी? मैं ऑन एयर हूं या ऑफ एयर?
0: आप ऑन एयर हैं।
1: मोइन जाट फ्रॉम कोटलिया आजाद कश्मीर।
0: मोइन साहब ठीक हैं आप, खैरियत से हैं?
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक।
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और आपका शो बहुत प्यारा है, और बस बार सुने हैं लेकिन क्या कहने, आपके अंदाज बहुत प्यारा है आपका।
0: आपकी मोहब्बत है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप पसंद करते हैं।
1: जी जी, लेकिन कॉल बड़ी मुश्किल से मिलती है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे FM 101 इस्लामाबाद के PTCL के ज्यादा नंबर है ना, तो ऐसे लाहौर के भी ज्यादा नंबर किए जाएंगे, कॉल ज्यादा लगे।
0: लेकिन हम कॉल तो एक ही ले सकते हैं ना, एक वक्त में चाहे नंबर जितने मर्जी हो। कॉल तो एक ही, कॉल तो एक ही ले सकेंगे ना, चाहे नंबर जितने मर्जी हो।
1: नहीं वो तो है, लेकिन एक डिस्कनेक्ट होती है तो फिर दूसरी लगना मुश्किल हो जाता है।
0: चलें हम कोशिश करते हैं, ठीक है।
1: तो शायरी सुनाना चाहता हूँ मानी भाई जो FM 101 इस्लामाबाद से शो करते हैं उनकी।
0: जी सुनाइएगा।
1: कहा ना था कि यूं मत तराश मुझे, कहा ना था कि यूं मत तराश मुझे, जुनून में कर दिया तूने पाश पाश मुझे।
0: वाह।
1: कुछ वक्त सभी तो बांट के काट लेते हैं, कुछ वक्त तो सभी तो बांट के काट लेते हैं, मेरे दोस्तों ने समझ रखा है ताश मुझे।
0: वाह वाह।
1: और मानी भाई का एक बड़ा प्यारा शेर है कि बहुत से राज छुपे हैं मेरे लफ्जों की ओढ़ में, बहुत से राज छुपे हैं मेरे लफ्जों की ओढ़ में, समझने को तज़किरा किसी वली से कीजिए, मैं तो अजल से ही जल्दबाज हूँ मानी, मैं तो अजल से ही जल्दबाज हूँ मानी, मगर आप मोहब्बत तसल्ली से कीजिए।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे।
1: और एक प्यारी सी गजल है मानी भाई की, वो लास्ट में वो शेयर करना चाहूंगा।
0: जी जी सुनाइएगा।
1: चुका दो आज मेरे प्यार का हिसाब मानी, चुका दो आज मेरे प्यार का हिसाब मानी, वर्क वर्क बिखरी पड़ी दिल की किताब मानी, ढूंढते हो तर के ताल्लुक के जवाब क्यों, ढूंढते हो तर के ताल्लुक के जवाब क्यों, पूछते हैं आंखों में छुपे ख्वाब मानी, और लम्हा लम्हा गुजरता है तेरी सोचों के हस्तार में, लम्हा लम्हा गुजरता है तेरी सोचों के हस्तार में, कहा था मत करो मुझे यूं बर्बाद मानी, और मोहब्बत थी चाहत थी या मैं आदत तुम्हारी, मोहब्बत थी चाहत थी या मैं आदत तुम्हारी, खोल दो आज मुझ पे ये राज मानी, वर्क वर्क बिखरी पड़ी दिल की किताब मानी, और लास्ट है कि सब कुछ लेकर लुटा दो बस वो लम्हा, सब कुछ लेकर मुझसे बस लुटा दो मुझे वो लम्हा, जिसमें मुकम्मल हुई थी मेरी जात मानी।
0: بہت شکریہ بھائی جان, تھینک یو سو مچ, آپ نے بڑا خوبصورت کلام سنایا مانی بھائی کا, بہت شکریہ, جیتے رہیں سلامت رہیں, جیتے رہیں سلامت رہیں. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. انیلا جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
2: جی الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
0: میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک, خیر خیریت سے. کیا کہنا چاہیں گی؟
2: کیا کہنا چاہوں گی, اسٹارٹ اچھا, آپ نے اچھی پوئٹری, بہت زبردست پوئٹری شامل کی آپ نے آج, اور جو بھیج رہے ہیں وہ بھی بہت اچھی بھیج رہے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. کمال آ جاتا ہے نا کہ تلفظ اچھا ادا ہو رہا ہوتا ہے, سننے کا بھی مزہ آتا.
0: کچھ سنائیں آپ بھی.
2: میں بھی سناؤں, سناتی ہوں. ابھی تو مجھے پتا چلا جگنو کی برتھ ڈے تھی. بھائی جگنو, آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. مجھے تو پتا نہیں تھا, میں نے آج ہی سنا آپ کے شو میں.
0: مجھے بھی نہیں پتا تھا, مجھے بھی آج ہی پتا چلا.
2: چلیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جگنو,
0: سب کی طرف سے جگنو کو برتھ ڈے مبارک. اور آپ کیا سنا رہی ہیں؟
2: شاعری سناؤں یا کچھ اور؟
0: افسانہ سنا دیں کوئی.
2: افسانہ, او یس, افسانہ یہ ہے کہ میری زندگی ہے ایک افسانہ, نہ سناندہ سی میرے کو بہت اچھا بانا.
0: یہ تو شعر ہو گیا نا, افسانہ سنائیں کوئی.
2: اسی میں تھا, معاف کر دیں مجھے.
0: پھر کوئی شاعری سنا دیں.
2: شاعری سناتے ہیں, چلیں. مجھ سے لے جائے میری آپ سے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
2: ہاں مجھ سے
0: ٹھیک ہے.
2: آ کے لے جائے میری آنکھ کا پانی, مجھے بلا دیا. آ کے لے جائے میری,
0: خود آئے گا وہ, کوئی اوبر شوبر کو ٹیکسی وغیرہ کروا لے, وہ ڈلیوری بھی ہو جاتی ہے نا آج کل.
2: پیدل مارچ زیادہ اچھا ہے.
0: اچھا ٹھیک ہے,
2: ڈلیوری وہ جنہوں نے بھیجی تو وہاں پہ کرا لیں گے اوبر شوبر.
0: ٹھیک ہے, نہیں وہ خود آنا پڑے گا نا.
2: نہیں نہیں, وہ تو آپ نے آنکھ کے پانی کی میں بات کر رہی تھی, آپ اس کے لیے پوچھ رہے تھے, تو وہ بندہ خود بھی آ جائے تو کوئی بات نہیں.
0: ہمارے تو آنسو ہوتے ہیں, آپ کے پانی ہوتا ہے؟
2: اب آنسو پانی ہی بن چکے ہیں, یا جم چکے ہیں یا پانی بن چکے ہیں.
0: دیکھیں آپ شاعری نہیں سنانے دے رہی ہمیں,
2: ہے نا, آپ ردیف اور کافیہ میرا اسی میں جوڑ جوڑ کے شاعری بنوائی جا رہے ہیں.
0: بس ٹھیک ہے, دیکھ لیں پھر, ایسے کرنا ہوتا تو پہلے بتا دیا کریں. اچھا چلے سنائے نا, کچھ تو سنائے, آپ تو چپ ہی کر گئی ہیں
2: سر, کسی موقع نہیں دے رہے نا بولن.
0: لے آپ کی کال مل گئی, آپ کو موقع ہی موقع ہے, آپ تو عظیم انسان ہیں.
2: اوے اوے میرے سارے بہن بھائیوں کو آئیو آئیو آئیو, زیادہ پروگرام میں رولا پائیے, کال مل گئی.
0: چلے کچھ سنائے نا انیلا جی, بڑا عرصہ ہو گیا آپ نے کچھ سنایا نہیں ہمیں.
2: چلیے میں دو چیزیں سناتی ہوں, پہلے میں یہ شاعری سناؤں گی اور پھر میں تھوڑا سا سانگ سناؤں گی, کیونکہ آج ٹاپک تو ہے کوئی نہیں, لیکن آپ کا جو بی جی ایم ہے نا یہ اچھا لگے گا. چلے پڑھتی ہوں. آنکھیں لے جائے میری آنکھ کا پانی مجھ سے, آنکھیں لے جائے میری آنکھ کا پانی مجھ سے.
0: دو دفعہ لے کے جائے, ٹھیک ہے.
2: کیوں حسد کرتی ہے دریا کی روانی مجھ سے, ماس ناخن سے الگ کر کے دکھایا میں نے, اس نے پوچھے تھے جدائی کے معنی مجھ سے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ, کیا بات ہے, مطلب ناخن ہی جدا کر کے دکھا دیا.
2: نہیں ناخن سے ماس جدا نہیں ہوتا, لیکن کر کے دکھایا نا کہ دیکھو کتنی اذیت ہے,
0: مطلب رشتے جدا نہیں ہوتے. ایسے مطلب نہیں, ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی اور طریقے سے سمجھا دینا چاہیے تھا.
2: آگے بتاتی ہوں پھر سمجھ جائے گا.
0: جی جی بتائیں بتائیں.
2: صرف ایک شخص کی خاطر مجھے برباد نہ کر, صرف ایک شخص کی خاطر مجھے برباد نہ کر, روز روتے ہوئے کہتی ہے جوانی مجھ سے.
0: ہاں ویسے بھی چار کی گنجائش ہے نا, تو ایک کی خاطر تو نہیں کرنا چاہیے.
2: ہاں ہاں ہائے,
0: ہے نا, صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ شعر شعر بھی بالکل ٹھیک ہے, لوجیکل صحیح ہے. یہ
2: بابی یہ صرف شعر تھا, اے شعر تسی سنبھالنا آپ ہی.
0: صحیح ہے صحیح ہے,
2: ٹھیک ہے.
0: آپ دیکھیں مزاق میں لے کے جا رہی ہیں باتوں کو, میں بڑا سیریس سیریس گفتگو کر رہا ہوں آپ کو.
2: سر تھی نا میری شاعری نو پھیتی پھیتی کر چڑے.
0: نہیں استغفر اللہ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
2: تو اور کیا, ٹوٹے ٹوٹے ہوگی یہ بیچاری. جگنو دیکھو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں یہ طارق بھائی.
0: اچھا اس کے بعد کوئی گانا بھی سنانا تھا تھوڑا سا, آپ نے کہا تھا تھوڑا سا کوئی گانا بھی سنانا ہے,
2: تو تھوڑا سا سنوں گی. اس کو تو تھوڑا سا رہ گی ختم ہونے دے.
0: اچھا یہ ہے ابھی ناخن کے بعد کچھ بچا ہے؟ لت نہ وڈا لینا ہوں ناخن تے وڈا لینے ہوں. چلے
2: میں اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ کا نشان چھوڑا ہے.
0: نہیں آپ تو لڑکی ہیں نا, آپ کہیں گے چھوڑ آئی.
2: سر وہ شاعر سی, وہ تے بکول.
0: او دے بکول.
2: ہاں جی.
0: اچھا
2: میں اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ کا نشان چھوڑ آیا, اس نے مانگی تھی محبت کی نشانی مجھ سے.
0: اس نے کس نے؟
2: میرے پھپھڑ نے.
0: نہیں یہ تو شاعر کی بات ہو رہی ہے, شاعر کی بات میں.
2: شاعر میرا پھپھڑ تھا.
0: اچھا شاعر آپ کا پھپھڑ تھا؟ آپ کے پھپھڑ شاعری کرتے ہیں؟ دیکھیے آپ مذاق کر رہی ہیں میرے ساتھ, میں میرا بڑا سیریس پروگرام ہوتا ہے, آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں.
2: میں
0: آپ کو پتا ہے میرا اتنا سیریس پروگرام ہوتا ہے, حرف جنوں اس کا نام ہے. ابھی جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے بڑے فین ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں اور آپ بڑی سنجیدہ گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھیں آپ میرے سارے پروگرام کو جو ہے نا مذاق مذاق میں لے کے جا رہی ہیں.
2: دیکھیں یہ خود ہی مسخرہ بن گیا, میں بھی سنجیدہ پروگرام ہے پلیز لالو ٹائی ہو جائے.
0: اچھا اور بھی ہے آگے اس میں کچھ؟
2: نہیں میں سانگ ہی سنا لیتی, معاف کر دیں مجھے.
0: اوکے معاف کرنا ہے
2: آپ نے, میں نے سب یہی کرنا تھا ہے نا.
0: نہیں نہیں استغفر اللہ, آپ نے مجھے ایسا سمجھا ہوا؟
2: نہیں میں نے آپ کو ایسا نہیں سمجھا, ایسا اللہ کر رہا ہے پہلے شروع میں ایسے ہی کہتے ہیں نا.
0: ہاں اچھا پھر وہ تھوڑا سا گانا سنانا تھا آپ نے. نہیں سانگ سانگ سنانا تھا تھوڑا سا.
2: سانگ گلے خراب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح چلیں خیر.

आजा तेरे सीने से सांस सांस पिघलूं मैं, आजा तेरे होठों से बात बात निकलूं मैं, तू मेरी आग से रोशनी चाट ले,

0: जी
1: वो भी तो कहे ना, आजा महिया
0: आजा आजा महिया आजा आजा जी से
1: ये वो भी तो कहे ना, आजा महिया
0: आजा महिया आजा।

0: क्या बात है, क्या बात है, आप तो छा गई हैं पूरे पहाड़ नाल। बहुत शुक्रिया नीला जी, थैंक यू सो मच। आप जब भी आती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके साथ हल्का फुल्का थोड़ा बहुत मजाक कर लेता हूँ जानबूझ के।
1: मुझे अच्छा लगता है, आप मुझे मान देते हैं
0: क्योंकि मुझे इसके भी पैसे मिलते हैं,
1: है ना? हाँ
0: बस क्या करूं, संभाला ही नहीं जाता पैसा मुझसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जीती रहे सलामत रहे,
1: अल्लाह
0: आमीन जी, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक गाना आप सबकी समातों की नजर, कदी आमिल सावल यार वे, खूबसूरत गाना आप सबकी समातों की नजर, सुनते रहें साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे जिया अंजुम कहते हैं।

0: ओके जी, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद आपके और हमारे साथ में। तकरीबन कोई 18 मिनट बाकी हैं और इन 18 मिनट्स में हमने आपसे गुफ्तगू करनी है, वाइंड अप करना है चीज़ों को। हुस्ना कवल हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच हुस्ना, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अभी महमूद ने हमें ज्वाइन किया है, कहते हैं वाओ नाइस प्रोग्राम लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। महजबीन सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। और नौशीन रशीद हमारे साथ हैं, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। मरीना बिलाल आपका बहुत शुक्रिया, अली अब्बास आपका बेहद शुक्रिया, अली अब्बासी आपका भी बेहद शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं। इस्लाम गुज्जर हैं, इस्लाम थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आर के मुगल कहती हैं कि बंडल ऑफ थैंक्स अनिला आपी, ओके थैंक यू सो मच। और एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है और इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: कौन बात कर रही है, कहाँ से?
1: सर मैं मुना चीमा बात कर रही हूँ।
0: मैं मुना चीमा, कैसी हैं आप, ठीक हैं?
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं, खैरियत से हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से अच्छा हूँ। आप सुनाएं, आज किधर गायब थी, आज आप आई नहीं, आज आपकी एब्सेंट लगी है पता है?
1: सर मैं तो आपसे एक सवाल पूछने लगी थी और मैं सोच रही थी कि आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। आपने उससे पहले ही सुनने वालों को बता दिया कि मैं आज नहीं आई। अब मैं वो सवाल आपसे पूछ सकती हूँ?
0: जी पूछे, बताए।
1: सर वो सवाल ये है कि मैंने आपसे ये कहना था कि आज मैंने पहली बार आपका शो सुना है और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब आपकी आवाज हमने वहाँ ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो सुनी, लेकिन यहाँ मैंने जब शो में आपकी आवाज सुनी तो इतनी मैच्योर आवाज, और मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी आवाज तो सुन ली है, क्या आपसे मुलाकात हो सकती है?
0: जी आज आपने सुबह आना है, सुबह ना आपकी क्लास है 11:30 बजे, तो आपने आना है और फिर आपको आपसे मुलाकात भी हो जाएगी हमारी।
1: ठीक हो गया सर, आप वक्त ले लिया मैंने, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू। मैम उन्हें कुछ सुनाना चाहूंगी, कोई शायरी कोई पोइट्री?
1: जी सर एक फिर सुनाना चाहूंगी।
0: जी सुनाओ।
1: उदास लोगों हुजूम लाओ के हुस्न वालों को मार डाले।
0: ओए होए होए होए, क्या बात है।
1: उदास लोगों हुजूम लाओ के हुस्न वालों को मार डाले, कोई तो नेकी का काम कर ले, तबाह तो वैसे भी हो चुके।
0: तबाह तो वैसे भी हो चुके हैं, कैसे कर लेती हैं आप, हैं ऐसी बातें कैसे कर लेती हैं आप?
1: हाल ही में आपकी शागिर्दी में आई हूँ तो थोड़ा सा असर हो गया।
0: चले मैमुना बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप आई और इंशाल्लाह सुबह क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है?
1: इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। रेडियो पाकिस्तान पे आरजे एंड ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है और मैमुना चीमा हमारी यहाँ पे स्टूडेंट हैं जो कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्किल्स सीख रही हैं, और आज इन्होंने 1.5 महीने के बाद अपने ट्रेनर का पहली दफ़ा प्रोग्राम सुना है, क्या बात है। तो चले ये भी अच्छी बात होगी कि चले इन्होंने आज पहली बार सुना तो सही। इसके अलावा और भी हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से जो जो तुलबा और तालिबात हमें सुन रही हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग फीडबैक देते हो, आप लोग प्रोग्राम सुनते हो और फिर उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस करते हो, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुझे याद है कि जब मैं NCA में पढ़ रहा था और हमें फिल्म एंड TV सिखाया जा रहा था, तो हमारे एक टीचर थे, उन टीचर ने वो हमें रोज़ाना हमारी क्लास में हमें एक फिल्म दिखाई जाती थी। मतलब आप हिसाब लगाएं कि कितनी ज़बरदस्त क्लास हुआ करती होगी कि रोज़ाना हमें कोई मूवी देखने को मिलती थी क्लास में, कोई फिल्म देखने को मिलती थी। लेकिन जब वो फिल्म स्टार्ट होती थी ना, तो स्टार्ट होने से पहले हमारे टीचर कहा करते थे कि मैं आपको ये फिल्म तो दिखा रहा हूँ, मूवी तो दिखा रहा हूँ, लेकिन आज के बाद आपके लिए ये मूवीज देखना और ये फिल्म देखना अजाब हो जाएगा। और मेरे जहन में आया कि भई हम तो फिल्म या मूवी जो है वो इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, ये अजाब किस तरह से हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि जब वो हमसे कोई हमें कोई मूवी दिखाते थे, फिल्म दिखाते थे, तो उसके बाद फिर वो हमसे उस फिल्म के मुतल्लिक सवालात करते थे, और सवालात भी टेक्निकल सवाल हुआ करते थे। वो हमसे डायरेक्शन के मुतल्लिक सवाल किया करते थे, प्रोडक्शन के हवाले से सवाल किया करते थे, एडिटिंग के हवाले से सवाल किया करते थे, एक्टिंग और उसके मेयार के हवाले से बात करते थे, स्क्रिप्ट के हवाले से बात करते थे, स्क्रिप्ट के वीक या स्ट्रॉन्ग होने के एतबार से बात करते थे, क्लाइमेक्स के ऊपर बात की जाती थी। तो हमें फिर वो जो फिल्म थी वो एंटरटेनमेंट से ज़्यादा हमें उसको क्रिटिकली देखना पड़ता था कि हमने इस फिल्म को देखना है और इस मूवी को देखने के बाद टीचर डे हमसे सवाल पूछने हैं, और वो कोई भी सवाल हो सकता है, तो हमने इसको बड़े गौर से देखना है और क्रिटिकली देखना है। क्रिटिकल देख के फिर हम इसको, जब टीचर के सामने सवाल जवाब होंगे तो फिर वो हमसे जब सवाल करेंगे तो हम देखेंगे कि हम इस फिल्म को किस हद तक जज कर पाएं। उसके बाद फिर वाकई ऐसे हुआ कि हमारे लिए मूवीज़, ड्रामास और फिल्में देखना बड़ा अजाब हो गया, क्योंकि हम उसको फिर नॉर्मल तरीके से देख ही नहीं पाते थे, हम उसको हमेशा क्रिटिकली देखते थे। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अक्सर कहा करता हूँ कि जब आप रेडियो सुना करें, जब आप टीवी देखा करें या फिल्म देखा करें या सोशल मीडिया पर कुछ देखा करें, तो उसको एज अ मीडिया स्टूडेंट बहुत क्रिटिकली देखा करें। देखा करें कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो वो अच्छी क्यों लग रही है। 100 लोग हैं, 100 लोग एक ही काम कर रहे हैं, 10 लोग हैं एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन 10 में से आपको सिर्फ एक का काम पसंद आ रहा है, बाकी का काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो ऐसा क्या इन्ग्रीडियंट उस चीज़ के अंदर डाल रहा है कि उसका एक का काम बहुत अच्छा हो रहा है। और अगर बहुत सारे ऐसे लोग जिनका काम अच्छा नहीं लग रहा, वो कौन सी ऐसी कमी है जो वो छोड़ रहे हैं जिनकी वजह से आपको उनकी चीज़ पसंद नहीं आ रही। तो जब आप क्रिटिकली चीज़ों को देखना, सुनना, समझना शुरू करते हैं तो फिर आपके स्किल्स भी इन्हेंस होते हैं, और आपको ये भी समझ आती है कि अगर आपको ये काम खुद करना पड़े तो क्या काम हैं जो करने वाले हैं और क्या काम हैं जो नहीं करने वाले। और ज़िंदगी में अगर इस चीज़ की समझ आ जाए ना कि क्या काम नहीं करना, तो बहुत कुछ आसान हो जाता है। अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इस चीज़ का ज़रूर तायुन कीजिएगा कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, ये वो काम है जो मैंने कभी नहीं करने। जैसे ही आप उन डोंट्स का अयादा कर लेंगे, अहाता कर लेंगे, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि डूज क्या हैं, और फिर आप उन डूज को जितना बेहतर अंदाज में करेंगे और डोंट्स को छोड़ देंगे, तो यकीन जानिए ज़िंदगी का आप कोई भी काम कर रहे हो आप बहुत बेहतर और आसान तरीके से कर सकेंगे। कॉल्स लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ मजीद और कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ज्यादा जन मोहम्मद तारिक अस्कर।
0: तारिक भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं घर में ही उन्हें यही कहने वाला था, बच्चों की नोक झोंक सुन रहा था मैं जब आवाज दिए नीला अपनी ने, तारिक भाई कितने हो?
0: अच्छा तो तुसी क्या, चलो मैं फिर आना वा।
2: आहो मैं क्या तुम दस दिया, तो मैं भी वेड़े च ही घर ही है।
0: क्या बात है, क्या
2: क्योंकि फैमिली ला घर, एक फैमिली मेंबर है मैं, असि सारे घर है, तो फिर जो छोटे बाग मारो वे आना पा।
0: क्या बात है, तो उनकी तुसी की छुड़ान आए हो, की करन आए हो हुन तुसी?
2: मैं तुहानू ये कहना है भी ना मुड़ो, बड़ी चंगी लग रही पे लोग जोग बहुत चंगी लग रही थी। अल्लाह ताला तुहानू तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे और हमेशा ले तंदुरुस्ती अता करे।
0: आमीन जी आमीन। तुसी सुनाओ, तुहाडी तबीयत सेहत ठीक है?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआवां तुहाडे सब वास्ते ते करम है सोने दी जात पाक दा। तुसी सुनाओ, सब खैर वाफियत है, तबीयत
0: सब अच्छा? सब अच्छा। आज कोई कोई शेर सुनाओ, कुछ चंगा जिहा, कुछ जबरदस्त जिहा।
2: چینل فاس تھی نظر اسپیشلی
0: جی جی عطا کیجیے.
2: اپنی یہ خوبصورت آنکھیں گھر میں سجا دو.
0: واہ.
2: اپنی یہ خوبصورت آنکھیں گھر میں سجا دو. معاشرے میں ہر چیز کو غم کی فضائیں رول دیتی ہیں. کبھی دلے یار کر دیتا ہے دیوانہ اور کبھی خود کو اپنی ہی وفائیں رول دیتی ہیں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ. کیا
2: محبت کی تمنا ہو یا خواہش ہو بغاوت کی, یہ وہ جذبے ہیں جن کی انتہائیں رول دیتی.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے, بہت اچھے.
2: اللہ تعالیٰ سب کو یوں سلامت رکھے اور سدا ہنستے مسکراتے رہے.
0: طارق بھائی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. سلامت رہیں, آباد رہیں اور آتے جاتے رہا کریں.
2: اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیشہ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. ضیاء بھائی خوش اخلاق کی ایسی خوشبو ہے نا جو میلوں دور سے محسوس ہو جاتی ہے.
0: بالکل.
2: اور دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مار دے جاتا ہے.
0: بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک.
2: اور ضمیر انسان کا ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے.
0: بہت شکریہ طارق بھائی, تھینک یو سو مچ, سلامت رہے.
2: اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, سب کو, آپ کی پوری مینجمنٹ کو سلیوٹ اور سبھی سننے والوں کو میرا سلام. اللہ نے کے باندھ سدا جیوے سونا پاکستان.
0: بہت شکریہ بہت شکریہ. گلاب ہمارے ساتھ ہیں, سلام کرتے ہیں, وعلیکم السلام, اور پروگرام پسند کر رہے ہیں. اداس فری نے ہمیں جوائن کیا ہے. اداس فری کا کہنا ہے کہ بھائی یہ پوئٹری میں نے خود لکھی ہے, پڑھ کر بتائیے گا کہ کیسی ہے. کیسے سو جاؤں سکون کی نیند کے ہر رات مجھے یہ درد ستاتے ہیں, دن بھر جن کو ہنس کر سہتا ہوں رات بھر مجھ کو وہی رلاتے ہیں. خوش قسمت ہوتا ہے وہ شخص جسے راتوں کی خبر نہ ہو, ہم جیسے تو شب ڈھلتے ہی دردوں میں کھو جاتے ہیں. میں ہنسنا جیسے بھول چکا ہوں, خوش ہوئے مجھے صدیاں گزریں, یہ عنایت کرم جن کا ہے ان کو اس کی خبر نہیں. بھائی میری ایج 16 ایئرز ہے اور مجھے پوئٹری کا شوق ہے. اگر آپ کی عمر 16 سال ہے اور آپ نے شاعری کی ہے تو لکھتے رہیں یا لکھتی رہیں. اداس فری ہیں آپ اور لکھتی رہیں اور کوشش کریں کہ سب سے پہلے آپ اچھے شعراء کو ضرور پڑھیں اور یہ ضرور سمجھیں کہ غزل کسے کہتے ہیں, قافیہ ردیف کیا ہوتا ہے, وزن کیا ہوتا ہے, ایک شعر میں دو مصرے ہیں ان کی بنت کیسے کی جاتی ہے, وزن کا خیال کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھے شعراء کو پڑھیں زیادہ سے زیادہ. جتنا زیادہ آپ اچھے شعراء کو پڑھیں گی, جتنا زیادہ را آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا, تو پھر کبھی آپ لکھنے کی ٹرائی کریں گی تو پھر یقیناً آپ اس سے بہتر لکھ سکیں گی. لیکن ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے بہتری کی. ایک لاسٹ کال لیتے ہیں پروگرام کی, پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے چلیں گے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟
3: میں لاہور سے ساجدہ بات کر رہی ہوں.
0: ساجدہ؟
3: ہاں جی ساجدہ بات کر رہی
0: ہوں. ساجدہ کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟
3: جی میں ٹھیک ٹھاک.
0: کیا کہنا چاہیں گی؟
3: سب سے پہلے تو زبردست شو, بہت اچھا, اور جگنو کی برتھ ڈے میں وش کرنا چاہوں گی. ذرا
0: جگنو کی برتھ ڈے کو ضرور وش کیجیے.
3: جی جگنو آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو آپ کی برتھ ڈے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خوشیاں دے, آپ کو اتنی زیادہ خوشیاں ملے, آپ کی کامیابی یعنی کہ جو آپ سوچو آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو. آمین
0: آمین آمین. آپ کو پتا کہ جگنو کی برتھ ڈے کب تھی؟
3: کس کی؟
0: جگنو کی.
3: آج ہی سن رہی ہوں میں ابھی, نیلا جی نے بھی کہا کہہ رہے تھے تب میں نے سنا تھا.
0: نہیں ان کی برتھ ڈے 7 تاریخ کو تھی.
3: اچھا اچھا, تو آج وش کر رہے تھے آپ؟
0: ہاں آج وش کر رہے تھے کیونکہ شو ہی میرا آج آیا نا.
3: مجھے بھی آج
0: ہی پتا چلا. اچھے انسان ہے جگنو جونیئر جو ہے نا, وہ اچھے انسان ہے. ابھی تک انہوں نے مجھے چنا چاٹ نہیں کھلائی ویسے, لیکن اچھے انسان ہے وہ.
3: لیکن جگنو کی نا شاعری بہت زبردست ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے.
0: کیا بات ہے, جگنو تو پھر جگنو ہے نا.
3: अगर आप कहते हैं गाने की शायरी कर दो, शेर सुना दो,
0: बस फटाफट से, सिर्फ हमारे पास आधा मिनट है।
3: जी बिल्कुल
0: सुनाओ।
3: मोहब्बत मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था, वो मेरा नाम तुम तस्वीर करते थे, मोहब्बत की नमाजों को सजा करने से डरते थे, मगर वो याद आता है वो बातें ही मेहर बातें, मगर बातों ही बातों में बिछड़ना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था।
0: वाह, मैंने समझा आप गाना सुनाओगी, आपने तो गाना पढ़ के सुना दिया।
3: तो मैंने आपको पहले कहा है ना मैं गाने की शायरी शेर सुनाऊंगी।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया साजिदा, थैंक यू सो मच
3: जी। आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं और आपसे तो जबरदस्त पहले की तरह, और आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा दुआएं जहाँ तक मेरी और आपकी आवाज आ रही है, सारी खूबसूरत बातों का। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जुगनू की 8 अगस्त को सालगिरह थी। जुगनू आपको मैं एक दफ़ा फिर से हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ और विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। गो के आज 4-5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जुगनू हमारे बड़े ज़बरदस्त रेगुलर कॉलर हैं और बड़े ज़बरदस्त हमें पोइट्री भी भेजते हैं, मैसेजेस भी करते हैं। आज का प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है, जाने का वक्त वक्ते रुखसतान पहुंचा है। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ ने एक ना एक दिन ख़त्म तो होना है। इस प्रोग्राम का वक्त भी आज ख़त्म हुआ, लेकिन इस उम्मीद के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले मंगल को यानी नेक्स्ट ट्यूसडे को रात 12 से 2 आपसे फिर मुलाकात होगी प्रोग्राम हरफे जुनू में। कोशिश करते रहिएगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें कि अपने बड़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने आसपास रहने वालों की, और ख़ुसूसन अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो अपने वालिदैन की दुआओं में आबाद रहें। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते रहें कि दुआओं में आबाद रहें, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग दूसरों की दुआओं में आबाद रहते हैं उन्हें कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरा ये भी मानना है कि इतने ज़्यादा सुनने वालों में से कोई ना कोई एक ऐसा तो ज़रूर होगा जो बड़े दिल से दुआ करता होगा और उसकी दुआएं ज़रूर कबूल होती होंगी। तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि और किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना हो, दुआओं की हमेशा बड़ी शदीद ज़रूरत रहती है। तो मुझे मेरा नाम लेके, ज़िया अंजुम का नाम लेके दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आप मुझे सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा द ज़िया अंजुम। इसी सेम URL ID से मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाऊंगा। यूट्यूब पे मेरे इन प्रोग्राम्स की रिकॉर्डेड कंप्लीट प्रोग्राम्स भी मौजूद होते हैं, तो अगर आप इन प्रोग्राम्स की कंप्लीट रिकॉर्डिंग सुनना चाहें तो यूट्यूब से जाके आप इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। और उसके अलावा यूट्यूब पे मज़ीद कंटेंट भी मौजूद होता है, आप उसको भी सुन सकते हैं। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।

लफ्ज नहीं है, सांप हैं जो अब मुझको डसते हैं। लोग मुझे उसकी तस्वीरें भेज के हंसते हैं। तू आया और चला गया, इस दिल को क्या समझाऊं। अब तो एक ही रास्ता है, तुझे मार दूं खुद मर जाऊं। डर लगता था उस बात से जो मुझे तेरे खिलाफ करे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे।

क्या मिलता है तुझको हम जैसों से ऐसा करके, रोते रहना है तुझको इस आंख को दरिया करके। आंखों में हैरानी है, दिल में भी वीरानी है, अब कोई ऐसा जख्म दे जो सीनों में शिगाफ करे, अल्लाह माफ करे।